सुप्रभात, हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, सक्सावत 1948 के बैसाख माह की 28वीं तिथि। तदनुसार 28 मई

2026। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। आप सबों का दिन मंगलमय हो।

एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। हमारे अगले प्रसारण के लिए कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में

0: से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं आज का चिंतन। विषय है ब्रह्म शक्ति।
2: श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, सांप के दांतों में विष है, लेकिन जब वो स्वयं खाता है तो उस पर विष का असर नहीं होता, किंतु जब दूसरे को काट खाता है तो उस व्यक्ति पर विष चढ़ जाता है। इसी प्रकार भगवान में माया है तो अवश्य, पर वो उन्हें मुग्ध नहीं कर सकती, किंतु सारे संसार को मुग्ध कर लेती है। एक बार दक्षिणेश्वर मंदिर के नौबत खाने में एक साधु आकर कुछ दिन रहे थे। वे किसी से बातचीत न कर सदा ध्यान धारणा में ही डूबे रहते। एक दिन अचानक बादल उठे और चारों ओर अंधेरा छा गया। फिर थोड़ी ही देर में जोरदार आंधी सी चली और बादलों को उड़ा ले गई। ये देख वे साधु कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में खूब हंसने लगे और नाचने लगे। उनकी ये अवस्था देख श्री रामकृष्ण देव ने उनसे पूछा, तुम तो हमेशा कमरे के अंदर चुपचाप बैठे रहते हो, आज इतना नाच नाच कर आनंद कैसे मना रहे हो? साधु ने कहा, संसार की माया ऐसी ही है। पहले तो उसका कोई नामो निशान तक नहीं था, पर एकाएक ब्रह्म रूपी शांत आकाश में प्रकट हो उसने इस जगत प्रपंच का सर्जन कर डाला। फिर ब्रह्म के निश्वास मात्र से वो जाने कहां ओझल भी हो गई। राम सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकले। आगे आगे राम चले, बीच में सीता और पीछे पीछे लक्ष्मण। राम का सदा पूर्ण दर्शन पाने के लिए लक्ष्मण व्याकुल थे, पर बीच में सीता के होने के कारण ये संभव न था। तब लक्ष्मण ने सीता से प्रार्थना की कि वे तनिक बाजू हट जाएं। सीता के थोड़ा बाजू हटते ही लक्ष्मण की इच्छा पूरी हुई, उन्हें राम के दर्शन हुए। यही हाल ब्रह्म माया और जीव का भी है। जब तक माया हट न जाए तब तक जीव ब्रह्म के दर्शन नहीं पा सकता। एक साधु हाथ में कांच की नली का एक टुकड़ा लिए दिन रात उसकी ओर ताकते और हंसते जाते थे। जिस प्रकार उस कांच के भीतर से लाल नीले पीले आदि कई रंग दिखाई देते हैं, पर वे सभी मिथ्या हैं, उसी प्रकार ये संसार सत्य प्रतीत होता है पर है मिथ्या ही। यही सोचकर वे हंसा करते थे। हरी जब सिंह का मुखौटा लगा लेता है तो सचमुच बड़ा डरावना दिखने लगता है। वो अपनी खेलती हुई छोटी बहन के पास जाकर सिंह की सी आवाज करते हुए उसे डराने लगता है तो वो बच्ची चौंक कर मारे डर के चीखती हुई भागने लगती है। लेकिन जब हरि का मुखौटा हट जाता है तो तुरंत वो घबराई हुई बच्ची अपने प्यारे भाई को पहचान कर उसकी

0: और चिल्लाती हुई दौड़ पड़ती है, अरे ये तो भैया हैं। मनुष्यों का भी यही हाल है, माया के आवरण में ब्रह्म ही छिपा हुआ है, फिर भी माया की शक्ति से लोग मुग्ध और भयभीत होकर कितनी ही चीजें करने को विवश हो जाते हैं। लेकिन जब ब्रह्म के स्वरूप पर से ये माया का पर्दा हट जाता है, तब वो भयंकर कठोर शासक के रूप में प्रतीत नहीं होता, तब तो अपनी ही प्रियतम अंतरात्मा के रूप में उसका अनुभव होता है। ईश्वर यदि सर्वत्र विराजमान है तो हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते? काई से ढके तालाब के किनारे खड़े होकर देखने पर हमें उसमें पानी नहीं दिखाई देगा। अगर हम पानी देखना चाहते हैं तो तालाब पर से काई हटा दें। माया के पर्दे से ढके हुई आंखों से देखकर हम लोग कहते हैं कि हमें ईश्वर क्यों नहीं दिखाई देते। अगर हम ईश्वर को देखना ही चाहते हैं तो आंखों पर से माया का पर्दा हटा लें। जिस प्रकार बादल सूरज को ढक देता है, उसी प्रकार माया ने ईश्वर को ढक रखा है। बादल के हट जाते ही सूरज दिखने लगता है, वैसे ही माया के दूर होते ही ईश्वर प्रकट हो जाते हैं।
1: तो अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, विषय था ब्रह्म शक्ति। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं अनूप जलोटा के स्वर में गाए इस भजन को।

तभी आपने सुना नरेंद्र चंचल की आवाज में गाए इस भजन को और आप सुन रहे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं।

तो अभी आप सुने थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी।

जब आदिदेव महादेव से राम अवतार की पूरी कथा सुनकर पार्वती के मन का संशय सर्वथा मिट गया, किंतु शिव की इस उक्ति ने कि यह अनुपम कथा काकभुशुंडी ने गरुड़ को सुनाई, उनके मन में सहज जिज्ञासा जगा दी। एक कौवा ऐसी भक्ति कैसे पा गया? देवाधिदेव ने तब वो कथा सुनाई कि पवित्र और पुण्य आत्मा काकभुशुंडी को यह सदगति और ऐसा दुर्लभ सुयोग और सुअवसर कैसे प्राप्त हुआ।

तो अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं और आइए बता दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले से कार्यक्रमों के बारे में, कार्यक्रम विवरण में।

संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे सुबह 6:55 पर। लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग का समय होगा सुबह 7:00। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। 7:30 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत। सुबह 8:00 आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचार का समय होगा सुबह 8:30 का। 8:45 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग मेलोडी। सुबह 9:00 से आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। सुबह 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।

सुबह 11 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 12:58 पर आप सुनेंगे जरूरी संदेश। दोपहर 1 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 1:20 पर आप पुनः सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। और संध्या 3 बजे से आप पुनः सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। संध्या 4 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। और 4:02 पर आप पुनः सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 4:29 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: संध्या 5 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से और 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। खेती बाड़ी का समय होगा संध्या 5:30 का। संध्या 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से और महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम अंगना का समय होगा संध्या 6:02 का। फिल्म संगीत आप सुनेंगे संध्या 6:30 पर। संध्या 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम झनकार का समय होगा संध्या 7:15 पर और सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स आप सुनेंगे संध्या 7:30 पर। फरमाइसी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत का समय होगा रात्रि 8 बजे 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार। संध्या रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज एट 9 और 9:15 पर आप सुनेंगे स्पॉटलाइट हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:30 से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक फिल्म से। हिंदी समाचार आप सुनेंगे रात्रि 11:00 और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। तो ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। और अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गतरात्रौ गोथेनबर्ग इत्यत्र स्वीय स्वीडिश समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यमुना साकं संवादं विहितवान्। श्री मोदी द्विदिवसीय स्वीडन यात्रांतर्गतं गतदिने गोथेनबर्ग इत्यत्र संप्राप्तवान्। भारत स्वीडन देशयोः संबंधेषु मोदिनः असाधारण योगदानाय दूरदर्शी नेतृत्व सम्माने च प्रधानमंत्री श्री मोदी रॉयल ऑर्डर ऑफ द स्टार डिग्री कमांडर ग्रेड क्रॉस इत्यनेन सम्मानेन सभाजितवान्। प्रधानमंत्री मोदी सह प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्तांतर्गतम उभौ नेतारो भारत स्वीडन संबंधानां समेषां पदक्षेपाणां समीक्षामपि कृतवन्तौ। उभौ नेतारो व्यापार निवेश प्रविधि नवाचार हरित परिवर्तनम अंतरिक्ष रक्षा अनुसंधानम समेत्य नैकेषु विषयेषु चर्चितवन्तौ। स्वीय संबोधने श्री मोदी आतंकवादम आलोचयन नैकेषु विषयेषु विस्तृतेण वक्तव्यं प्रकटितवान्। आतंकवादम विरुद्ध्य संघर्षे स्वीडिश प्रधानमंत्रिणः समर्थनाय आभारमपि श्री मोदी प्रकाशितवान्।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्वीडिश समवायाः आमन्त्रिताः। गोथेनबर्ग इत्यत्र प्रमुख स्वीडिश समवाय प्रमुखैः सह वार्तान्तर्गतं श्रीमोदी स्वीडिश समवायान् विनिर्माण हरित हाइड्रोजन अभियानं स्वच्छोर्जा अन्येषु क्षेत्रेषु च स्वीयोपस्थिति संवर्धनाय आग्रहमपि कृतवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वीय यात्रायाः चतुर्थे चरणे नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय अथ द्विपक्षीय वार्ताभ्यः श्री मोदी अद्य नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। प्रधानमंत्रिणः मोदिनः नॉर्वे इत्यत्र एषा प्रथमा यात्रा स्यात्। श्रीमोदी राजा हेराल्ड पंचम इत्यमुना अथ रानी सौम्या इत्यनया साकं च मेलनं कुर्यात्। श्रीमोदी तत्रत्य प्रधानमंत्रिणा जोनास गहरस्टोरे इत्यमुना साकं द्विपक्षीयां वार्तां कुर्यात्। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे केरलम शासनस्य शपथ ग्रहणम् अद्य स्यात्। कांग्रेस दलस्य नेता वीडी सतीशन अद्य तिरुवनंतपुरम इत्यत्र शपथवचनं स्वीकुर्यात्। कांग्रेस दलेन सतीशन इत्यसौ केरल प्रदेशस्य अग्रिम मुख्यमंत्री रूपेण समुद्घोषितः। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वयुतेन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक ग्रंथियुतेन तत्र शासन विरचनं स्यात्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः गुजरात प्रदेशस्य गांधीनगरे 700 कोटि मितानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। स्वीय द्विदिवसीय यात्रावधौ गतदिने गांधीनगर नगर निगमस्य 100 कोटि मितानां विकास कार्याणां शुभारंभमपि श्री शाहः विहितवान्। एतत्पूर्वं प्रथमे दिने श्री शाहः सूचना केन्द्रस्य उद्घाटनं च कृतवान्। श्री शाहः एआई तथा डीपटेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्य स्तंभौ इति वर्णितवान्।
3: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
1: अंते च क्रीडा वार्तासु आईपीएल इत्येतस्यां क्रिकेट लीग

एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं और पेश है लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं शिवनंदन पांडे की आवाज में गाया इस गीत।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सुनो सुनो सब श्रोता।

शब्द है प्रधान जगत में, लाल बिहारी सत सुना दिल का। हो गया उदंड का है, हो गया उदंड का है सुधरा।

तो अभी आप लोगों ने सुना लाल बिहारी शाह की आवाज में इस लोकगीत को, और आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं सियाराम पासवान की आवाज में गाए इस गीत को।

0: तो अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग FM 102.1 MHz पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते कार्यक्रम विविधा में पुनः प्रसारण। वार्ता मन के हारे हार है। वार्ताकार है संजोग कुमार।
1: मनुष्य के सभी इच्छाओं का केंद्र होता है मन। सभी इंद्रियों का नियामक और स्वामी भी मन ही है। इसलिए व्यवहार के स्तर पर उसकी हार को वास्तविक हार और जीत को सच्ची जीत माना जाता है। विद्वानों के अनुसार हर प्रकार की मानसिक दुर्बलता का उपचार है कि वह विपरीत दिशा में सोचना शुरू कर दे। जैसे मेरा व्यक्तित्व पूर्ण है, उसमें त्रुटियां कमजोरी कोई है तो मैं उसे दूर करके रहूंगा। यदि मुझमें कोई दुर्बलता है तो उसका ध्यान छोड़कर निर्मल शरीर और निर्मल मन का ध्यान करूंगा। मुझे ईश्वर ने अपना ही रूप बनाया है, उसने मुझे पूर्ण मनुष्य बनने की आज्ञा दी है। पूर्ण पुरुष परमात्मा की मैं रचना हूं, फिर मैं अपूर्ण कैसे हो सकता हूं? मेरे मन में जो अपूर्णता का विचार आता है वह वास्तविक कैसे हो सकता है? मेरे जीवन की पूर्णता ही सत्य है। मैं अपने अंदर कोई कमी नहीं आने दूंगा। बनाने वाले ने मुझे दीनहीन दुर्बल बनने के लिए पैदा नहीं किया। उसके संगीत में स्वर भंग कैसे हो सकता है? इस प्रकार निरंतर एवं बारंबार अपने मन में विचार दोहराते रहने से मनुष्य कर्म से अपने को सबल बनाता जाता है। लज्जाशीलता या झेप कई बार रोग की सीमा तक पहुंच जाती है। इसे एक प्रकार का मानसिक रोग कहा जाता है, परंतु यह रोग तो केवल कल्पना की ही उपज है। इस पर आसानी से विजय पाई जा सकती है। इसका उपाय यही है कि इस विचार को धकेल कर मन से बाहर कर दिया जाए और इसके विपरीत विचार मन में स्थान दिया जाए। मुझे झेपने की तनिक भी आवश्यकता नहीं। हर समय चेष्टाओं को देखने की फुर्सत लोगों के पास नहीं है। इस प्रकार के विचार मन की सारी दुर्बलताएं निकालकर आदमी को निश्चय ही नया बल और स्फूर्ति देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि वह ईश्वर की मौलिक रचना है और उनमें कुछ दिव्यता है। उस दिव्यता को व्यक्त करने का दृढ़ निश्चय करना चाहिए। यह निश्चय मानसिक दृढ़ता से ही संभव हो सकता है। इसे मन दृढ़ करने की एक सफल क्रिया कह सकते हैं। हमें प्रत्येक संभव उपाय से बौद्धिक रूप में अपना सुधार करना आरंभ कर देना चाहिए। सर्वोत्तम लेखकों के ग्रंथों का अध्ययन करने से, विभिन्न विषयों की शिक्षा प्राप्त करने से हम अपनी कई प्रकार की त्रुटियां दूर कर सकते हैं। मन में हीनता की भावना निकल गई तो समझो सारी दुर्बलताएं समाप्त हो गई। अतः हमें हर संभव उपाय से मनोरंजक तथा आकर्षक व्यक्तित्व को प्राप्त करने की दिशा में अपने आप को अग्रसर करना चाहिए, तभी मन भी दृढ़ हो सकेगा। अपनी वेशभूषा के प्रति, केश श्रृंगार के प्रति, बातचीत के प्रति, बर्ताव के प्रति उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्तित्व के निर्माण तथा कार्यों में सफलता के लिए ये बातें सहायक होती हैं। इनसे मन भी बढ़ता है। कई बार हमारे सामने ऐसा कठिन समय आ जाता है कि हम मन से हारने लगते हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि वस्तुतः हमारी परीक्षा का अवसर है। इंसानियत का इतिहास और प्रेरणा यही है कि वह हिम्मत ना हारे। कहा भी है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जो व्यक्ति

0: हिम्मत नहीं हारता है, ईश्वर भी उसकी सहायता करता है। यह सोचकर उस शिकार को करने में तन मन से डट जाना चाहिए। देर सवेर सफलता अवश्य मिलेगी। हम जो कुछ भी करते हैं पहले मन में उसका ध्यान करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कार्य का प्रारूप हमारे मन में तैयार होता है। यदि हमारा मन दृढ़ता से उस पर विचार करता है तो हमारा चिंतन लाभकारी होता है, व्यवहार में भी दृढ़ता आती है और सफलता भी मिलती है। निराशा की भावना मनुष्य के मन और तन दोनों को दुर्बल बनाती है, इसे पास नहीं आने देना चाहिए। इतिहास तथा वर्तमान काल की घटनाओं से शिक्षा लेकर हमें अपने मनोबल का निर्माण करना चाहिए। हमें उनका अनुकरण करना चाहिए जो बड़े से बड़े संकट में भी न घबराएं, डटकर कठिनाई का सामना करते हुए विजय हुए। उनका अनुकरण मानसिक दृढ़ता और विजय की सीढ़ी बन सकता है। अंग्रेजी की एक कहावत का अर्थ है कि इच्छा शक्ति ही सब कार्यों को सफल बनाती है। मन ही बंधन का कारण बनता है, मन ही मोक्ष का। मन को ऊंचा रखने वाला अवश्य विजयी होता है। अतः हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमें हार की ओर नहीं, हमेशा जीत की ओर ही बढ़ना है और मन को दृढ़ निश्चय बनाकर हमें बढ़ते जाना है। सफल सार्थक जीवन व्यतीत करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। जीवित मनुष्य में आकांक्षाएं ना हो यह संभव नहीं हो सकता, क्योंकि आकांक्षाएं जीवन के लिए आवश्यक होती हैं और मनुष्य स्वभाव से ही महत्वाकांक्षी होता है। महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए सोचे सुलझे ढंग से लगातार परिश्रम की जरूरत हुआ करती है, क्योंकि महान व्यक्तियों ने ऊंचा पद प्राप्त किया है वह अकस्मात छलांग लगाकर नहीं प्राप्त किया, बल्कि जिस समय उनके साथी सोते रहे उस समय सारी रात जगकर वे ऊंचे जाने, उन्नत होने का निरंतर प्रयास करते रहे थे। महत्वाकांक्षा की पूर्ति का एकमात्र साधन निरंतर प्रयत्न ही है। कुछ व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति में उसी प्रकार असफल रहते हैं जिस प्रकार तीव्र वेगमान अश्व पर बिना अभ्यास के सवार होने का प्रयत्न करने वाला व्यक्ति। महत्वाकांक्षा की पूर्ति की आशा की वेग गति तरंग में जिन व्यक्तियों की सूझबूझ मारी जाती है, जो एकदम छलांग लगाकर करोड़पति या सत्ताधारी बन जाने का प्रयास करते हैं, उनसे कई प्रकार के गलत काम हो जाते हैं। महत्वाकांक्षा के कारण कई बार व्यक्ति न्याय अन्याय विचार को भुला देता है, वह विवेक की ओर से आंखें मूंद लेता है। परिणाम यह होता है कि वह ठोकर खाकर गिर पड़ता है निराशा के गर्त में, जहां से फिर निकल पाना कठिन हुआ करता है। अविवेकी स्वार्थी और जिद्दी व्यक्ति चाहे कुछ भी हो और साधन कैसे ही अपनाने पड़े, हर प्रकार से अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति का प्रयत्न करता है। वह एकदम मनचाहा धन या पद पा लेना चाहता है, भले उसका यश हो या अपयश। इस प्रक्रिया में वह मानवता के ऊंचे सिद्धांतों की हत्या करने में भी संकोच नहीं करता। समाज का अहित कर आगे बढ़ना घोर अमानवता कही जाएगी। आज के अपवादापी वाले युग में इसी प्रवृत्ति की प्रधानता है। जिस समय हम अतिशय महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, उसी पूर्ति में जल्दबाजी करने लगते हैं, तो हमारे लिए कर्तव्य तथा अकर्तव्य में पहचान करना कठिन हो जाता है। भले बुरे का विवेक हमें नहीं रहता, न्याय और अन्याय में अंतर दिखाई नहीं देता। जो व्यक्ति इस प्रकार लालसा का शिकार हो जाते हैं, वे किसी प्रकार के पाप कर्म में भी संकोच नहीं करते। जो स्वार्थ के नशे में मदहोश हो जाते हैं, वे मानवता के अस्थाई मूल्यों की हत्या करते हुए भी नहीं झिझकते। सबसे ऊंचे बनने की ऐसी इच्छा एक भयंकर शक्ति बन जाती है, जो चरित्र का बलिदान करने से भी नहीं कतराती, अपने साथ साथ दूसरों का बुरा करने में भी नहीं झिझकती। उसका प्रयत्न वास्तव में सर्वनाशकारी बन जाया करता है। आपने जिस व्यक्ति को ऊंचा उठाना है वह स्वयं आप हैं, और आपको पूरी छूट है कि आपको जहां से प्रेरणा मिले वहां से प्राप्त करें। परंतु इतना ध्यान अवश्य रखें कि आपकी महत्वाकांक्षा से मानव हित की हानि ना हो।
1: तो भी आपने सुना कार्यक्रम विविधा में हिंदी।

वार्ता मन के हारे हार है। वार्ताकार थे संजोग कुमार। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:30 हो रहे हैं। पेश है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अदनान शामी की आवाज में गाए इस गीत को।

0: एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही दिन में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
2: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के लिए संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
3: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
2: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के 4थे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
4: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को

0: फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की।
3: कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए यूडीएफ कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई जयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
5: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है।

0: इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलूट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने एचडी देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और एआई में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। होर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। एनडीए सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का ये बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और एनडीए की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नवभारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talk.

0: which was attended by a large number of key companies in Europe. I would like to highlight that in his meetings today with the CEOs and other senior leaders from the business, they all highlighted about their interest. You know, they have been observing India for last few years. They have been investing in India for last few years. What they have seen is a complete transformation in India in the last few years. They emphasize that.
1: In the fourth leg of his visit, the Prime Minister will reach Norway today for the third Indian-Nordic summit and bilateral engagements. This will mark the first Prime Ministerial visit from India to Norway in 43 years. Mr. Modi will call on King Harald V and Queen Sonia and hold bilateral talks with Prime Minister Jonas Gahr Støre. Mr. Modi will also address the Indian-Norway Business and Research Summit along with the Norwegian Prime Minister. The visit will provide an opportunity to review the progress made in Indian-Norway relations and explore avenues to further strengthen them. Congress leader V.D. Satheesan will be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Keralam Governor Rajendra Vishwanath Arlekar will administer him oath of office and secrecy at a function in Thiruvananthapuram this morning. The Chief Minister-designate unveiled a 21-member UDF cabinet last evening ahead of today's swearing-in ceremony. More from our correspondent.
2: The Congress-led UDF ministry is being sworn in today in Keralam after a gap of 10 years. The Chief Minister and 20 other ministers will take oath at a function organized at Central Stadium, Thiruvananthapuram. 16 members of the new ministry, including Chief Minister V.D. Satheesan, are becoming ministers for the first time. UDF workers in large numbers have been arriving in the state capital since yesterday afternoon to witness the swearing-in ceremony. Senior leaders, including Congress President Mallikarjun Kharge, leader of the opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, the chief ministers of Karnataka, Himachal Pradesh and Telangana, outgoing chief minister Pinarayi Vijayan and BJP state president Rajiv Chandrasekharan are expected to attend the ceremony today. Nidhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
1: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Union Home Minister Amit Shah arrived in Raipur last evening on a two-day visit to Chhattisgarh. During his visit to the state, Mr. Shah will participate in several programs in Raipur and Bastar. A report from our correspondent.
3: On the first day of his visit to Chhattisgarh, Union Home Minister Amit Shah will flag off new vehicles under the Emergency Response Service Dial 112 in Raipur this morning. Later, he will travel to Bastar and inaugurate a public convenience center at Netanar village in the district. The center is aimed at providing easier access to government and digital services for people living in remote areas. Thereafter, Mr. Shah will reach Jagdalpur and pay tribute to Martyrs at Amar Vatika. In the afternoon, he will interact at Badal Academy in Jagdalpur with families of martyrs, security personnel, people affected by Naxal violence and representatives of various local communities. In the evening, he will also attend the Bastar Ke Sang folk cultural program. This is Mr. Shah's first visit to the state after Chhattisgarh was declared Naxal free. Vikalp Shukla, Akashvani News, Raipur.
1: The trail of the NEET paper leak case has now reportedly extended from Latur to Nanded in Maharashtra. A parent has been accused of purchasing the leaked question paper for 5 lakh rupees for his daughter. A CBI team questioned the individual yesterday and has summoned him to appear before the agency's Pune office tomorrow for further investigation. Meanwhile, in the same case, the Delhi Rouse Avenue Court has remanded Pune-based accused Manisha Mandare to 14 days of CBI custody. According to the agency, Mandare was a key conspirator in the leak of the NEET biology examination paper. The India Meteorological Department has said that the southwest monsoon is likely to set in over Keralam on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date of 1st of June. Our correspondent reports that conditions are favourable for the southwest monsoon to advance into more parts of the southeast Arabian Sea, Bay of Bengal, Andaman Islands and Andaman Sea over the next 2 to 3 days.
4: IMD said Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, coastal Karnataka, Keralam and Mahe are likely to experience heavy rainfall today. The Met Department said that Lakshadweep, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura, South Interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal are also likely to witness similar conditions. Meanwhile, the Weather Department forecast a heat wave to severe heat wave conditions over West Uttar Pradesh today. Heat wave conditions are very likely at isolated places over East Uttar Pradesh, Haryana, Chandigarh, Delhi, Madhya Pradesh, Marathwada, Punjab, Rajasthan, Telangana and Vidarbha today. According to IMD, a gradual rise in maximum temperatures by 3 to 5 degrees Celsius is expected over many parts of Northwest India during the next 3 to 4 days. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
1: In our bilingual live phone-in program Public Speak today, we will bring you an insightful discussion on the ongoing Phase 1 of Census 2027, the House Listing and Housing Census. V.A. Varade, Deputy Registrar General in the Office of the Registrar General and Census Commissioner of India, Ministry of Home Affairs, will be in our studio to answer listeners' queries. To participate, simply dial 011-233-1444 from 9:30 p.m. onwards tonight. Alternatively, you can send your queries via WhatsApp to 9289094044 or post your questions on X using the hashtag AskAIR. On to sports. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Rajasthan Royals by 5 wickets at Arun Jaitley Stadium, Delhi last night, chasing a target of 194 runs set by Rajasthan Royals. Delhi Capitals scored 197 for 5 in 19.2 overs. KL Rahul was the top scorer with 56 runs. For Delhi Capitals, Mitchell Starc took 4 wickets, which was later adjudged player of the match. And now for a look at today's newspapers, it's over to Neera Arakul.
5: Thank you, Shagun. Sweden confers its highest honor on PM Narendra Modi. The Royal Order of the Polar Star Degree Commander Grand Cross is Prime Minister Modi's 31st international award, is the top headline in the Pioneer, while the Asian Age headlines trade to chips. India inks 14 Netherlands pacts, lifts ties, Modi jettin, hold talks, adopt strategic partnership roadmap. The statesman mentions metro to run extra rain train trips to encourage use of public transport. This capacity expansion aims to ensure uninterrupted service and efficient passenger management. UAE nuclear plant attacked by drone, testing Iran truce, writes the Hindustan Times. While the Times of India states drone attack sparks fire at UAE nuclear plant. In an editorial titled Diversification Gains, the Hindu commends India's export performance in April 2026, underscoring the attempts by the government and industry to diversify in terms of crisis. And finally, the Indian Express writes HPV vaccination sees uptick, 1,100 girls receiving the shot. The figure reflects a slow but steadily accelerating start to one of the country's most important public health drives in recent years in preventing cervical cancer. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Neera. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. India and Sweden decide to elevate their bilateral ties to strategic partnership. Prime Minister Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission initiatives. Congress leader V.D. Satheeshan to be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Southwest monsoon likely to hit Keralam coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
6: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। जेटेड क्षेत्रीय भाषाओं में मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल करने पर होगा विचार। मंत्रियों की कमेटी की पहली बैठक आज। रेलवे ने गोमती नगर से खुदरा रोड तक समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की। गोमो, गया, वाराणसी, जौनपुर और गोरखपुर होकर गुजरेगी रेल। दुमका में अंतरराज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह का खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार। निशानदेही पर पश्चिम बंगाल से चोरी के वाहन बरामद, पुलिस कर रही नेटवर्क की जांच। राज्य के कई हिस्सों में आज गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान, कल से अगले दो दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और ताशकंद में रग्बी सेवन्स में भारतीय पुरुष टीम ने रजत पदक जीता, महिला टीम चौथे स्थान पर रही। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एआई और डीप टेक को भविष्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ बताया है। कल अहमदाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
7: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
6: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के 319 इंटर और प्रशिक्षित सहायक आचार्य को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस कदम से राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था और भी मजबूत होगी। समारोह में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव भी उपस्थित रहेंगे। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को शामिल करने के लिए बनी सरकार की समिति की आज पहली बैठक होगी। इस समिति में 5 मंत्रियों को शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट भवन में दिन के 11:30 बजे से बैठक होगी। समिति में मंत्री दीपिका पांडे, राधा कृष्ण किशोर, संजय यादव, योगेंद्र प्रसाद और सुदिव्य कुमार सोनू शामिल हैं। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से रांची में आज जनजातीय किशोरियों के स्वास्थ्य पोषण एवं सशक्तिकरण के लिए सशक्त परियोजना का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने राजधानी में पेट्रोल और डीजल की किल्लत की खबरों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि तेल कंपनियों के पास पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और घरों में अनावश्यक रूप से तेल जमा नहीं करने की अपील की है।
8: हम लोगों की समीक्षा में पाए गए कि जो पहले से जितना सप्लाई थी वो सप्लाई अभी भी उपलब्ध है, और लेकिन किसी कारणवश जो एक पैनिक की अवस्था में बहुत सारे लोग जो है जितना रिक्वायरमेंट है उससे अधिक गुना में जो भर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है सप्लाई में जो समस्या आ रही है, तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने उनको बताए हैं कि पैनिक में किसी तरह का लोग न आए।
6: विश्व पर्यावरण दिवस 2026 अभियान के तीसरे दिन धनबाद मंडल ने कल विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर प्लास्टिक मुक्त यात्रा के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया। इसके तहत यात्रियों को दोबारा उपयोग योग्य बोतलों के इस्तेमाल, प्लास्टिक प्रदूषण रोकने और रेल परिसर में कचरा न फेंकने की अपील की गई। साथ ही पोस्टर, उद्घोषणा और सीधे संवाद के जरिए पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा के लिए गोमती नगर से खुदरा रोड तक समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है, जो गोमो, गया, वाराणसी, जौनपुर और गोरखपुर होकर गुजरेगी। गोमती नगर से यह ट्रेन 28 मई से 18 जून तक हर गुरुवार और खुदरा रोड से 30 मई से 20 जून तक हर शनिवार चलेगी, जिसमें धनबाद के यात्रियों के लिए गोमो और बोकारो के लिए भोजुड़ी में ठहराव रहेगा। हजारीबाग जिले के कोरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से ब्राउन शुगर, 3 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल और 1 कार बरामद की है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित आनंद ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में 1 का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है।
9: जांच क्रम में एवं जब इनको छानबीन

0: किया गया, उनकी तलाशी ली गई, तो कुल मिला के हमें 3 स्मार्टफोन, 20 ग्राम ब्राउन शुगर, एक अपाचे गाड़ी और एक क्रेटा कार पकड़ाया गया। अनुमानित मूल्य इसका लगभग 10 से 15 लाख तक होता है मतलब होलसेल में जब इनको, लेकिन जब ये लोग इसको तोड़ तोड़ के बेचते हैं या जो खुदरा क्रम में बेचते हैं तब इनका रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है।
1: दुमका जिले में पुलिस ने सक्रिय अंतरराज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। तीनों की निशानदेही पर मुफस्सिल और शिकारी पाड़ा थाना क्षेत्र से चोरी हुए 2 ट्रैक्टरों को पश्चिम बंगाल से बरामद किया गया है। पुलिस गिरोह के अन्य संभावित नेटवर्क की जांच कर रही है। राज्य के कई हिस्सों में आज गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
2: आने वाले दिनों में भी आपको कुछ कुछ जगहों पर थंडरस्टॉर्म के साथ में बारिश, तेज हवा, आंधी देखने को मिलेगी। 3 दिन के लिए जो विंड स्पीड है उसमें 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गस्टिंग टू 60। 18 में थोड़ा सा हवा की गति बढ़ सकती है जिसमें कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से विंड स्पीड गस्टिंग टू 70 भी कुछ जगहों पर जा सकती है गर्जन वज्रपात के साथ में।
1: कल जिले हजा का चांद नहीं दिखने के कारण देश भर में 28 मई को बकरीद मनाई जाएगी, यह घोषणा इमारत ए सरिया ने की। ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित पहले CASA रग्बी सेवन्स 2026 में भारत की सीनियर पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल किया, जबकि सीनियर महिला टीम 4th स्थान पर रही। पुरुष टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार 4 मैच जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। पुरुष टीम में झारखंड के डेविड मुंडा भी शामिल है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मुख्यमंत्री को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा लिखे पत्र की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा दैनिक जागरण ने लिखा है, स्वीडन और नीदरलैंड्स के साथ रिश्तों को रणनीति साझेदारी में बदलेगा भारत। प्रभात खबर की सुर्खी है, जेटेट भाषा विवाद सुलझाने के लिए आज बैठक करेंगे 5 मंत्री। दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश में राजधानी एक्सप्रेस के एसी कोच में आग, 15 मिनट में 68 यात्रियों को बचाया। हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर लिखा है, जलापूर्ति व्यवस्था पर मुख्य सचिव सख्त, सभी जिलों को त्वरित कार्रवाई के लिए कहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, जेटेट क्षेत्रीय भाषाओं में मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल करने पर होगा विचार, मंत्रियों की कमेटी की पहली बैठक आज। रेलवे ने गोमती नगर से खुर्दा रोड तक समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की। गोमो, गया, वाराणसी, जौनपुर और गोरखपुर होकर गुजरेगी रेल। दुमका में अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह का खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार। निशानदेही पर पश्चिम बंगाल से चोरी के वाहन बरामद, पुलिस कर रही नेटवर्क की जांच। राज्य के कई हिस्सों में आज गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान, कल से अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और ताशकंद में रग्बी सेवन्स में भारतीय पुरुष टीम ने रजत पदक जीता, महिला टीम 4th स्थान पर रही। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माई गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब, मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डाले। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूं कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी की बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है। अपने आप को आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।

FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी, बस कुछ ही पल में।

तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में गाए इस गीत को।

0: तो पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: प्लीज द पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: तभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में इस गीत को, और प्रोग्राम का आखिरी नगमा हम आपको सुना रहे हैं। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, मगर आइए उससे पहले सुनते हैं जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

और इसी गीत के साथ कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी यहीं पे समाप्त होता है। तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी FM 102.1 MHz पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते अपने मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।

चित्रलोक कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लीजिए सुनिए गब्बर इज बैक फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की आवाजों में। मनोज यादव ने इसे लिखा है, चित्रंतन भट्ट का संगीत।

आज विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है। ये दिन एचआईवी एड्स जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ प्रभावी वैक्सीन खोजने वाले वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और शोधकर्ताओं के प्रयासों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और ये समझना है कि सही जानकारी, सावधानी और समय पर जांच से इस बीमारी को काफी हद तक रोका जा सकता है। सुरक्षित जीवन शैली अपनाना, जागरूक रहना और भेदभाव से दूर रहना बेहद जरूरी है। आइए हम सभी मिलकर एचआईवी एड्स के प्रति जागरूकता फैलाएं और एक स्वस्थ संवेदनशील समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत फिल्म हमारी अधूरी कहानी से। श्रेया घोषाल की आवाज, रश्मि विराग के बोल और जीत गांगुली का संगीत।

है चित्रलोक कार्यक्रम में। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को संग्रहालयों के महत्व के प्रति जागरूक करना है। संग्रहालय हमारी संस्कृति, इतिहास, कला और विरासत को संजोकर रखने का महत्वपूर्ण माध्यम है। यहाँ हमें प्राचीन वस्तुएं, ऐतिहासिक दस्तावेज, दुर्लभ कलाकृतियां और सभ्यता, इन सब की अनमोल झलक देखने को मिलती है। संग्रहालय केवल ज्ञान का केंद्र ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़े रखने का एक सशक्त माध्यम भी है। आइए इस अवसर पर अपने इतिहास और संस्कृति को समझने, सहेजने और उससे जुड़ने का संकल्प लें। और लीजिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं तमाशा फिल्म का ये गीत मीका सिंह और नक्श अजीज की आवाजों में। इरशाद कामिल के बोल हैं, एआर रहमान की धुन।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मीट ब्रोस अनजान और अरिजीत सिंह की आवाजों में गाए इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। नेहा आगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दिलों से प्यार है, बागों में बहार है।
1: वो जो बहुत खूबसूरत हैं, चुलबुली हैं, भोली हैं, भोले भोले चेहरे से बड़ी सहजता से संवाद बोल देती हैं, जो कभी सहनायिका थी अभिनेता राजेश खन्ना की। प्यारी भोली मासूम आवाज में बोलने वाली फनकार, आज उन्हीं पर केंद्रित है हमारा ये कार्यक्रम। इनका नाम है फरीदा जलाल।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: अगर आपने फिल्म आराधना देखी होगी तो इस दृश्य को जरूर देखा होगा। इनके साथ अभिनेता थे राजेश खन्ना। इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था। फरीदा जलाल का फिल्मी कैरियर सन 1967 से फिल्म तकदीर से शुरू हुआ।

1949 में फरीदा जलाल का जन्म हुआ था नई दिल्ली में। शुरू की युवा आयु में जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो इन्होंने कई फिल्मों में अलग अलग भूमिकाएं की, सखी के रूप में, बहन के रूप में, और ये भूमिकाएं सराही गईं। फिल्म तकदीर में गोपाल की छोटी लड़की की भूमिका निभाई।

सन 1973 में एक फिल्म आई थी लोफर। इस फिल्म में अभिनेत्री फरीदा जलाल ने रूपा की भूमिका निभाई थी, जो कि गोपीनाथ की

चर्चित फिल्में बहारों की मंजिल 1968 में, महल 1969 में, आराधना पुरस्कार, नया रास्ता 1970 में, गोपी देवी, पारस में बेला देवी नाम से भूमिका को जीवंत किया और इस फिल्म पारस के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का इन्हें अवार्ड दिया गया। एक और पुरस्कार इन्हें दिया गया BFJA अवार्ड। इस फिल्म में अभिनेता संजीव कुमार की बहन की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाई थी। आइए सुनते हैं पारस फिल्म का गाना। अरे या या या या।

0: क्या करना आके ना जीते रहो जुगनी कहती है बात पते की जुगनी कहती है बात पते की।
1: सन 1971 में अमर प्रेम प्यार की कहानी, जिंदगी जिंदगी, रिवाज, बुनियाद, हीरा, बॉबी, जिसमें इन्होंने चरित्र अभिनेत्री के रूप में काम किया, जिसे फरीदा जलाल ने बहुत ही सहजता से निभाया। बॉबी फिल्म में एक ऐसी धनी लड़की की भूमिका निभाई जो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। उस अमीर लड़की को हीरो पसंद इसलिए करता है क्योंकि उसके पिताजी चाहते हैं कि इस अमीर लड़की से उनका बेटा शादी कर ले। फिल्म पारस के बाद इन्हें एक और पुरस्कार दिया गया फिल्म मजबूर के लिए, यानी कि मजबूर फिल्म की कहानी सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था। अभिनेता अमिताभ बच्चन इसमें हीरो थे। इस फिल्म में फरीदा जलाल ने उनकी बहन की भूमिका निभाई थी। बहुत ही बेबसी और मजबूरी का अभिनय किया था फरीदा जलाल ने, जो बहुत लाजवाब था।

मीना जलाल ने 40 वर्ष की उम्र तक सिने जगत में अभिनय किया। 1983 और 1990 के बीच में फिल्मों से ब्रेक लिया और बेंगलोर जाकर शिफ्ट हो गईं। 1990 वर्ष के दौरान फरीदा जलाल ने अपना फिल्मी करियर फिर से शुरू किया और कई मेजर हिट फिल्म में चरित्र अभिनेत्री का किरदार निभाया। 1991 में हिना फिल्म में बीबी गुल की भूमिका निभाई और इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया। 1991 के बाद भी कई फिल्में आईं जिसमें इन्होंने तरह तरह की चरित्र अभिनेत्री की भूमिका निभाई। फिल्म पायल, बेखुदी, कल की आवाज, दिल आशना है। 1993 में गर्दिश। सन 1994 में फिल्म आई थी मम्मो, जिसमें फरीदा जलाल ने महमूदा बेगम अनवर अली उर्फ मम्मो का किरदार निभाया था। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, बहुत ही दमदार अभिनय था। इस फिल्म के लिए फरीदा जलाल को 2 अवार्ड मिले, एक तो फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए और दूसरा अवार्ड बंगाल की जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया। सन 1995 में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म रिलीज हुई, जिसमें लाजवंती यानी लाजों की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाया और इन्हें अवार्ड दिया गया फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का।

सन 2000 में हे राम फिल्म में कस्तूरबा गांधी की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाई। इस भूमिका को बहुत सराहा गया। यही फिल्म हिंदी और तमिल में साथ साथ बनाई गई। ये फिल्म थी हे राम। सहनायिका बहन, पत्नी, माँ, धाई माँ, दादी माँ, इस तरह की भूमिकाएं आगे चलकर फरीदा जलाल को मिली और सभी भूमिकाओं में इन्होंने अपने खास अंदाज में जान फूंक दी। सन 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर, 2015 तक अनेक चरित्रों को पर्दे पर इन्होंने साकार किया। सन 2012 में फरीदा जलाल को ए ग्रैंड प्लान फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया हार्लेम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल।

1990 के बाद की कई फिल्में बहुत चर्चित रहीं। फिल्म राजा हिंदुस्तानी, कहो ना प्यार है, कभी खुशी कभी गम, फरीदा जलाल ने कई टेलीविजन सीरियल में भी काम किया जिसमें देख भाई देख हिट सीरियल था। फरीदा जलाल ने कॉमेडी रोल भी अदा किए। थोड़ा जादू थोड़ी नजाकत, इसमें आपने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया, यूं कह सकते हैं कि लीडिंग रोल था। सन 2005 में मुंबई में 50वें फिल्म फेयर अवार्ड के स्टेज पर इन्होंने एंकरिंग की। साथ में थे सैफ अली खान और सोनाली बेंद्रे। पंजाबी फिल्म यारिया में एक विशेष भूमिका में फरीदा जलाल नजर आईं। सन 1978 में इनका विवाह एक्टर तब्रेज बर्मावर के साथ हुआ जो कि भटकल के थे। इन दोनों की मुलाकात फिल्म जीवन रेखा की शूटिंग के दौरान हुई थी और दोनों में प्यार हो गया और फिर इन्होंने शादी कर ली। फिल्म आराधना के बाद जीवन रेखा इनकी दूसरी फिल्म थी जिसमें इन्होंने हीरोइन की भूमिका निभाई थी और साथ में थे उनके पति तब्रेज। इस फिल्म का एक गाना बहुत ही मकबूल हुआ।

फरीदा जलाल का एक बेटा है यासीन। अभिनेत्री फरीदा जलाल के अभिनय को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। फरीदा जलाल हमेशा उन्नति करें। हम सब विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।

के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेत्री फरीदा जलाल पर। शोध, आलेख और स्वर शहनाज अख्तरी का। कार्यक्रम का संपादन किया आकांक्षा सिंह ने। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। आज के फनकार।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें।

0: FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बज रहे हैं। पेश है कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।
1: 10 9 8 7 6

हजारीबाग प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे।

हजारीबाग मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन की प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों संग हेलो।

कार्यक्रम हेलो हजारीबाग सुन रहे सभी दोस्तों को आपकी रेडियो दोस्त वंदना चना का प्यार भरा नमस्कार जोहार। तो दोस्तों आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूं कि बहुत ही मजे में होंगे। दोस्तों नई सुबह, नई किरणें, नई आशा, नई उम्मीद और नए रास्ते के साथ हमें अपने हर दिन की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जिस जीवन में संघर्ष नहीं होगा उस जीवन में सुख समृद्धि और शांति रूपी मधुर फल की भी प्राप्ति नहीं होती। संघर्ष वो वृक्ष है जिसके जड़े कड़वी जरूर होती है मगर उसके फल बहुत ही मीठे होते हैं। जीवन में आज जितनी मधुरता है उस जीवन में कभी उतना ही संघर्ष भी रहा होगा, यह हमें हमेशा याद रखना चाहिए।

दोस्तों कहता है कि हमारे जीवन में संगत का बहुत असर होता है और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम जिस जैसे संगत में रहते हैं उसका असर हमारे जीवन पर बहुत होता है। जैसे कि पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़े तो मिट जाती है, वही एक बूंद कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती की तरह चमकने लगती है, सीप में आए तो वह खुद ही मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस संगत का फर्क है। तो दोस्तों हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हम किस संगत में रहते हैं और उसका असर हमारे जीवन पे क्या पड़ेगा।

दोस्तों, आज है विश्व म्यूजियम दिवस। म्यूजियम किसी भी सामान के इतिहास, कला और संस्कृति का एक दर्पण की तरह होता है। यह सिर्फ पुरानी वस्तुओं को सहेजने की जगह नहीं होती, बल्कि ज्ञान, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता का प्रमुख स्थान भी होता है, जो हमारी विरासत को भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखता है। ये हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कलात्मक विरासतों को सहेज कर रखता है, जिसे हम अपने पूर्वज की जीवन शैली, परंपराओं और विकास की कहानी को जानने का मौका मिलता है। यह जगह हमें एक साझा पहचान देता है और विभिन्न संस्कृतियों के बीच आपसी समझ, भाईचारा और शांति को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। दोस्तों, साथ ही म्यूजियम किसी भी क्षेत्र में पर्यटन को आकर्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा करता है। दोस्तों, इतिहासकार और वैज्ञानिक नई खोज के लिए संग्रहालय के पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर होते हैं, और इसलिए दोस्तों संग्रहालय की इसी विशेषता को बताने के लिए हर साल आज के दिन यानी 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस मनाया जाता है। और आइए आगे जानते हैं कि झारखंड और भारत के प्रसिद्ध म्यूजियम के बारे में। राज्य संग्रहालय यह रांची में स्थित है। यह संग्रहालय झारखंड का सबसे प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है। दूसरा जनजातीय अनुसंधान संस्थान एवं संग्रहालय TRIM यह भी रांची के मोराबादी में स्थित है, और इसमें झारखंड के विभिन्न जनजातियों की जीवन शैली, पारंपरिक कलाकृतियां और उनके आवासों की बेहतरीन झलक देखने को मिलती है। तीसरा है रांची विज्ञान केंद्र, और चौथा है संस्कृत म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी हजारीबाग। यह एक निजी संग्रहालय है, स्थानीय कला और ऐतिहासिक वस्तुओं का एक बेहतरीन केंद्र है। और पांचवा जमशेदपुर सिक्का संग्रहालय, यह देश और दुनिया के कई प्राचीन ऐतिहासिक और विदेशी सिक्कों का अनोखा संग्रह मौजूद है। और आइए जानते हैं भारत के प्रमुख कौन कौन से म्यूजियम है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता या भारतीय उपमहाद्वीपों का सबसे पुराना और सबसे बहुउद्देश्यीय संग्रहालय है। दूसरा है नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में,

और आइए जानते हैं मौसम का हाल। आज सूर्यास्त होगा संध्या 6:30 पर और कल सूर्योदय होगा सुबह 5:11 पर। आज अधिकतम तापमान 37°C और न्यूनतम तापमान 25°C रहेगी और मौसम ऐसा ही कड़ी धूप रहेगी जिससे तापमान में बढ़ोतरी होगी।

0: दोस्तों आज है विश्व एड्स टीकाकरण दिवस, तो इस मौके पर आइए सुनते हैं एक भेंट वार्ता हजारीबाग के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार से संजय केसरे की बातचीत, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं विक्रम कुमार रंजन।
1: श्रोताओं, आज विश्व एड्स टीकाकरण दिवस है, जिसे HIV टीकाकरण जागरूकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। विश्व एड्स टीकाकरण हर साल 18 मई को विश्व भर में मनाया जाता है। दोस्तों, आज का यह दिन उन हजारों वैज्ञानिकों, चिकित्सा पेशेवरों, समुदाय के सदस्यों और स्वयं सेवकों को सम्मानित करता है और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करता है, जो एक सुरक्षित और प्रभावी एड्स वैक्सीन बनाने और HIV से जुड़े कलंक को मिटाने के लिए अथक प्रयास करते हैं। दोस्तों, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस पर आज हमारे बीच मौजूद हैं हजारीबाग के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार। तो डॉक्टर साहब, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: हाँ, धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि विश्व एड्स टीकाकरण दिवस मनाने के लिए आज का ही दिन क्यों चुना गया, इसके पीछे का इतिहास क्या रहा है?
2: वर्ल्ड एड्स वैक्सीनेशन डे प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत बेवेक 1998 से है। तत्कालीन जो बिल क्लिंटन साहब थे US के प्रेसिडेंट, उन्होंने उसी दिन स्पीच दिया था, जो ग्लोबल एक इम्पैक्ट है सोसाइटी पे एड्स के इफेक्ट का, के उससे लड़ने के लिए कि कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं। तो उसी दिन से इसकी शुरुआत हुई कि हाँ, हम लोग इस सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी इसके वैक्सीनेशन का प्रॉपर, मैं कहूँगा कि दवाई नहीं है। तो उस दिन से इसकी शुरुआत होगी ताकि लोग अवेयर हो सके और डिफरेंट तरह का जो इफेक्ट है वो हो। तो इसकी शुरुआत मैं कहूँगा कि वही 18 मई 1998 के बाद से है और जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है।
1: हम आपसे आगे जानना चाहेंगे कि आप इस दिवस के मुख्य उद्देश्यों के बारे में बताएं, इसके महत्व के बारे में हमारे श्रोताओं को बतलाएं।
2: देखिए, इनफैक्ट यदि वैक्सीनेशन की बात करें तो मैं पहले भी कहा हूँ कि अभी तक इसका प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं है, लेकिन हाँ, ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हम जब इसको मनाते हैं एक डे के रूप में, तो इससे इफेक्ट, इसका प्रॉपर क्या समाज पे इफेक्ट पड़ सकता है इसके बारे में, तो सबसे बड़ी बात है कि पहले तो जब हम कराते हैं तो हम एक सोसाइटी को अवेयर करते हैं एड्स के बारे में। वैक्सीनेशन तो ठीक है होगा, और वैक्सीनेशन प्रॉपर ना भी हो, नहीं अब उसका दवाई ना भी है, तब भी हम लोग कम से कम एड्स के बारे में उस दिन से कम जानेंगे कि हाँ, कैसे इससे बच सकते हैं। और एक तरह से पब्लिक इसके बारे में, जो बहुत लोग नहीं भी जानती, कभी कभी देखते हो कि पर्टिकुलर मीडिया में कोई पब्लिक नहीं उसको पहुंच पाता है, जैसे कोई पेपर पढ़ता है, कोई कहीं बैनर देखता है, तो सभी चीज जब व्यक्ति नहीं देख पाते, कोई रेडियो को सुनता है, कोई टीवी देखता है, तो उस कंडीशन में डिफरेंट तरह के मीडिया के थ्रू यदि ये हम पब्लिक को अवेयर कर पाते हैं तो एक बहुत बड़ी बात है।
1: यही कारण डॉक्टर साहब की इस विश्व एड्स टीकाकरण दिवस को HIV टीकाकरण जागरूकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है।
2: हाँ, ऐसा ही है। और दूसरी बात है कि हम तो पब्लिक को जागरूक किए, दूसरा है कि हम उस दिन ये प्रण लें कि हम आगे और वैक्सीन इजाद करने के लिए हम प्रॉपर एफर्ट करें। तो एक तरह से हमारे जो मेडिकल मैन है, डॉक्टर्स हैं या जो रिसर्चर्स हैं, उनके लिए भी एक अवेयरनेस होता है कि हाँ, हम कैसे प्रॉपर वे में वैक्सीनेशन का इजाद कर सकते हैं। और तीसरा है कि जैसे जैसे हमारा ये गोल उसके तरफ बढ़ता है, तो एक सोसाइटी में और एक डॉक्टर्स में, डॉक्टर समुदाय में, मेडिकल फील्ड में एक होप भी जागती है कि हाँ, हम इस काम को कर सकते, एक कमिटमेंट के रूप में हम लोग उसको लेते हैं कि हाँ, हम वैक्सीन के बनाने के करीब पहुंच सकते हैं। जैसे आपने देखा हो कि जब हमारे यहाँ COVID-19 आया, एक महामारी के रूप में पूरे वर्ल्ड में फैल गई, तो उस कंडीशन में हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं था, लेकिन बहुत जल्द हम लोगों ने उसको कम्बैट करने के लिए, उसको हराने के लिए डिफरेंट तरह का वैक्सीन, डिफरेंट कंट्रीज ने वैक्सीनेशन बनाने का शुरुआत किया और हम लोग उसमें सक्सेसफुल भी हो पाए। तीसरा है कि उस डे के रूप में यदि हम देखें, ऐसे तो लोग बहुत कम ही कहे ना कि बहुत कम लोग अवेयर हो पाते हैं, लेकिन उस डे को मनाने का मेरा उद्देश्य ये भी है कि एजुकेशनली लोग समझ पाते हैं कि हाँ, एड्स में कैसे हो सकता है, क्या कारण है होने का,
1: उसका बचाव कैसे
2: हम कर सकते हैं। और यदि न हो, मेन रूप से अब यदि हमारे पास प्रॉपर वे में वैक्सीनेशन अभी नहीं है, तो न हो इसके लिए एजुकेशन के तौर पे सभी लोग, सोसाइटी के लोग ले सकते हैं, तो एक बचाव बहुत मुख्य मुद्दा बनता है इसके लिए।
1: तो हम डॉक्टर साहब कह सकते हैं कि इसका महत्व जो है मुख्य रूप से लोगों को जागरूक करना है, और जो भी पेशेवर चिकित्सक हैं उनके बीच एक उत्साह और समानता को प्रोत्साहित करना है, ताकि इस क्षेत्र में वैक्सीनेशन के इनोवेशन में जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन प्रोत्साहन मिल सके?
2: निश्चित रूप से। और दूसरा बात है कि चूंकि ये ग्लोबल इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, तो हम लोग इस डे में मनाने का एक मुख्य कारण ये भी है कि इसको हम ग्लोबली मनाते हैं एज ए वर्ल्ड डे के रूप में। तो जितने भी हमारे रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं मेडिकल फील्ड के, सभी लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि हाँ, हमको कैसे सोसाइटी को इससे बचा सकते हैं और कैसे हम इस एड्स के और एचआईवी के इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं
1: और तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर सकते
2: ज्यादा हाँ ज्यादा जो वही है जागरूक करेंगे तभी हम इसका इम्पैक्ट कम होगा।
1: आगे डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एचआईवी वैक्सीन अनुसंधान की अभी वर्तमान में क्या स्थिति, या कहें कि एचआईवी वैक्सीन अनुसंधान में अभी तक क्या प्रगति हुई, इसके बारे में भी कुछ आप हमारे श्रोताओं को बतलाएं।
2: देखिए, ये एक्चुअली एचआईवी वैक्सीन पे अभी बहुत कुछ नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ, हम लोग टी सेल इम्यूनिटी और रेट्रोवायरस जिसको बोलते हैं उसके प्रोडक्शन, मतलब कि उसके तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि हम लोग निकट भविष्य में हम इसके अगेंस्ट में वैक्सीनेशन का इजाद कर पाएंगे।
1: डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि इतने वर्ष हो गए लेकिन अभी तक एड्स को लेकर किसी भी तरह का कोई वैक्सीन का इजाद नहीं हो पाया है, उसका इनोवेशन नहीं हो पाया है, तो इस एड्स के वैक्सीन को विकसित करने में कहां पर दिक्कतें आ रही, क्या चुनौतियां आ रही हैं?
2: देखिए, वैक्सीनेशन का इजाद बहुत चीज पर डिपेंड करता है। किसी भी माइक्रोबैक्टीरियम के अगेंस्ट में हम यदि वैक्सीनेशन बनाते हैं तो पहले हमको हैबिटेट को, उसके इनक्यूबेशन पीरियड को, उसका जो रहन सहन का, मैं कहूंगा कि उसका जो बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है उसको प्रॉपर स्टडी करने के बाद ही हम बना सकते हैं। और ये लॉन्ग वे में होता है, ये नहीं कि आप तुरंत किसी के बॉडी पे उसका

0: इम्पैक्ट देख लिए और वैक्सीन का इजाद कर लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक कि इसको ट्रायल बेसिस पर भी हम करें और काफी लंबे समय तक ट्रायल नहीं करें, तब तक हम वैक्सीन नहीं बना पाते हैं। और चूंकि इसका आप जानते हैं, इसका ट्रांसमिशन चाहे प्रॉपर वे में हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो, या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो, या फिर सेम नीडल्स यूज करते हैं तो हो, तो चूंकि इसका जो
1: संक्रमण है
0: फैलने का तरीका है वो भी अलग है, इसलिए थोड़ी सी इसमें वैक्सीन इजाद करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है।
1: संक्रमण की अवधि भी काफी अधिक।
0: हाँ, मैं बोला ना कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड प्रॉपर वे में होता है। मान लीजिए जिसका बहुत ज्यादा लंबा इंक्यूबेशन पीरियड है, तो उसको हमको उतना ही दिन तक उसको ट्रायल में रखना पड़ेगा, और जब तक उसका प्रॉपर हम ट्रायल लंबे समय तक नहीं कर सकेंगे, तब तक बहुत मुश्किल होता है वैक्सीनेशन बनाने में। यही कारण है कि इसको बनाने में अभी दिक्कतें आ रही है और देरी हो रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है जो हम लोग पहुंच पाए हैं, बोले ना अभी टी सेल इम्यूनिटी के पर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, मैसेंजर आने पर काम कर रहे हैं, रेट्रो वायरस पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि हम लोग कर पाएंगे। जैसे अभी देख रहे होंगे हम लोग का एक और प्रोग्राम चल रहा है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अगेंस्ट हम लोग वैक्सीनेशन दे रहे हैं 14 साल से 15 साल के बच्चियों को पूरे कंट्री में, जो सर्वाइकल कार्सिनोमा का एक कारण, तो हम लोगों ने उसका उस वैक्सीन को इजाद किया, तो इसी तरह से हम लोग इसके अगेंस्ट अभी वैक्सीन बना लेंगे, पूरी उम्मीद है।
1: और डॉक्टर साहब, इस वर्ष विश्व एड्स टीकाकरण दिवस का थीम क्या रखा गया है और इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किस प्रकार की योजना बनाई गई है?
0: इस वर्ष जो इसका वर्ल्ड एड्स वैक्सीनेशन डे का थीम है वो है रीबिल्ड एंड राइज, मतलब हम लोग जो बना रहे हैं उसको पुनः सोचे। दूसरा है कि बनाने के तरफ डायरेक्ट अटेंशन टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी, हम सोचे कि जब तक हम नहीं सोचेंगे उस वे में तो हम बना नहीं पाएंगे। और तीसरा है कि जो डिमांड्स है वो पूरा करें, उसके लिए हमको स्ट्रांग लीडरशिप की आवश्यकता है। जो इस साल का जो थीम है, इस हम लोग रीबिल्ड, रीथिंग और राइज, इस पे हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा।
1: और अंत में डॉक्टर साहब, हम आपसे कहना चाहेंगे कि विश्व एड्स टीकाकरण के आज के इस दिन आप हमारे श्रोताओं को, हजारीबाग के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: ये निश्चित रूप से मैं अपने पूरे जिलेवासियों से ये उम्मीद करता हूँ कि आज जब हम इसको वैक्सीनेशन डे के रूप में मना रहे हैं, तो आप सभी लोग जाने कि ये कैसे फैलता है। जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि कैसे फैलता है, तब तक आप बचाव अपने आप को नहीं कर पाएंगे। और जो इसके बचाव का तरीका है, निश्चित रूप से उससे बचें, और जब तक आप बचेंगे नहीं तब तक आप दूसरे सोसाइटी को भी नहीं बचा पाएंगे। दूसरा है, जब तक आपको आवश्यक नहीं हो तब तक आप ज्यादा कदा जो झोला छाप डॉक्टर हैं, इन लोगों से जाकर के आप इंजेक्शन या ये सब न लें, क्योंकि वो स्टरलाइज सिरिंज या ये सब का यूज करते हैं नहीं करते, इसका पूरी जानकारी हम लोगों को पूरी पता उन लोगों को भी नहीं होता है, तो क्या करेंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जो संक्रमण का तरीका फैलने का है उसको समझें और उससे बचें, और अपने बचें और सोसाइटी को भी बचाएं। पूरे हजारीबाग जिले में कम से कम इसका संक्रमण हो सके, ये मुझे उम्मीद है और हम अपने जिलेवासियों से उम्मीद ही करते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, आज विश्व एड्स टीकाकरण दिवस पर आप हमारे साथ जुड़े और विश्व एड्स टीकाकरण दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को हमारे बीच आपने साझा किया, इसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो श्रोताओं, अभी आप लोगों ने सुना विश्व एड्स टीकाकरण दिवस पर हजारीबाग के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार से संजय केशरी की बातचीत, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे विक्रम कुमार रंजन।

तो कार्यक्रम हेलो हजारीबाग में आइए आगे बढ़ते हैं और झांकते हैं इतिहास के पन्नों में क्या दर्ज है। तो दोस्तों आज है 18 मई और जानते हैं किन किन कौन कौन से ऐसी घटनाएं हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई। ईस्वी में पहली भारतीय फीचर लेंथ फिल्म श्री पुंडलिक का मुंबई के कोरोनेशन सिनेमा में प्रीमियर हुआ था और 1974 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपना पहला सफल भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था और इसका जिसका कोडनेम स्माइलिंग

मुद्दा रखा गया। श्रीलंका सरकार ने लिट्टे के साथ 25 साल लंबे गृह युद्ध के समाप्त होने की घोषणा की थी साल 2009 में, और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक ने अपना पहला इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ जारी किया था साल 2012 में।

और आइए जानते हैं किन किन हस्तियों ने आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता जतरा टांग का निधन हुआ था 1991 ईस्वी में, और भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध गायक और अभिनेता कुंदन लाल सहगल जिनका भी निधन हुआ था 1947 ईस्वी में आज ही के दिन। और आइए जानते हैं किन किन हस्तियों का जन्म हुआ। 1842 ईस्वी में भारत के प्रसिद्ध विद्वान समाज सुधारक और न्यायाधीश महादेव गोविंद रनाडे का जन्म हुआ था, और भारत के 12वें प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा का जन्म हुआ था 1933 ईस्वी में आज के दिन, और भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का भी जन्म हुआ था 1961 ईस्वी में आज के दिन।

तो दोस्तों, घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। तो दोस्तों, कुछ हंसकर बोल दे, कुछ हंसकर टाल दे, परेशानियां तो बहुत हैं, कुछ वक्त पर टाल दे।

0: और इसी गीत के साथ कार्यक्रम हेलो हजारीबाग यहीं पे समाप्त। तो अभी आप सुने थे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग FM 102.1 MHz पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते अपने मुंबई केंद्र जहां से आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।
1: हमारी पौराणिक धरोहर बनी रहे
2: जी। तो और साथ ही हम अपने श्रोताओं को ये भी बताएं कि आज ही जो है विश्व चिकित्सीय बागवानी दिवस भी है। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए बागवानी के चिकित्सीय लाभों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो हम सभी को पता है कि बागवानी एक ऐसा शौक है जो लोगों को मानसिक शांति भी देता है और आपको शारीरिक रूप से भी फिट बनाता है।
1: बिल्कुल। और बागवानी अगर आप करते हैं, देखो बहुत बृहद स्तर पर अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपके पास जो छोटी सी जगह ना उसमें ही कीजिए। इंडोर प्लांट लगाइए, आउटडोर प्लांट लगाइए, या आसपास में अगर आपका आपके पास जमीन है, घर है, तो उसके आसपास कोशिश करिए थोड़ी सी बागवानी करने की। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि जो पेड़ पौधे हो ना वो आपके तनाव को दूर करते हैं, आपके स्ट्रेस को कम करते हैं, उनके साथ बिताया गया पल आपको ऊर्जा से भर देता है।
2: और आपके घर के नीचे में अगर जगह नहीं है तो आप छत पे भी कुछ गमले रखें।
1: आजकल बहुत सुविधाएं आ गई, आप ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं, आप छोटे छोटे गमलों में लगा सकते हैं, आप पॉट में लगा सकते हैं। बागवानी करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास एकड़ में जमीन होनी चाहिए। जमीन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो छोटी छोटी जगह पे लगा
2: के फ्लैट में बालकनी में भी एक अच्छा छोटा सा बागवानी का सेटअप तैयार कर देते हैं।
1: आजकल तो इंडोर प्लांट का इतना प्रचलन आ गया है कि प्रायः हर घर में आपको बहुत सारे पौधे देखने को मिलेंगे जो कि देखने में भी अच्छे लगते हैं, मन को सुकून भी देते हैं। और फिलहाल अभी सुकून के लिए एक अपने श्रोताओं को गीत सुनवाते हैं, फिर आगे की बात करेंगे।
3: जिया चले जा चले

0: और अमृता बात कर रहे हैं आज के दिन की, तो आज बेहद खास दिन है
1: जी,
0: जिसके बारे में जानना और जिसको मानना भी जरूरी है
1: जी।
0: आज है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, यानी HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस जो हर साल 18 मई को मनाया जाता है।
1: हाँ बिल्कुल, इस दिन का मुख्य उद्देश्य HIV एड्स को रोक की रोकथाम के लिए एक सुरक्षित व प्रभावी वैक्सीन खोजने की आवश्यकता पर जोर देना है और वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य कर्मियों व स्वयं सेवकों के प्रयासों को सम्मानित करना भी है।
0: यह दिन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के 1997 के उस ऐतिहासिक भाषण से प्रेरित है जिसमें उन्होंने एक प्रभावी निवारक वैक्सीन के जरिए एड्स के खतरे को समाप्त करने का आह्वान किया था।
1: हाँ, पहला विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई 1998 को मनाया गया था। वर्तमान स्थिति, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी और अन्य बचाव उपायों ने HIV को नियंत्रित करने में बहुत मदद की है,
0: लेकिन आज भी इस महामारी को जड़ से खत्म करने के लिए एक वैक्सीन का विकास चिकित्सा जगत के लिए पहली बड़ी प्राथमिकता है। इसे कैसे किया जाए, किस तरह इसको लागू किया जाए और किस तरह ऐसी कारगर वैक्सीन बनाई जाए जिससे लोग इस महामारी से बच सके।
1: इस मौके पर जो है स्वास्थ्य संगठनों और समाज के स्तर पर कई वेबिनार, सेमिनार और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें निशुल्क जांच स्थानीय स्तर पर सरकारी ICTC केंद्रों में मुफ्त गोपनीय HIV को बढ़ावा दिया जाता है। होता क्या है ना कि लोग HIV से अगर पॉजिटिव हो भी जाते हैं ना, तो कई बार जागरूकता के अभाव में जानकारी नहीं, अपने जो मेडिकल परामर्श है वो लेते नहीं हैं, ना डॉक्टर के पास जाते हैं ना हॉस्पिटल में जाते हैं।
0: अभी भी लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां इस बीमारी को लेकर फैली हुई है और इसीलिए ये दिन मनाया जाता है और कोशिश ये की जा रही है कि कोई कारगर इलाज, कोई कारगर वैक्सीन इसमें और अच्छा डेवलप हो सके जिससे लोग इस बीमारी से बच सके। फिलहाल तो हम अपने श्रोताओं से इतना ही कहना चाहेंगे कि आज बदलती दौर में सबको सब चीज पता है क्योंकि इंटरनेट दुनिया में हर चीज पूरी खुली किताब है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि एड्स से जो बचने के उपाय सुझाए गए हैं उसका पालन जरूर करिए और कोशिश करिए कि इस बीमारी से कोई ग्रसित ना हो।
1: जी हाँ, जागरूक रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करिए।
0: बिल्कुल, कहा गया ना, जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, फिर कोई भी बीमारी आपको छू नहीं पाएगी और आप हंसते खेलते खिलखिलाते अपना जीवन जी पाएंगे।

0: अमृता, इतनी सारी बातें कर ली हमने और बहुत सारी चर्चा भी चल ली, थोड़ा मुझे लगता है तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम कहीं जाने की तैयारी में हो।
1: हाँ बिल्कुल, मेरा मूड तो हो रहा है कि अब जल्दी से अपना सामान पैक करें और कहीं चले जाएं।
0: यानी गर्मी की छुट्टी।
1: जी हाँ, गर्मी की छुट्टी, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टियां हो रही हैं, तो फिर ये बहुत ही अच्छा मौका है मेरे लिए कि हम सारे परिवार मिलके कहीं अच्छी जगह पे चले।
0: अच्छा, ये आपके लिए नहीं है, बाकी लोग हर घर में यही प्लान अभी चल रहा होगा कि कौन कहाँ जाएगा।
1: जी,
0: किसी के पास समय बहुत नहीं है तो शॉर्ट टर्म के लिए भी, दो दिन के लिए भी कहीं जाना चाहेंगे बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे की जब छुट्टियां होती है ना बच्चों की, तो बच्चे परेशान करते हैं, घर पे रहेंगे, हमें घुमाने ले चलो। और कुछ ऐसी जगह है जहाँ आप कितनी बार भी जाओ ना आपका मन नहीं भरेगा।
1: हाँ बिल्कुल, तो उन्हीं में से एक खास जगह है हिमालय की तलहटी में बसे ऋषिकेश का वातावरण और पर्यावरण, अध्यात्म, योग और आराधना से की आभासी लबरेज। और यहीं पे स्थित है बीटल्स आश्रम, जिसे 84 कुटिया भी कहते हैं, और यहाँ के भित्ति चित्र और 84 ध्यान गुफाएं विशिष्ट हैं। दुनिया भर से स्वयं की खोज में लोग यहाँ आते हैं, जिनमें से कुछ तो यहीं के हो गए रह जाते हैं। वास्तव में ध्यान और योग की राजधानी है यह विशिष्ट जगह। इसे भारत की ही नहीं दुनिया की योग नगरी माना जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम माने जाने वाले मंदिरों की शहर ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर होने वाली संध्या आरती में शामिल होकर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभूति होती है।
0: और बताएं हम अपने श्रोताओं को अमृता, कि जो ऋषिकेश है ना, बेहद ही खूबसूरत सी जगह है
1: जी,
0: और बहुत ही सेफ जगह है। अभी तो बहुत भीड़ है, अभी चार धाम यात्रा की वजह से लोग बहुत जा रहे हैं, और ये जो समय है ना, ये जाने का बहुत अच्छा समय है। आप वहाँ पर जाइए, प्रकृति प्रेमियों के लिए तो यहाँ बहुत सारी जगह है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक झरने हैं, जिसमें नीरगढ़ का झरना, गरुड़ चट्टी और बहुत सारी खूबसूरत जगह है, जहाँ पे आप जाकर अपने कैमरे में, अपनी आंखों के कैमरे में उसे हमेशा के लिए कैद कर सकते हैं। और गंगा की जो धारा है ना ऋषिकेश में, कहा जाता है वो सबसे निर्मल धारा।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी के मौसम में नदी, झरनों और तालाबों का जो सानिध्य आराम आपको देता है, नीला पानी जहाँ जहाँ खेलता उछलता हुआ ऊंचाई से उतरता या बहता है, और हर उम्र के सैलानियों को रोक कर कहता है, उसका खिलखिलाता हुआ रंग, आवेग और मचलना आंखों में ऐसे समा जाता है जैसे आपको लगेगा कि आप किसी स्वर्ग में आ गए हैं।
0: बिल्कुल, और इसी केस जब आप जाएंगे ना और वहाँ पे आप रहेंगे कुछ दिन ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि स्वयं को अभिभूत करने वाला निर्मल आनंद हमारे शरीर में प्रवेश कर गया है
1: जी।
0: और वहाँ मतलब बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, बहुत सारे आश्रम है, आप कम खर्च में भी वहाँ जाकर रह सकते हैं। और जो धार्मिक नगरी है और योग की नगरी है, मंदिरों की नगरी है, वहाँ आप आनंद उठा सकते हैं।
1: हाँ, साथ ही महाप्रसिद्ध लक्ष्मण झूला जो है पुराना हो जाने के कारण बंद कर दिया गया है, उसके पास बना 13 मंजिला त्रैकंबेश्वर मंदिर दूर से ही ध्यान खींच लेता है। लक्ष्मण झूला के पास ही नया सेतु बनाया जा रहा है। ऋषिकेश में टैक्सी के अतिरिक्त स्कूटर

0: देखो अमृता, इतना घुमा फिरा तुमने दिया है ना, घूमने जब जाते हैं तो हम बहुत सारी चीजें कुछ भी खा लेते हैं तो बिल्कुल खराब हो जाता है,
1: उसका सेहत पे जो है बुरा
0: असर पड़ता है। और अभी वैसे भी गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में ना पेट को ठंडा रखना जरूरी है।
1: हाँ, तो गर्मी के मौसम में अगर बातें करें तो दही के स्वाद से हम सभी वाकिफ हैं। दही जो है सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है।
0: बिल्कुल, और दही की बात कर रहे हैं तो दही में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B6, B12 और राइबोफ्लेविन जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें पाए जाने वाले अच्छे बैक्टीरिया हमारी आंतों को स्वस्थ रखते हैं और पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं।
1: जिन लोगों को खाना खाने के बाद एसिडिटी, गैस या पेट में जलन की समस्या होती है, उन्हें भोजन के साथ या उसके बाद में एक कटोरा सादा दही जरूर लेना चाहिए।
0: दही के बहुत सारे गुण हैं अमृता। दही कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, इसे खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम होता है, इसके अलावा दांत और नाखून भी मजबूत बने रहते हैं। और पता है दही को बहुत तरीके से खा सकते हैं हम, दही प्लेन खा सकते हैं, दही नमक जीरे के साथ खा सकते हैं, दही रायता के साथ खा सकते हैं, दही छौंक लगाकर खा सकते हैं। तो दही खाने से यकीन करो कि हमारे शरीर को बहुत ही फायदे होते हैं।
1: दही में मौजूद जो है प्रोबायोटिक्स इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। गर्मियों में होने वाले पेट से संबंधी संक्रमण और फूड पॉइजनिंग की शिकायत को रोकने के लिए सहायक हो सकता है। हालांकि रात में अधिक मात्रा में दही खाने से कुछ लोगों को सर्दी जुकाम की परेशानी भी हो सकती है, इसलिए आप प्राय कोशिश करें कि दिन के वक्त ही दही खाएं।
0: बिल्कुल, दही आप कभी भी खाइए, रात में भी अगर खाते हैं ना तो ठंडी दही मत खाइए। दही में अगर नमक डालकर आप खाते हैं तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। और अभी गर्मी के मौसम में जो दही है, और दही जैसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको स्वस्थ रखेंगी, जैसे आप हमने शुरू में ही बात की थी कि मौसम बहुत अजीब सा बदल रहा है, बहुत गर्मी अचानक सा हो रही है, अगले दिन तुरंत शाम को बारिश होने लगती है, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ना गर्मी के मौसम में अपने खान पान का विशेष ख्याल रखना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहे। और दही ऐसी चीज है ना जो अगर दूध का सेवन नहीं करते हैं या बच्चे जो नहीं खाना चाहते हैं उन्हें दही की लस्सी आप बनाकर पिलाइए, वो जरूर पिएंगे। और दही की स्मूदी भी बनती है, वो भी बच्चे खा सकते हैं। तो दही से जुड़े अनेकों चीजें हैं जिनका प्रयोग करके आप गर्मी में या सालों भर, दही तो बहुत लोग सालों भर खाते हैं, बीच में एक दो महीने नहीं खाते हैं जिस समय उसमें फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो दही का इस्तेमाल नियमित करें, अपने स्किन को भी ग्लोइंग बनाकर रखें। और बहुत सारी बातें, जानकारी हमने अपने श्रोताओं को दे दी है अमृता। तो घड़ी की ओर देखो, घड़ी हमें जाने का इशारा भी कर रही है,
1: घड़ी अब इशारा कर रही है कि अब हमारी बातें जो है यहीं पे
0: खत्म होनी चाहिए। तो हम अपने श्रोताओं को इतना ही कहेंगे कि स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिए। और इस कार्यक्रम से सुनीता
1: और अमृता को दे इजाजत, आप सभी को
0: नमस्कार, जोहार। और सुनते हैं ये खूबसूरत संगीत।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहर रांची, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आपने ट्यून किया है FM 100.5 MHz पर। अब आपको सुनाते हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म कभी हाँ कभी ना के इस प्यारे से गीत के साथ। स्वर हैं सोनू निगम के, बोल हैं मजरू सुल्तानपुरी के और धुन बनाई है जतिन ललित ने। इस गीत को सुनना चाहा है भटिंडा रोड डबोवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग। और इसी गीत की फरमाइश आई है मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाटी, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरुचरण ग्रोवर, रमेश मिगलानी की। तो इन सबों की फरमाइश पे आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
2: एनसीपीसीआर आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगली फरमाइश आई है बाबा बैजनाथ धाम से मनोज केसरी, पूजा केसरी, महादेव केसरी, श्रद्धानंद केसरी, रोशनी केसरी की, और इसी गीत को सुनना चाहा है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइनी शर्मा और निवान शर्मा। और इन सबों ने फरमाइश की है दोस्तों फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की इस प्यारे से गीत की, जिसे गाया है पामेला चोपड़ा, मनप्रीत कौर ने, संगीतकार हैं जतिन ललित और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की अगली फरमाइश आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, चर डोंगरी पिपिरिया से दुर्गाराम साहू और गोंदा टाउन कांके रोड से रमेश प्रसाद जायसवाल, मनीदीप मंटू, मोनू सोनू आराध्या, ग्राम बगबूरवा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनमिका, उत्कर्ष नेताम। दोस्तों, ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म दिल तो पागल है के इस प्यारे से गीत को, जिसे गाया है उदित नारायण, लता मंगेशकर ने, संगीत दिया है उत्तम सिंह ने और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

दोस्तों कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म कल हो ना हो से। इस गीत को गाया है सोनू निगम ने और धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने। इस गीत को सुनना चाहा है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती ऊषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा निवेदा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम, जेलोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्ला आसमा बेलदार। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी से। इस गीत को गाया है अभिजीत और अलका याग्निक ने, संगीत है जतिन ललित का और रचना जावेद अख्तर की है। इस गीत को सुनना चाहा है राजा बाजार भैया आरा से सुरेश केसरी, पूनम केसरी, प्रतीक केसरी, थाना रोड बक्सर से ओमानंद केसरी, धनानंद केसरी, विनोद केसरी। और इसी गीत को सुनना चाहा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनैया सब श्रोता बहन मन के सुमन बहन बटले जोहार और वंदना बहन राउत को जोहार
1: जोहार सुमन दी और कार्यक्रम सुनवैया सब बहन मन के वंदना राय बटले जोहार और आसरा करीला कि हमार सब प्रिय श्रोता बहन मन खुशी और स्वस्थ होबे।
0: सही कहली बहन मन जे है से घर कर धूरी हुआ है ना, और जब भी मन स्वस्थ रह हमरे स्वस्थ रह तबे सब बट से खुशी और स्वस्थ परिवार कर निर्माण भी वेला है नी। और जब गोटा परिवार खुश और झकझोर करके एकदम मस्त रहला तबे सब बेस रहला। सहेले महिला कर योगदान अपन

कन मौसम कर कखनो गरम हो जाते तो कखनो ठंडा हो जाते तो कखनो बरसात हो जाते सेले ई बदलत मौसम में हमरे के विशेष सावधानी रखे कर दरकार है। ई बदलत मौसम में सर्दी खोखी जर और एलर्जी होवे कर बहुत खतरा बढ़ जाएला। और देखो नहीं अगर स्वस्थ रहे है तो हमरे मन के गुनगुना पानी के पिए के चाहिए। पौष्टिक आहार जेकर में विटामिन सी होवी से के जरूर लेवे के चाहिए और अपन पूरा शरीर के ढाई के हमरे मन के रखे के चाहिए। और देखो नहीं बाहरे कर जे खाना हमरे मन खाई ला से कम खाई के चाहिए। घर कर खाना के हमरे मन के बगरा खाई के चाहिए। और ई मौसम में देखो डिहाइड्रेशन और लू कर कारण भी होवेला बहुत गर्म हो गेले सेले हमरे मन के ऊपर से बाचे कर

0: तुरंत पानी की नींब पिए चाहिए, इन्हीं की धूप से आली और प्यास बहुत तेज है तो जल्दी जल्दी पानी के पिए थी। उकर से भी बहुत नुकसान हो और ना तो नहाक चाहिए, पहले खुद के बैठो शांत हो और तनिक उन ठंडा करो शरीर के बदन के, उकर बाद नहाय के पानी बनकर सेवन करे चाहिए। और देखो कि छानल गारल भगरा तेल मसाला ये सब कर प्रयोग नहीं करे चाहिए ईसन मौसम में खास करके। और जे भी खाए पिए का चीज है जेकर में कि पानी कर मात्रा ज्यादा रह लग, जैसे कि तरबूज भेला, खीरा ककड़ी मन है, चाहे संतरा है, और जैसन भी फल जे कि खुला में राखल है उके मत कहो काट के राखल, जैसे कि बहुत जगह देखा नहीं कि तरबूज मन काटल ठेला मन में, और उसे उन सब कर सेवन मत करो कभी भी। जब भी करूं तो घर में काट के बढ़िया से स्वच्छ तरीका से काटू, साफ सुथरा तरीके से काटू धो और उकर बाद उकर सेवन करू। और साबुन और पानी से बार बार हाथ के धोवे के चाहिए। और एसी कर जैसे टेम्परेचर है उके भी कम में राखू, और एसी से भी देखे कि तुरंत आदमी का करे कि एसी में रूम में रहते और तुरंत उकर से बाहर आवी, उकर से भी सरद गर्म के संभावना बहुत ज्यादा बढ़ेला, और ईसन में इंफेक्शन कर भी खतरा ज्यादा बढ़ेला। तो ये सब कर हमरे के जरूर अपन ध्यान रखे चाहिए अपन डेली कर दिनचर्या में।
1: बोलू तो एसी का जो टेम्परेचर है से के अगर हमरे मन 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तक रखी ला तो हमरे कर स्वास्थ्य की हानि नहीं पहुंचाएला। और देखो हमरे रोद में अगर निकसत थी तो सनस्क्रीन का उपयोग हमरे मन के जरूर करे चाहिए। और वायरल इन्फेक्शन से बचे खातिर देखो भीड़ वाला जगह में हमरे मन के नहीं जाए के चाहिए। अगर जर मूड़ बत्था उल्टी या दस्त जैसन लक्षण दिशत है तो तुरंत डॉक्टर दिखाए के चाहिए। और लू कर खतरनाक लक्षण जैसे कि चक्कर आवे, बेहोशी या त्वचा एकदम जे शुष्क हो जाएला,
0: जलन हो
1: लागे, हाँ, और जलन होवेला तो तुरंत हमरे मन के डॉक्टर दा जाए के चाहिए। तो ये सब करके हमरे मने बदलत जे मौसम ओकर में सावधानी अपने के रख सकिले
0: और स्वस्थ रख सकिले अपन आपके, है नी। तो चलो हमरे अपन कार्यक्रम में आगे बढ़ी ला और एगो गीत के सुनी ला, नागपुरी लोकगीत यशोदा देवी और संगीमन कर गावल।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: ये रहे विज्ञापन संदेश, इकर आगे हमरे सुन ली नागपुरी लोकगीत यशोदा देवी और संगीमन करगावल।
3: तो चलू अब हमरे मन जानकारी करब कि आयु अनुकूल उपयुक्त आहार छुआ मन कर स्वास्थ्य कर आधार, इकर बारे हमरे के बताते विनीता शुक्ला और बातचीत कर रहे हैं हमरे कर सुमन बहिन।
4: बच्चों का स्वास्थ्य उनके भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है। स्वस्थ बच्चा ही आगे चलकर स्वस्थ और सफल नागरिक बनता है। बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आयु के अनुसार सही और संतुलित आहार मिले और हर उम्र के बच्चे की शारीरिक और मानसिक जरूरतें अलग अलग होती है। इसके लिए उनके भोजन में भी बदलाव होना जरूरी है। बच्चों को उनकी आयु के अनुसार पौष्टिक भोजन दिया जाता है जो उनको शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, जिससे उनकी बौद्धिक क्षमता, दिमाग तेज होना और बीमारियों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है। छोटे बच्चे के लिए माँ का दूध सबसे उत्तम आहार माना जाता है और जन्म से 6 महीने तक के बच्चे केवल माँ के दूध पर निर्भर होते हैं। इसे सभी जरूरी पोषक तत्व हैं जो बच्चे के विकास में मदद भी करता है। 6 महीने के बाद बच्चे धीरे धीरे दाल का पानी, खिचड़ी, फल, सब्जी, सूप, हल्का भोजन लेना शुरू करता है। भोजन में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम और आयरन की मात्रा बहुत संतुलित मात्रा में होनी चाहिए। स्कूल जाने वाले बच्चों को दूध, अंडा, दाल, हरी सब्जियां, फल, अनाज नियमित रूप से देना चाहिए। इसके उनकी पढ़ाई में तन बढ़ता है और शरीर को ऊर्जा मिलती है। आयु के अनुसार सही और पौष्टिक भोजन बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। स्वास्थ्य बच्चे ही देश के उज्जवल भविष्य बनते हैं, इसलिए हर माता पिता और समाज का कर्तव्य है कि बच्चों को सही आहार और अच्छा वातावरण मिले। आइए आज इस विषय पे हम बात करते हैं विनीता जी से। विनीता जी नमस्कार।
5: नमस्कार
4: विनीता जी, बच्चों के लिए सही आहार का क्या महत्व है, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगी?
5: सही आहार ऐसे तो बच्चों के शरीर के विकास के लिए काफी जरूरी होता है। भोजन से बच्चों को ऊर्जा मिलती है और यही ऊर्जा उन्हें खेलने, पढ़ने या फिर सीखने में मदद करती है। यदि बच्चों को सही भोजन न मिले तो फिर उनका शरीर कमजोर हो सकता है और उनकी मानसिक विकास काफी प्रभावित हो सकती है। इससे एक संतुलित आहार जिसमें कि काफी, जिसके कि हम बैलेंस डाइट भी बोलते हैं, जिसमें ये प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, जिंक, पानी, मिनरल्स, ये सभी चीजें सही मात्रा में होनी चाहिए। ये सभी पोषक तत्व शरीर में अलग अलग कार्यों में मदद करते हैं। प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करता है। दूध, दाल, अंडा, पनीर, सोयाबीन, ये सब में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम विटामिन डी का काफी अच्छा सोर्स होता है और ये हड्डियों को मजबूत करता है और साथ ही साथ दांतों को भी मजबूत करता है। विटामिन शरीर में बीमारियों को आने नहीं देता है और उनसे बचाता है। आयरन शरीर में खून बढ़ाने में काम करता है। यदि बच्चों को समय पर पौष्टिक भोजन मिले तो वे अधिक सक्रिय रहते हैं और पढ़ाई में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मानसिक का विकास होता है।
4: जन्म से लेकर 6 महीने तक के बच्चे का आहार कैसा होना चाहिए?
5: ऐसे तो जन्म के बाद बच्चे के लिए सबसे पहला और सबसे अच्छा भोजन माँ का दूध होता है। डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि जन्म के 6 महीने तक बच्चों को केवल माँ का ही दूध देना चाहिए। माँ के दूध में सभी जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो कि बच्चों को बीमारियों से बचाते हैं और जैसे कि कोई भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। माँ का दूध आसानी से पच जाता है और इससे बच्चे की सही मात्रा में पोषण मिलता है। छोटे बच्चों का जो पेट होता है वह काफी नाजुक होता है, इसलिए उन्हें जो बाहर का दूध या फिर भारी भोजन उन लोगों को नहीं देना चाहिए। कई बार लोग छोटे बच्चों को शहद, पानी या गाय के दूध देने लगते हैं, लेकिन यह सही नहीं माना जाता है। फिर जैसे जैसे वो बच्चा 6 महीने से अधिक का होने लगता है, वैसे उसे दाल का पानी, खिचड़ी, दलिया या फसला हुआ केला, उबले हुए आलू, सब्जियां, सूप आदि, ये सब धीरे धीरे बच्चों को अलग अलग स्वाद और भोजन की आदत डलवानी चाहिए। इस उम्र में बच्चे तेजी से बढ़ते हैं इसलिए उन्हें अधिक पोषण की जरूरत होती है। यदि इस समय सही भोजन ना मिले तो बच्चा कमजोर हो सकता है और कई बच्चे में कुपोषण की समस्या इसी उम्र में शुरू होती है। पर जब बच्चे जो बड़े हो जाते हैं और वे जब स्कूल जाना शुरू करते हैं तो फिर उनमें अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। वे पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, निजी चीजें सीखते हैं और इसलिए उनके भोजन में सभी जरूरी पोषक तत्व होने चाहिए। सुबह का नाश्ता बहुत जरूरी होता है। जो बच्चे बिना नाश्ता किए स्कूल जाते हैं वे जल्दी थक जाते हैं और पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते हैं। बच्चों को सुबह दूध, फल, अंडा, पराठा, दलिया या पोहा जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ देने चाहिए।
4: जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर किशोरावस्था आती है, तो क्या उस समय भी फिर परिवर्तन करना पड़ता है बच्चों के डाइट में, उनके खान पान में?
5: जी बिल्कुल सही कहा आपने। किशोरावस्था जो होती है वे बच्चों के जीवन का काफी महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय शरीर तेजी से बढ़ता है और मानसिक बदलाव भी आते हैं। लड़की और लड़कियों दोनों को इस समय पौष्टिक भोजन की अधिक जरूरत होती है। इस उम्र में आयरन और कैल्शियम बहुत जरूरी होते हैं। लड़कियों में खून की कमी समस्या अधिक देखी जाती है, इसलिए उन्हें हरी सब्जियां, फल, दूध, आयरन ये सब से भरा हुआ ये सब भोजन लेना चाहिए। किशोर बच्चों को फास्ट फूड खाने की आदत जल्दी लग जाती है। कई बच्चे वजन कम करने के लिए खाना कम कर देते हैं जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। सही भोजन शरीर को मजबूत बनाता है और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। गलत आहार ऐसे तो काफी जरूरी होते हैं जीवन में, जिसमें कि वे सारे भोजन आते हैं जिसमें शरीर की जरूरतें सारी जरूरतें जिसमें कि सभी पोषक तत्व सही मात्रा में हो। केवल पेट भर लेना पर्याप्त नहीं होता है। भोजन ऐसा होना चाहिए जिससे कि शरीर को पूरी शक्ति मिले। संतुलित आहार में अनाज, दाल, दूध, फल, सब्जियां, पानी ये सब कुछ शामिल होना चाहिए। हर रंग की सब्जियां और फल शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। यदि भोजन में केवल एक ही चीज ज्यादा है और बाकी चीजों की कमी है तो शरीर कमजोर हो सकता है, इसलिए भोजन में विविधता होनी चाहिए।
4: तो हम ये कह सकते हैं कि आयु के अनुकूल उपयुक्त आहार बहुत महत्वपूर्ण है ना?
5: जी
4: विनीता जी, इस विषय पे आप क्या बताएंगे?
5: ऐसा तो देखा गया है कि ये आयु अनुकूल उपयुक्त आहार, इसका मतलब होता है कि बच्चे जो हैं उनकी उम्र के अनुसार सही भोजन दिया जाए। हर उम्र में ऐसे तो शरीर की जो जरूरतें होती हैं वे अलग अलग होती है। छोटे बच्चों को हल्का और आसानी से पचने वाला जो भोजन होता है वो सब देना पड़ता है, जिसमें कि दलिया आ जाता है या फिर, जबकि बड़े बच्चों को अधिक ऊर्जा और पोषण की जरूरत होती है। सही आहार बच्चों के शरीर को मजबूत बनाता है और मानसिक विकास में भी मदद करता है। इससे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और वे जल्दी बीमार नहीं पड़ते। यदि बच्चों को सही भोजन न मिले तो उनका विकास रुक सकता है, इसलिए आयु के अनुसार भोजन देना बहुत जरूरी है।
4: व्यायाम और सही आहार ये दोनों शारीरिक रूप से मजबूत बनने के लिए आवश्यक है, इस विषय पे क्या बात आ सकती है?
5: अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए सही भोजन और व्यायाम दोनों जरूरी है। यदि बच्चे पौष्टिक भोजन खाएं और नियमित खेल कूद करें तो उनका शरीर स्वस्थ रहता है। व्यायाम से शरीर मजबूत बनता है और मन प्रसन्न रहता है। आजकल बच्चे मोबाइल में ज्यादा समय बिताते हैं, इसलिए उन्हें खेल कूद ये सब के लिए समय नहीं मिलता है। और लोगों को, उनके माता पिता को खास करके बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि वे व्यायाम करें और खेल कूद जो कि आउटडोर एक्टिविटीज हो गई उनमें पार्टिसिपेट करें। बच्चे देश के भविष्य होते हैं। यदि बच्चे स्वस्थ होंगे तभी वे पढ़ लिख कर देश की प्रगति में योगदान देंगे। स्वस्थ बच्चे ही मजबूत समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं, इसलिए बच्चों के स्वास्थ्य और भोजन पर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। फल और सब्जियां बच्चों के शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। इनमें विटामिन, मिनरल, फाइबर ये सब पाए जाते हैं जो कि शरीर को स्वस्थ रखते हैं। हरी सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, लौकी शरीर में खून बढ़ाने में मदद करती है। गाजर जिसमें कि विटामिन ए काफी ज्यादा होता है वो आंखों के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। फलों में प्राकृतिक मिठास होती है जो बच्चों को ऊर्जा देती है। केला, सेब, संतरा, पपीता या फिर ये सब जितने भी फ्रूट्स होते हैं ये सब बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। रोज फल खाने

0: शरीर को रखने के लिए जरूरी होता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, पानी हमारे जीवन के लिए ऐसे तो काफी जरूरी होता है। बच्चों के शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा होनी काफी जरूरी है। पानी शरीर को ठंडा रखता है और शरीर से गंदगी बाहर निकालता है। यदि बच्चे कम पानी पीते हैं तो उन्हें कमजोरी, थकान और पेट की समस्या हो सकती है। इसलिए बच्चों को साफ और उबला हुआ पानी पीने की आदत डालनी चाहिए। गर्मी में के मौसम में बच्चों को अधिक पानी पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक की जगह नींबू पानी या फिर नारियल पानी, ये सब घर पे बना हुआ शरबत, ये सब ज्यादा लाभदायक होता है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। विनीता जी, आपने संतुलित आहार के विषय में इतनी अच्छी बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी धन्यवाद।
2: हाँ तो सुनोया बहिन मन, एक हमारे मन जानकारी कर ली कि आयु अनुकूल उपयुक्त आहार बच्चों के स्वास्थ्य का आधार, और उकर बारे में हमरे के बताते रहे विनीता शुक्ला और बातचीत कर रहे हैं हमरे कर सुमन बहिन। तो चलो और एक और नागपुरी लोकगीत हमरे मन सुन लेविला, रुना देवी और संगी मन कर गावल।

0: ई रहे नागपुरी लोकगीत रूणा देवी और संगी मनकर गावल।
1: तो चलो अब हमरे मन जानकारी करब कि जो गर्मी कर मौसम है उकर में छोट छुआ मन कर खान पान के हमरे मन के कैसे ध्यान देवे के चाहिए। देखो नी गर्मी में जो है छुआ मन कर जो मुख्य उद्देश्य है खान पान कर वो मन के डिहाइड्रेशन यानी कि पानी कर कमी और पेट कर समस्या से बचाई के उमन कर। देखो जो खाना है उकर में हमरे मन के तरल पदार्थ कर मात्रा जरूर बढ़ाई के चाहिए और मौसमी फल और सब्जी के हमरे मन के जरूर शामिल करे के चाहिए।
0: सही कहली वंदा बहन, गर्मी कर मौसम में छुआ मन के स्वस्थ और खास करके एकदम ऊर्जावान रहे जेकर से उमन है ऐसा डाइट के हमरे के अपन में शामिल करे के चाहिए और हाइड्रेशन और जो पेय पदार्थ मन है उकर में इन हमरे जैसे के कहबे कर ली कि नारियल कर पानी भेलक, नींबू पानी है, छाछ है, चीनी से जो भरल बाजार में जूस मन है से के ना दे
1: एकदम
0: अपन घर में
1: डब्बा बंद जूस हुवेला
0: से का प्रयोग मत करू। छुआ मन ले घर में खुद से फ्रेश जूस बना लू और उकर सेवन करे ले बच्चा मन के देऊ तो उकर में चीनी कर मात्रा के हमरे अपन हिसाब से राख सके।
1: चीनी नहीं देले भी चली
0: हाँ काले की उकर जे अपन जे प्राकृतिक रूप से उकर मिठास है से है हमरे लेकिन बेहतर रहे।
1: देखो स्मूदी जे होवेला से तो बहुत बढ़िया से घर में बन जाला।

0: और देखो एखन तो बहुत बढ़िया बढ़िया फल मन मिलत है, जैसे कि तरबूज होलक, खरबूजा, संतरा, पपीता, जो पानी से भरल फल मन है,
1: मौसमी फल है, हाँ,
0: सेमन के जरूर छुआ मन के देवे के चाहिए, जेकर से कि मन के पानी कर कमी नहीं होगी। और देखो दही जो होवेला से पेट के ठंडा रखेला और पाचन कर क्रिया के हम मजबूत रखेला, सेले हमरे मन के अपन छुआ के सादा दही लस्सी या खीरा कर जो रायता होवेला से हाँ, मन दे सकेला।
1: मट्ठा के रूप में भी जरूर प्रयोग करे के चाहिए, बहुत ज्यादा फायदेमंद है मट्ठा भी, है नहीं सेहत ले।
0: तो बहन मन, तो अगर घर में छोट छुआ है तो रौरे मन ये सब खाना दे के उमन के बढ़िया से राख सकेला गर्म कर मौसम में।
1: सही कहली।
0: तो सुमन बहन, आप तो हमरे कर जाय कर बेरा होते, तो अगला सोमवार के बहन मन कर संगे हमरे मन फिर से गोठियाब, तब तक खातिर देव विदा,
1: जोहार।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शब्द
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
4: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
3: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
4: श्रोताओं, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
3: जी।
4: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
3: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
4: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
3: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
4: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
3: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
4: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
3: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
4: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
3: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
4: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
3: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी, आपको साधुवाद।
4: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
3: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है
4: जी। और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं।
3: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं
4: जी।
3: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
4: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
3: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
4: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
3: तो साथियों इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
4: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न, हमारा प्रश्न था, बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं।
3: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं लेकिन हम कहेंगे, विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
4: जी विमलेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओ अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
3: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है।
4: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
3: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
0: Hello, children. How are you?
5: We are fine, sir.
6: I am fine.
7: I am good, sir.
0: Fine. Good. Okay, so tell me, what do you like most?
6: I like playing, sir.
8: I like painting, sir.
0: Very good. Anyone else?
9: Sir, I like singing.
10: I like playing with my pet.
0: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
5: Yes, sir.
8: We like.
0: Lovely butterflies?
5: Yes, sir.
0: And lovely colorful chirping birds?
5: Yes, sir. We like it.
0: That's very nice, children.
8: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
0: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
5: Yes, sir.
0: The rivers, the mountains, and the green trees.
5: Yes, sir.
0: Okay, so let me tell you the story of a sweet child like you.
5: Like us?
0: Would you like to listen?
5: Yes, sir.
8: We love to listen the story.
0: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
5: Okay, sir.
0: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me. Okay?
5: Okay, sir. We love to recite it.
0: As I lie on my back, looking up at the sky, I see a big white bear. Looking down at me. As I lie on my back.
5: Looking up at the sky.
0: I see a ship sailing. On a white sea.
5: On a white sea.
0: As I lie on my back.
5: As I lie on my back.
0: Looking up at the sky.
5: Looking up at the sky.
0: I see an elephant.
5: I see an elephant.
0: Waving its trunk at me.

0: कपड़े आदिवासी गहने पहने।
1: तुलसी गौडा 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका
2: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती।
3: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौडा।
0: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौडा
4: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है।
5: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
6: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण।
5: यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। देश भर में प्रसन्नता की लहर।
7: आज नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों में करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं, और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
3: अच्छा,
2: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ
3: अरे ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
2: देखो पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
3: बिल्कुल होता है।
2: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से पढ़ते हैं।
3: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
2: है ना
3: जी।
2: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
3: तुलसी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
2: हाँ बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ देश बचाओ।
0: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
2: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
0: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
1: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।

0: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है, वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे। तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
1: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
0: अच्छा।
1: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
0: अच्छा।
1: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
0: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
1: बिल्कुल सही सुना है आपने। मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
0: अच्छा।
1: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
1: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हो तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं। समझे
0: जी? ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
1: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है। ठीक है ना?
0: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत धन्यवाद।
0: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
2: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा।
4: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
5: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
6: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
5: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
6: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
7: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
8: प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा आदेश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राजुल का सादर नमस्कार। और आज का सुरीला सफर है बन रहा कुछ अलग ही ढंग से, क्योंकि आपके संदेशों में बात है आज की और गुजरे हुए कल की। तो अब आपको बता देते हैं आज का टेक्स्ट। जैसे हमारे कुछ श्रोता जो कि फेसबुक पेज पर, जहां पर गीत भी मिलते हैं और मीत भी मिलते हैं, वहां पर उन्होंने ये टेक्स्ट देख ली होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए हम बता देते हैं आज की ये इबारत। कई बार कुछ ऐसा होता है कि गुजरा हुआ वक्त चुपके से दबे पांव मन में चला आता है और किसी जादूगर की तरह साकार कर देता है वो बीता हुआ पल। जब कोई मिला या कोई बिछड़ गया, कुछ टूट गया, कुछ छोड़ दिया या कुछ पा लिया, वो पल जहां मन के बावरे पंछी संग रोके नहीं रोकी उमंग, या जहां किनारे पर डूब गई दिल की कश्ती, यादों की उन गलियों में भटकता ही रहे मन, लेकिन सितारे मेहरबान हो तो पुकार लेता है वर्तमान, ओ मितवा आ जा रे। इस गली में कहीं खो सकता है आपका आज, जल्दी से आगे बढ़कर थाम लीजिए अपने आज का हाथ, क्योंकि वक्त कभी ठहरता नहीं। तो चलिए उसी राह पर जिस पर खड़ा है आज, अभी यहीं। तो ये है आज की इबारत, और इस इबारत को लेकर आपने चुन लिए हैं गीत। भाई गीतों की इस लिस्ट में बहुत लंबी सी लिस्ट है, और हमारे कुछ साथियों ने बताया है बहुत सारे गीतों के बारे में। एक श्रोता ने बताया है, कई बार यूं भी देखा है, गुजरा हुआ जमाना चुपके से दिल दे दे, चला जाता हूं किसी की धुन में, जादूगर सैया, इस तरह के उन्होंने करीब 15 गीत छांटे हैं। वाह क्या बात है, गीतों के मामले में कितने संपन्न हैं हमारे श्रोताओं की याददाश्त। वाकई इस बात का हमें कई बार ये भी लगता है कि कितने ज़्यादा गीतों से जुड़े हुए लगाव है आप सभी को। एक श्रोता का जो संदेश है वो कह रहा है कि उसमें कुछ यूं कहा गया है कि आज की भारत ने मन के पक्षी को अतीत में ले गया। सही कहा गया है, आप भूगोल बदल सकते हैं, इतिहास नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का एक अतीत होता है जो जिंदगी के हर मोड़ पर दस्तक देता है। यह अतीत सुनहरा या कड़वा हो सकता है, मगर वे लम्हे जीवन भर पीछा नहीं छोड़ते। बेहतर है बीते अतीत के बुनियाद पर जीवन को बुलंद कर वर्तमान में जीना ही सार्थकता है, क्योंकि वर्तमान ही हकीकत है। समय की रफ्तार कभी धीमी नहीं होती, लेकिन उसकी गहराई में छिपे यादों के मोती अक्सर हमारे दिल के आंगन में बिखर जाते हैं। कभी कभी हवा का एक झोंका, किसी पुराने पन्ने की खुशबू, या रास्ते में मिला कोई जाना पहचाना चेहरा हमें गुजरे जमाने की गलियों में वापस ले जाता है। वो लम्हे जो पीछे छूट गए थे, अचानक सामने आकर दिल को एक अनूठे सुकून और भीगी हुई उदासी से भर देते हैं। वाह क्या खूबसूरत बात कही है। तो बताइए कि आज कई बार वो याद जो ताजा हो जाती है किसी ऐसे ही पुराने पन्ने की खुशबू के साथ, या हवा के किसी झोंके के साथ, या किसी जाने पहचाने चेहरे के साथ, कभी बहुत साल पहले गुजरी थी जो बात, वो बात ताजा हो जाती है, तो उस बात के बारे में हमें बताएं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पुरानी यादों या बीते हुए वक्त की खुशनुमा या कठिन परिस्थितियों के पल जब भी स्मृति पटल पर पूर्व दीप्ति बनाने लगते हैं तो मन में एक भावुक संवेदना जागती है। ऐसे में मन का पंछी पुरानी यादों को एक नई उमंग और उम्मीद के साथ फिर से उड़ान भरने लगता है, और एक सकारात्मक सोच मन में आती है कि फिर एक बार कोई प्यार से पुकार ले। अपनी सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल गद्यमय इबारत की इबादत की इबारत से निकले शब्दों में कई बार कुछ ऐसा गुजरा वक्त चुपके से दबे पांव मन आपका आज चला आता किसी जादूगर साकार बीता पल मिला जल्दी गली मितवा आगे बढ़ थाम लीजिए, जैसे संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण परक शब्दों की ही भरमार नहीं अपितु संबोधन परक शब्द भी हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि गुजरा हुआ जमाना बीता हुआ वक्त और पुरानी यादें किसी जादूगर की तरह चुपके चुपके हमारे वर्तमान में लौट आती हैं। समय और यादों का ये सफर
इतना गहरा होता है कि कई बार कुछ खट्टी मीठी यादें, कुछ पुरानी बातें और कुछ मधुर स्मृतियों के गीत अचानक दिल में उतर जाते हैं। भले ही आप दूर हो, पर वो पल तो अचानक ही सजीव होकर आपके साथ हो जाता है। बहुत सुंदर बात कही आपने, और उन्हीं स्मृतियों के बारे में हम पूछ रहे हैं, उन्हीं खट्टी मीठी यादों के बारे में आप पूछ रहे हैं हम आज, जो आज से 20-25 साल पहले या 30 साल पहले या आज से 10 साल पहले गुजरी हो और आपको आज भी याद करा देती हूँ। ये गाना सुनिए और बताइए कि ये किस कलाकार पर फिल्माया गया है।

आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी को मिला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा का बताया प्रतीक, कहा देशवासियों के लिए गर्व का विषय। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी। रांची में प्रगतिशील किसानों को किया सम्मानित। खूंटी में पुल निर्माण साइट पर फायरिंग और लूट की घटना। मजदूर के साहस से बाइक छोड़ अपराधी फरार, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। गुमला लोहरदगा समेत कई जिलों में अगले कुछ घंटों में मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा की संभावना। रांची समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन द्वारा रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया जाना प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व और गौरव का विषय है। यह सम्मान न केवल प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक स्तर पर उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व का प्रतीक है, बल्कि विश्व मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और सशक्त उपस्थिति को भी दर्शाता है। केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि प्रधानमंत्री को प्राप्त यह 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान देशवासियों के लिए प्रेरणादायी है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने शहरवासियों की सुविधा के लिए रांची के 5 प्रमुख चौराहों पर वाटरप्रूफ ट्रैफिक शेड लगाने की योजना बनाई है। पहले चरण में अरगोड़ा चौक, सरना चौक, सहजानंद चौक, लालपुर चौक और करमतोली चौक पर आधुनिक डिजाइन के मजबूत स्टील फ्रेम और वाटरप्रूफ सामग्री से बने शेड लगाए जाएंगे। प्रशासनिक स्वीकृति मिलते ही इस योजना पर काम शुरू होगा और सफलता के बाद इसे शहर के अन्य व्यस्त चौराहों पर भी विस्तार किया जाएगा। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची के बेड़ों में किसान सम्मान समारोह में कहा कि किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और ट्रैक्टर, कृषि यंत्र, स्प्रेयर समेत अन्य उपकरण अनुदान पर दिए जा रहे हैं। मौके पर मंत्री ने मत्स्य पालन और केस फार्मिंग को बढ़ावा देने के साथ साथ ग्रामीण बाजारों को सशक्त बनाने और कोल्ड स्टोरेज निर्माण की बात भी कही। कम वर्षा की संभावना को देखते हुए उन्होंने किसानों से धान के साथ साथ मोटे अनाज और कम पानी वाली फसलों की खेती पर ध्यान देने की अपील की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 27 अप्रैल 2026 को मंजूर की गई झारखंड अनाधिकृत रूप से निर्मित भवन नियमितीकरण नियम 2026 को टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने आम जनता

0: के लिए काफी लाभकारी बताया है। धनबाद में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि वर्षों से लोग भवन नियमितीकरण की समस्या से परेशान थे, जिसे राज्य सरकार ने दूर करने का प्रयास किया है।
1: जो भवन बन के तैयार था क्षेत्र में, जिसका किसी तरह का उपयोग या नहीं कोई कानून नीति बना, वैसे लोगों को यह बताया गया है कि कम से कम वैसे लोगों को 2 महीने के अंदर अप्लाई अगर करेंगे तो उसको स्थायीकरण का भी मान्यता उसको दिया जाएगा और उसका जो सरकारी राशि है उसको दिया जाएगा, उसको वैध माना जाएगा।
0: रांची जिला प्रशासन ने संवेदनशील कार्रवाई करते हुए 85 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक राधेश्याम नाथ को 24 घंटे के भीतर सर्वजन पेंशन योजना और आयुष्मान कार्ड का लाभ उपलब्ध कराया। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर समाहरणालय की टीम ने बुजुर्ग के घर जाकर पेंशन स्वीकृति प्रमाण पत्र और आयुष्मान कार्ड सौंपा, जिससे उन्हें स्वास्थ्य और आर्थिक सहायता तुरंत मिल सके। लाभ मिलने पर राधेश्याम नाथ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जिला प्रशासन का आभार जताया।
2: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सौजन्य से मुझे 12 घंटे के अंदर कार्ड आयुष्मान कार्ड तथा अन्य कार्ड पेंशन प्राप्त हुआ। हम उनको तहे दिल से अपना धन्यवाद देते हैं।
0: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया में चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा है कि यह दावा फर्जी है। भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन पुल साइट पर फायरिंग और लूट की घटना सामने आई है। पुलिस ने मौके से अपराधियों द्वारा छोड़ी गई बाइक बरामद की है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जानकारी के अनुसार एक बाइक से पहुंचे 3 अपराधियों ने मजदूरों के साथ मारपीट कर करीब 1 दर्जन मोबाइल फोन लूट लिए और दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग की। इस बीच मजदूरों का विरोध देख बदमाश घबराकर अपनी बाइक मौके पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस का दावा है कि मामले में शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चतरा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाते हुए गिद्धौर थाना क्षेत्र से 1 अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। SP अनिमेश नथानी ने बताया कि उसके पास से करीब 4 किलो अफीम बरामद हुई।
3: 57 में एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा और उसके पास से 2 थैला में सेमी लिक्विड पदार्थ अफीम जैसा बरामद हुआ, जिसकी हम लोगों द्वारा टेस्टिंग की गई तो पाया गया कि 3 किलो 972 ग्राम अफीम उसमें बरामद हुआ है। साथ ही 2 किलो गुड़ भी अलग से थैली में बरामद हुआ है, जिसको जब्त किया गया।
0: साहिबगंज जिले में 300 चोरी या गुम मोबाइल को उनके मालिकों को सौंपा गया। सिद्धो कानो सभागार में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को पौधा देकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने कहा कि मोबाइल चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के साथ साथ इस तरह की घटनाओं में शामिल युवाओं को रोजगार से जोड़ने की भी पहल की जाएगी।
4: पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने समेकित एक कार्य योजना बना के उस पर काम कर रहे हैं। एक पक्ष है उसको कि ऐसे सब लोग इस सामने शामिल है, उनको रोजगार के अन्य अवसरों मुख्य धारा से जोड़ा जाए ताकि वो इस तरह के कार्यों में सम्मिलित ना हो। दूसरा पहलू है कि जो लोग इसके बाद भी जो हम लोग मौका दे रहे हैं उसके बाद भी इस कार्य में लिप्त है, इस गलत कार्य में, उसको पकड़ा जाए, परेश किया जाए। इसी अभियान के तहत हम लोगों ने 300 मोबाइल रिकवर किया है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 0.5% की गिरावट दर्ज की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 321 अंक गिरकर 74,917, जबकि निफ्टी 113 अंक लुढ़ककर 23,530 पर था। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की

सामने होंगे। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री मोदी को मिला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा का बताया प्रतीक, कहा देशवासियों के लिए गर्व का विषय। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी। रांची में प्रगतिशील किसानों को किया सम्मानित। खूंटी में पुल निर्माण साइट पर फायरिंग और लूट की घटना। मजदूरों के साहस से बाइक छोड़ अपराधी फरार, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। गुमला लोहरदगा समेत कई जिलों में अगले कुछ घंटों में मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा की संभावना। रांची समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद होंगे आमने सामने। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

सही जवाब के साथ आपके संदेश आ गए। संजीव कुमार और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये गाना फिल्म मन मंदिर में। गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। और भाई संदेशों की तो क्या ही कहें। नौजवानी के दिन जब बचपन विदा ले रहा था और जवानी दस्तक दे रही थी, उस समय ट्यूशन में पढ़ने वाली एक सहपाठिनी का मेरी गलतियों पर मुस्कुराना याद है। वो निश्चल हंसी, उफ क्या बात है। तो भाई देखिए ना, किसी की हंसी, किसी की बात या किसी का टोकना भी याद रह जाता है। एक श्रोता कह रहे हैं कि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, जो बीत गया सो रीत गया, जो बच रहा वो यही पल है जिसका इस्तेमाल हम सब VBS के साथ कर रहे हैं। जी हाँ, विविध भारती के साथ आपका ये पल कैसा गुजर रहा है इस बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने जो भेजे हैं हमें गानों के, बताइए कि ये पल ये

0: जो गाने हैं ये आपके लिस्ट से मैच कर रहे हैं या नहीं। एक श्रोता ने कई बार यूं भी देखा है, गुजरा हुआ जमाना, चुपके चुपके चल रही पुरवैया और जादूगर जैसे बहुत सारे गानों का अपना लिस्ट बना के भेजी है। एक श्रोता ने गुजरा हुआ जमाना वापस तो नहीं आ सकता ये कहते हुए अपना संदेश आगे लिखते हैं कि लेकिन हम कभी एकांत में बैठे पुरानी यादों में खो जाते हैं, तब उन बीते हुए लम्हों में खुद को महसूस करते पहुंच जाते हैं। मसूरी के कैंप्टी फॉल में नहाने, जहां यारों की टीम 44 साल पहले कैमरे लिए तस्वीरें खींच रहे थे। लौटते हरिद्वार में गंगा स्नान का उद्दृश्य सामने आ जाता है, जब मना करने पर तेज धार में बहने लगे और 2-3 साथियों ने तत्परता दिखाते हमें गहरे पानी में जाने से बचा लिया। उससे भी 10 साल पहले वाल्मीकि नगर रिजॉर्ट में नेपाल और बिहार की सीमा में अभ्यारण्य में घूमने गए, जहां धुंधलाती शाम में एक जहरीले सांप से भेंट हुई और सभी साथियों के साथ कैसे बाल बाल बचे। ऐसे तमाम वो पल जो एक एडवेंचर थे भी याद आए। और परिवार के साथ वैष्णो देवी यात्रा, फिर दिल्ली में 2 दिन ऐतिहासिक इमारतों में घूमना, वो लाल किले में लिए गई कई तस्वीरें अच्छे दिनों में पहुंचा देती हैं। बहुत सुंदर यादें हैं आपने संजोई। यादें संजोने के लिए हम कई बार तस्वीरें भी खींचते हैं। आप बताइए कि क्या कभी तस्वीरों का वो एल्बम आप पलटते हैं जो आपने आज से 20-25 साल पहले खींचा था। और हाँ, उस वक्त तो तस्वीरें भी दूसरी तरह से ली जाती थी। अब जो गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे सुनिए और बताइए कि वो आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं, और साथ ही बताइए संगीतकार का नाम।
1: ए,
2: अरे
1: चुपके से दिल दे दे,
2: नहीं ते
1: नहीं ते

राजेश खन्ना और माला सिन्हा पर फिल्माया गया मर्यादा फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आपने सुना। बोल आनंद बख्शी के थे और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। सही जवाब के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने बताया कि मैसूर का किला देखा, राजा का पुराना राजमहल है। विश्व संग्रहालय दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए एक श्रोता बता रहे हैं कि 1989 में मुंबई के संग्रहालय पुरानी वस्तुओं, यादगार चीजें, धरोहर, विरासत, ये म्यूजियम उन्होंने 2 बार देखा है। म्यूजियम में सबसे ज्यादा कौन सी चीज आकर्षित करती है, या जब भी देखा किस चीज को के सामने आप बड़ी, किस जो शोकेस में लगी रहती हैं तमाम चीजें, उनमें से किस शोकेस के सामने आप काफी देर तक खड़े रहे, अगर याद हो तो जरूर बताएं। और हाँ, तस्वीरों के एल्बम की बात भी तो रह गई, कौन सा एल्बम आप अभी तक बहुत सहेज कर रखते हैं और जब तक उसे पलट लेते हैं मौका मिलते ही। श्रोताओं के संदेश कह रहे हैं कि मेमोरीज आर लाइक फोटोज, यू कैन लुक बैक बट यू कैन नेवर गो बैक। बहुत सुंदर बात कही आपने, मतलब यादें तस्वीर की तरह होती हैं, आप उसे पलट कर देख सकते हैं लेकिन उसमें वापस नहीं जा सकते। आज के सुरीले सफर की बातें भी कुछ ऐसे बीते हुए लम्हों से जुड़ी लग रही हैं। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, वापस आती हैं तो सिर्फ उससे जुड़ी कुछ खट्टी मीठी यादें और बातें, किसी से कुछ मुलाकातें जिसे याद कर कभी हमारे मन का बावरा पंछी भी बार बार डूलने लगता है। बीते हुए पल की कसक याद करते हुए कभी उदासी भी छा जाती है, इसलिए भूतकाल को याद कर उसमें से कुछ बोध पाठ लेते हुए वर्तमान को जी भर के जी लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें हंसी खुशी जिंदगी बिता दो। वक्त का पहिया न कभी रुकता है न रुकेगा, इसलिए आप भी दोपहर ठीक 1 बजे VBS के सुरीला सफर में जुड़ जाइए। क्या बात है। और आगे लिखते हैं कि आप सभी का जीवन सफर सुरीला और हंसी खुशी से भरा रहे, यही कामना करते हुए स्वागत है। बहुत बहुत सुंदर बात कही आपने। वाकई वर्तमान में जीना ही समझदारी है, और वर्तमान में जीते हुए ये गीत आपको किन की याद दिला रहा है हमें जल्दी से बताइए। और हाँ, संग्रहालय की बात और अपने एल्बम की बात भी जरूर बताइएगा।

इस गीत का जवाब हम जरूर बताएंगे, लेकिन एक सवाल पहले पूछ लेते हैं, क्या कभी वो छूटा हुआ प्यार भी याद आता है आपको? उसके बारे में अगर बताइए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो सवाल था हमारा कि इस गाने को सुनकर आपको किन की याद आती है, तो हमारे साथियों ने बताया सरस्वती चंद्र नूतन, फिल्म का नाम और अभिनेत्री का नाम इन्होंने बताया है। किसी श्रोता ने मोनीश जी का नाम भी, यानी मोनीश बहल शायद इनका मतलब है, उनका नाम लिखा है। एक श्रोता लिखती हैं कि मेरा जिला अहमदनगर स्थित कैवलरी टैंक संग्रहालय एशिया में अपनी तरह का एकमात्र और सबसे बड़ा सैन्य संग्रहालय है। फरवरी 1994 में स्थापित इस संग्रहालय में लगभग 50 दुर्लभ और ऐतिहासिक टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और तोपों का अद्भुत संग्रह है, जो भारतीय बख्तरबंद कोर के गौरवशाली इतिहास को दर्शाते हैं। बहुत सुंदर जानकारी साझा की आपने। तस्वीरों के बारे में हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जितने भी पुराने फोटो हैं सभी को सहेज कर रखती हूं, अपने भाई बहनों के साथ वाले फोटो और अपने बच्चों का बचपन का फोटो, परिवार का फोटो सभी। जब भी फुर्सत में रहती हूं जरूर पलट कर देखती हूं और कुछ उसमें से फोटो निकालकर उनसे संबंधित लोगों को शेयर भी करती हूं। वाह, ये तो पुरानी यादें ताजा करने का बड़ा ही सुंदर तरीका है। एक और श्रोता बता रहे हैं कि तस्वीरें खींचने और खिंचवाने का जबरदस्त शौक है और उनका संग्रह करना भी, न सिर्फ एल्बम में बल्कि मोबाइल, लैपटॉप सबके मेमोरी में भी संभाल कर रखती हूं और गाहे बगाहे उन्हें पलट कर देखने का भी शौक है। परिवार में सबके शादी ब्याह की तस्वीरें अपने पास रखना अच्छा लगता है वाकई, और जब देखते हैं ना वो तस्वीरें तो फिर याद आ जाती हैं वो सभी बातें और वो अच्छा हल्का फुल्का वक्त जो गुजरा था उस वक्त। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मेरे ताऊजी की लड़की जो मेरी बहन थी, सन 1971 में उसकी शादी में हमारे सारे परिवार का एक साथ खींचा गया ब्लैक एंड व्हाइट बड़ा फोटो आज भी मेरे पास सुरक्षित है। उस समय मेरी उम्र 1 साल की थी और मैं अपने पापा की गोद में नजर आ रहा हूँ। उस फोटो की हमने तस्वीर में बनाकर रखा है, मतलब शायद फ्रेम कराकर रखा है आपने। वाकई ये तस्वीरें तो अनमोल होती हैं। एक और श्रोता ने साझा की है एक तस्वीर की बात, मेरी बेटी की तस्वीर जिसका एल्बम बार बार देखता हूँ, कितनी मासूम मुस्कुराती, आज वो 36 साल की हो गई मगर मुझे बच्ची ही लगती है। सच, वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। संदेशों की बात करें तो हमारे श्रोता बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ साझा करते हैं। एक साथ ही लिखते हैं कि आज की भारत यादों की एक ऐसे जादुई आईने जैसी है जिसमें हमारा बीता हुआ कल आज भी खुलकर सांस लेता हुआ महसूस होता है। सचमुच इंसान का मन भी एक अजीब मुसाफिर है जो वर्तमान की सड़क पर चलते हुए भी अक्सर अतीत की पगडंडियों पर मुड़ जाता है। कहां क्या छूटा और क्या मिला, इसी उलझन में भटकता रहता है। यादों के समंदर में डूबना तो आसान है पर जिंदगी किनारे पर ही जी जाती है। गुजरे वक्त की जंजीरें कितनी भी रेशमी क्यों ना हो, उन्हें तोड़कर आज के वर्तमान पल का हाथ थामना ही असल मायने में जीना है, क्योंकि जो ठहर गया वो कल था, आज तो चलते रहने का नाम है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज इंसान के बीते समय वक्त पे चर्चा होने की संभावना है। कहावत है, गुजरा वक्त वापस नहीं आता, जिसका वर्तमान सही है भविष्य भी सही होगा। वक्त को पहचानो, अहमदाबाद की घटना ने बहुत कुछ सिखा दिया, पता नहीं पल में क्या हो जाए। वाकई बहुत छोटी सी जिंदगी है और इस जिंदगी को हंसी खुशी से ही बिताना चाहिए सबसे मिलजुल कर रहते हुए। अब इस गाने को सुनिए और फिल्म का नाम बताइए।

अमरदीप फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल और सी रामचंद्र का संगीत याद किया है हमारे कुछ श्रोताओं ने। छोड़ दे सारी दुनिया सरस्वती चंद्र फिल्म के गाने की बात की है। नूतन और मनीष अभिनीत फिल्म सरस्वती चंद्र के इस गीत का फिल्मांकन जूनागढ़ गुजरात के गिरनार पर्वत की सीढ़ियों पर हुआ था। उन दिनों मैं और मेरा मित्र जो जूनागढ़ के नजदीक रहता था उसके साथ शूटिंग देखने वहां गया था, लेकिन हमारे वहां पहुंचने से पहले फिल्म यूनिट वहां से विदा हो गया था। हमारी बात रह गई हमारे मन में, कुछ कह ना सके उलझन में। क्या बात है। लेकिन कई बार ये प्रयास ही बहुत अपने आप में ऊर्जा भर देता है, उत्साह भर देता है। हमारे एक श्रोता ने ओडिशा कटक नगर के नंदन कानन प्राणी संग्रहालय के बारे में बताया है और कोणार्क सूर्य मंदिर के पास एक संग्रहालय बनाया गया है साइंस, जो सभी ग्रह और सूर्य के ऊपर बहुत सारे तथ्य दिखाता है। प्लैनेटोरियम की बात कर रहे हैं आप। और एक श्रोता कह रहे हैं कि उम्र के इस मोड़ पर पहले प्यार को सार्वजनिक करना जोखिम भरा काम है, क्योंकि मेरी पत्नी सुरीला सफर में भी साथ साथ सुनती है। क्या बात है। वाकई कई बार ऐसे जोखिम से तो बचना ही चाहिए। और बात हो रही है पुराने इश्क की, तो बड़ी सुंदर सी कविता साझा की है हमारे एक साथी ने। उन्होंने लिखी है, कभी कभी पुराना इश्क बरसों बाद भी दिल के किसी कोने में धीमी आंच सा जलता रहता है। ना वो आवाज देता है, ना कोई शिकायत करता है, बस अचानक किसी बारिश, किसी गीत या किसी खामोश शाम में याद बनकर उतर आता है। बहुत धीरे धीरे पढ़ने वाली कविता है, लेकिन समय की कमी के चलते मैं जल्दी पढ़ रही हूँ। बड़ा ही सुंदर शब्द है। वो इश्क भी अजीब था, न पूरा मिला न कभी पूरा तरह बिछड़ा, बस जिंदगी की किताब में एक मुड़ा हुआ पन्ना बनकर रह गया। आज भी जब तन्हाई में धीरे से दरवाजा खटखटाती है, उसकी हंसी उसकी बातें मन में चुपके से चली आती हैं। मगर अब न कोई गिला है, न किसी के लौट आने की आस, क्योंकि कुछ मोहब्बतें मुकम्मल होकर नहीं याद बनकर ही खूबसूरत लगती हैं। बड़ी सुंदर बात कही आपने। और ऐसी यादों की बात करते हुए अब इस गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। सुनिए और बताइए फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम।

बिल्कुल सही जवाब भेजा हमारे साथियों ने। हवस फिल्म का ये गाना संगीत उषा खन्ना का। और एक श्रोता ने बताया है कि बैंगलोर में संगीत म्यूजियम देखा है, बेहतरीन है, रिकॉर्ड रूम भी था, वहाँ गाना रिकॉर्ड किया था। क्या बात है, आपने तो बड़ी ही सुंदर स्मृति संजोली। एक और श्रोता कह रहे हैं कि आप कई बार ऐसा सवाल पूछ लेती हैं जिसका जवाब देना चाह कर भी जवाब नहीं दे सकते, जो जवाब देना खतरनाक हो जाता है। ओहो, ठीक है, चलिए आपने छुपते छुपाते बात

कही दी। संदेश भेजा है हमारे एक श्रोता ने, कह रहे हैं कि वक्त एक ऐसे परिंदे की तरह है जो कभी एक शाख पर दोबारा नहीं बैठता। जो लम्हा गुजर गया वो इतिहास बन जाता है। वक्त की उड़ान वाकई एक ऐसी हकीकत है जिसे ना तो रोका जा सकता है और ना ही बांधा जा सकता है। ये एक ऐसी खामोश रफ्तार है जो बिना किसी शोर के सब कुछ बदल देती है। बचपन की मासूमियत से जवानी के जोश और फिर बुढ़ापे के तजुर्बे तक ये सफर इसी उड़ान की बदौलत तय होता है। इन्होंने एक शेर मुनीर साहब का साझा किया है हमारे साथ। वक्त की धूप हो या तेज हवाएं कौन, वक्त की धूप हो या तेज हवाएं मुनीर, कौन रुका है यहाँ, किसकी उड़ान बाकी है। एक श्रोता ने बताया कि पल एक ऐसी चैतन्य की अद्भुत व्यवस्था है जो ज्यादा देर किसी से नहीं जुड़ी रहती है। सुख आनंद गानों के साथ जुड़ता जरूर है लेकिन गानों से अलग भिन्न रहता है, इसलिए चैतन्य को हर गाने में आनंद मिलता है। पल पल हर पल विविध भारती के कार्यक्रम से सुखी रहता है और फिर सुख मरता नहीं है। क्या बात कही है। सुखी आनंद चैतन्य का स्वभाव है, इसलिए 24/7 पल हर पल व्यक्त रहती है। परंतु हम मानव को संसार की वस्तुओं में खुशी सुख है ऐसा अभी प्राय मान्यता मात्र है। बड़ी गहरी बात कही आपने। अब जरा इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये गाना किस जगह पर फिल्माया गया है,

वाकई दुनिया फानी है और कुछ ही पलों का साथ रहता है सबका। हमारा आपका साथ भी अब शायद कुछ ही पलों का है और अगले गीत का शायद हम आपको थोड़ा सा हिस्सा ही सुनवा सके। जवाब बिल्कुल सही भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया। द बर्निंग ट्रेन फिल्म में गाना ट्रेन में फिल्माया गया जितेंद्र नीतू सिंह आशा सचदेव पर, बिल्कुल सही जवाब। और एक याद ताज़ा की है प्रेम की। 8वीं कक्षा में पढ़ते अधकचरे प्रेम की याद बहुत बात समझ पाए। मैं कक्षा में आगे बैठता तो एक 14 साल की लड़की बार बार हमसे मदद मांगती, ये सवाल बताओ, ये ट्रांसलेशन बताओ। मेरी आधी कुर्सी पर बैठ जाती, मैं उसकी कॉपी पर जवाब लिखकर डांट देता था। बाद में एक एक्सीडेंट में घायल वो बहुत दिनों की पीड़ा के बाद गुजर गई। उसकी सहेली ने बताया था वो तुमसे प्यार करने लगी थी। उफ उफ उफ, ये जो जानकारी बाद में होती है ये सच में दिल तोड़ देती है। एक और श्रोता ने अपनी 1990 में हुई शादी की जो पोस्टकार्ड साइज के 100 फोटो याद के लिए अभी भी सुरक्षित रखे हैं, क्या बात है। ऐसी यादें तो बड़ी ही खूबसूरत होती हैं और बड़े दिनों तक गुदगुदाती रहती हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि वर्तमान के महत्व के सुंदर भावों में व्यक्त करती है आज की इबारत। स्मृति कभी खुशियां देती है तो कभी बिछड़ने और टूटने का दर्द याद दिलाती है। मन अक्सर यादों की गलियों में भटक जाता है, लेकिन जीवन हमें ये संदेश देता है कि बीते कल में खोने के बजाय आज को संभालना जरूरी है। समय की कभी रुकता नहीं, इसलिए वर्तमान का हाथ थाम कर जीवन को जीना ही आज का सबसे बड़ा सच है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि समय और समझ दोनों एक साथ किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब तक समझ आती है तो समय निकल जाता है। वैसे समय में कल आज और आज कल में बदल जाएगा और जल्द ही एक समय ऐसा आएगा जो समय तेरा था वो तेरा होके तेरा ना रह जाएगा। बहुत गहरी बात कही आपने। इसी बात पर ये गीत सुनिए और बताइए कि आवाजें किन की हैं। साथ ही चलते चलते फिल्म का नाम भी बता दीजिए।

हम पुकारे रहे थे कि जवाब आ गया। फिल्म परिणय का गाना है ये, आवाजें मन्ना डे और वाणी जयराम की हैं। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अब इस कार्यक्रम का समय हो रहा है खत्म। तो सुरीला सफर के इस सफर में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती।

श्रोताओं नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी परिवार पर। परिवार मानव जीवन की पहली पाठशाला होती है। परिवार केवल रिश्तों का समूह नहीं बल्कि प्रेम, संस्कार, सुरक्षा और अपनापन का सुंदर संगम होता है। हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में परिवार की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। माता पिता से हमें अनुशासन, त्याग और मेहनत का पाठ मिलता है, तो वहीं दादा दादी, नाना नानी हमें अपने अनुभवों से सही मार्ग दिखाते हैं। परिवार के बीच रहकर व्यक्ति सहयोग, सहनशीलता, सम्मान और जिम्मेदारी जैसे गुण सीखते हैं। हर परिवार में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो माला के धागे की तरह पूरे परिवार को जोड़कर रखता है। फिर वो बड़ा भाई हो, बड़ी बहन, दादा दादी या माता पिता होते हैं। उस धागे की मजबूती पर पूरे परिवार की एकता टिकी होती है, जिनके बदौलत पूरा परिवार एकजुट, एक साथ होता है।

आज के आधुनिक युग में भले ही लोग भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ रहे हों, लेकिन मानसिक शांति और सच्चा सुख केवल परिवार से ही मिलता है। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, उस वक्त हमारा परिवार एकजुट होकर हमारा सहारा बन जाता है। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें परिवार का साथ मिलता है। एक अच्छा परिवार समाज की नींव होता है। यदि परिवार में एकता होगी तो ये परिवार समाज में अच्छा उदाहरण बन जाता है। परिवार की वजह से बच्चों को नैतिक शिक्षा मिलती है, जो उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। कुछ खास अवसर पर जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है, गीत संगीत की महफिल जमती है, तब वहाँ का माहौल इतना खूबसूरत हो जाता है जिसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते।

ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं गाओ।

परिवार जीवन का वो अनमोल खजाना है जिसकी कीमत धन दौलत से नहीं आकी जा सकती। ये वो छाया है जहां मनुष्य हर पीड़ा को भूल जाता है। ये वो आश्रय है जहां आंसू भी मुस्कान बन जाते हैं। पर आजकल तकनीक ने लोगों को पास लाकर भी मन से दूर कर दिया है। मोबाइल फोन की चमक से रिश्तों की मिठास कहीं कम होती नजर आ रही है। इसलिए आवश्यक है कि कितने भी व्यस्त क्यों न हो, अपने परिवार के साथ हमें वक्त जरूर बिताना चाहिए। और उस वक्त जब हमारे अपने हो तो मोबाइल फोन को थोड़े समय के लिए दूर रख देना चाहिए। मुश्किल होती है ना, लेकिन करना जरूरी है क्योंकि परिवार ही जीवन का आधार है, समाज की आत्मा है। आपके परिवार में हमेशा प्रेम और रिश्तों की मिठास बनी रहे और घर स्नेह की रोशनी से हमेशा जगमगाता रहे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा एआई गलियारे की शुरूआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
2: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एआई कॉरिडोर यानी सीटैक का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र एआई, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन एसएमई और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को

0: उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: वडसेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम वी स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याजमाय विश्वस्तयुम।
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रूपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
2: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय

0: महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्लीवासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
1: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले यह सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
2: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3-5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया।

0: और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आपने ट्यून किया है देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति ये मीठा सा गीत हलाकू फिल्म से लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में सुनवा रहे हैं। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

नजरों का दामन बिछाती ये प्यार की पुकार भला कौन अनसुना करेगा। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। तो आइए अब सुनते हैं मन की दहलीज से गुजरकर दिल के आंगन तक पहुंचता ये गीत क्या कह रहा है। तीन बहुरानियां फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में सुनवा रहे हैं। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब जो गाना सुनवाने जा रहे हैं वो वचन फिल्म से है। मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने गाया है, प्रेम धवन ने लिखा है और रविशंकर ने इसे संगीत से सजाया है। तो चलिए हाथों में हाथ लेकर और दिल को साथ लेकर सुनते हैं ये मीठा सा नगमा।

मोहब्बत की ये खूबसूरत सी इल्तिजा उड़न खटोला फिल्म से आपने सुनी लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था शकील बदायूनी ने और धुन बनाई थी नौशाद ने। और अब सुनवा रहे हैं तुमसा नहीं देखा फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। ओपी नैयर का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी का गीत है।

कसम से देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में एक समारोह में सहायक आचार्यों तथा महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि इससे राज्य के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था और मजबूत होगी। समारोह में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव भी मौजूद रहे।
1: नवनियुक्त हुए हैं, सरकार के अंग के रूप में अब आप काम करेंगे। यह चार महीने में ही शिक्षा विभाग में लगभग 9000 से अधिक लोगों की नियुक्ति हुई। विगत दो साल के अंदर हम लोगों ने लगभग 15-16 हजार लोगों की नियुक्तियां की और ये अनवरत जारी भी, अभी और भी तैयारी हो रही है। लगता है कि 2-3-4 महीने में और भी हजारों लोगों की नियुक्तियां होंगी, तो आज ये 300 आदमी हजारों के बराबर।
0: दुमका में बिजली और पानी का संकट गहरा गया है। इसके विरोध में भाजपा नेत्री सीता सोरेन ई रिक्शा से समाहरणालय पहुंची। उन्होंने उपायुक्त अभिजीत सिन्हा को ज्ञापन सौंपकर सुचारू आपूर्ति की मांग की। श्री सोरेन ने कहा कि बिजली कटौती से जलापूर्ति ठप है और लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। प्रदेश कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के लिए जिला प्रभारियों की नई सूची जारी की है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में राज्य के सभी प्रमंडलों में नियुक्तियां की गई है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से उठाना है। टाटानगर रेलवे स्टेशन जल्द ही विश्वस्तरीय बनेगा। अमृत स्टेशन योजना के तहत 290 करोड़ रुपए की लागत से इसका पुनर्विकास कार्य तेजी से जारी है। यहां 6 मंजिला आधुनिक भवन, आधुनिक प्रतीक्षालय और 10,000 वाहनों की पार्किंग जैसी सुविधाएं मिलेंगी। रेलवे ने इस बड़ी योजना को अगले 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिकों से एक समय का भोजन न करने का आग्रह किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि गृहमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने नागरिकों से केवल सरकारी स्रोतों से ही सत्यापित जानकारी प्राप्त करने का आग्रह किया है। नागरिकों को केंद्र सरकार से संबंधित किसी भी संदिग्ध जानकारी, वीडियो या तस्वीर को पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई के सोशल मीडिया हैंडल पर भेजने की सलाह भी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से अब चतरा जिला सीधे रेल सेवा से जुड़ेगा। रेल मंत्रालय ने बिहार के परैया से चतरा तक 75 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को मंजूरी दे दी है। करीब 2500 करोड़ रुपए की इस विशेष परियोजना की जानकारी आज स्थानीय सांसद कालीचरण सिंह ने प्रेस वार्ता में दी।
2: चतरा और गया का रेल लाइन का अधिसूचना जारी हो गया, जो 75 किलोमीटर का रेल लाइन है। विशेष अधिसूचना के तहत चतरा गया रेल लाइन को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। स्पेशल स्टेटस के अनुसार 531 करोड़ जो अलॉटेड हुआ है, उसमें से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो जाए। जितने भी अड़चने हो, फॉरेस्ट का, NOC का हो, जितनी भी चीजें हो, उनको जितनी भी अड़चन का हो दूर हो जाए और समस्या की ओर जो समाधान करते हो आगे के कार्य की प्रगति करे, इसलिए स्पेशल स्टेटस इसको दिया गया है।
0: सिमडेगा पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी मामले में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। DSP रणवीर सिंह ने बताया कि पूर्व में टुकुपानी से 42 किलो गांजा और 3 पिस्तौल के साथ तस्कर पकड़े गए थे। इसी मामले में SP श्रीकांत एस खोटरे की विशेष टीम ने बिहार और ओडिशा के 2 अन्य आरोपियों को दबोचा है। और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज दोपहर बाद गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए कई जिलों के लिए येलो और कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए तेज आंधी और वज्रपात की चेतावनी दी है। विभाग ने लोगों को खराब मौसम में सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। सरायकेला खरसावां द्वितीय जिला स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता का समापन हो गया है। श्रीनाथ यूनिवर्सिटी और जिला योगासन खेल संघ द्वारा आयोजित इस स्पर्धा में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथियों ने विजेताओं को मेडल सौंपे। अब ये खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: विविध भारती कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सखी सहेली।

0: सखी सहेली में सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। और हमारे साथ हैं
1: मंजरी वर्मा। पर आपकी इस स्टाइल ने मुझे एकदम चौंका दिया कि अब क्या बोलने वाली
0: बस
1: है।
0: यही तो, इसीलिए तुम देख रहे थे ना मंजरी, लेकिन बिल्कुल सजग सतर्क बैठी थी।
1: बिल्कुल।
0: नमस्कार तो मंजरी का भी।
1: हाँ, आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और साथ में हमारी जो सखिया में सखा भाई सुन रहे हैं, उन सभी को भी मेरा प्यार भरा, हम दोनों की तरफ से प्यार भरा नमस्कार कह देते हैं। और आज आपके साथ काफी अरसा हो गया, जिसे कहते हैं सखी सहेली में हम लोग
0: मुद्दत हो गई
1: जमाने आपसे मिलना हो ही नहीं पा रहा था। और मुझे याद ही नहीं आ पा रहा था कि कब मैंने आपके साथ ड्यूटी करी थी। तो आज आपको देखकर इस मंच पर बड़ा अच्छा लगा कि फिर से हमारा आपका साथ होगा और फिर से बहुत सारी बातें होंगी।
0: तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है
1: जी।
0: तो ये तो बताओ ना कि ये जो मुलाकात है ये खास बनने वाली है, तो इस खास बात में क्या क्या खास बातें हैं?
1: भी खास बात है कि उत्तर प्रदेश के व्यंजन हम लेकर के आए हैं।
0: क्या बात है?
1: जिसमें बनारस की टमाटरी चाट और छेना दही बड़ा।
0: बस मतलब मुंह में पानी भरने का इंतजाम तुमने पहले ही कर दिया।
1: और मुझे याद है कि एक मेरी चीज पेंडिंग हो गई, आपको पिलानी थी लस्सी आपने बोला था। मुझे याद है, तो मैं वही सोच रही थी जब व्यंजन लेके आ रही थी, मैं सोच रही थी कि आज फिर राजुल जी कोई चीज मुझे एक दे देंगे तो मेरे पास दो चीजें पेंडिंग हो जाएंगी, पिलाने खिलाने की। तो चलिए, ये तो हो गई बातें हमारे व्यंजन की। इसके बाद एक विषय हमने लिया है, मोबाइल के कारण जीवन साथी से तनाव। तो ये बड़ा अच्छा सा विषय, प्यारा सा विषय है।
0: ये तो बहुत ज्वलंत समस्या है क्योंकि ये तनाव तो घर घर गूंजने लगा है। कई बार सुनते हैं कि भाई हाँ मोबाइल में ही सब लगे हुए हैं। हाँ
1: जी।
0: और तो, आज एक खास दिन भी है
1: जी।
0: खास एक क्यों, दो खास दिन है। हाँ, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है और
1: अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कथा सुधा लेकर हम आए हैं, तो कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो, इसका भाग दो, यानी अंतिम भाग हम आज सुनेंगे।
0: बड़ी मजेदार कहानी है।
1: पिछली बार भी हमने सुनी थी और आज भी हम सुनेंगे।
0: हाँ।
1: तो बड़ा अच्छा लगेगा सुनकर के। लेकिन उससे पहले राजुल जी, क्यों ना एक गीत सुन लिया जाए।
0: हाँ बिल्कुल, सुनने सुनाने की इतनी बातें हो रही तो बिल्कुल गाना तो बनता है।

0: तो मंजरी कितना प्यारा सा नीरज का लिखा हुआ ये गीत सुना हमने, सचिन देव बर्मन का संगीत, तेरे मेरे सपने फिल्म का किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें। और भाई तुमने शुरुआत में ही आपने कसम ले ली और कसम दे दी,
1: लेकिन वो किस चीज की थी?
0: साथ रहने की, जुदा ना होने की, और कथा सुधा में भी बराबर अपनी भागीदारी जताने की।
1: बिल्कुल, तो कथा सुधा जो हम आज सुनाएंगे तो उसके लिए एक संदेश आया है। ये लिखते हैं कि कोई दुख ना हो तो बकरी पाल लो। प्रेमचंद ने इस कहानी में मध्यम वर्गीय व्यक्ति की विवशता, उसकी कुंठा और पारिवारिक कलह को हास्य के माध्यम से बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। नौकर और बीबी के सामने मालिक की बेबसी पाठकों को गुदगुदाती भी है और सोचने पर भी मजबूर करती है। तो भाई इतनी अच्छी सी कहानी के लिए इन्होंने लिखा है, तो क्यों ना हम लोग कथा सुधा पहले सुना देते हैं।
0: चलो सुनते हैं पहले।

0: कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। पिछले भाग में आपने सुना,
2: उन दिनों दूध की तकलीफ थी। आखिर एक दिन एक दोस्त से मैंने कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले लें, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी दूध आने लगा, रोज रोज के झंझट से मुक्ति मिली। तीसरे महीने चड्ढा का तबादला हो गया, मैं अकेले गाय न रख सकता था, गाय आधे दामों बेच दी गई। आखिर ये सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए, लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा,
3: देहात की बकरी है, यहाँ बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं, इसे जरा टहला दिया कीजिए।
2: लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहाँ, इसलिए ये तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। झटपट मकान बदला, एक काछी से तय कर लिया कि रोजाना बकरी के लिए कुछ हरियाली जाया करे। मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़त नहीं हुई। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्द चला आया और चटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। ये ख्याल आया, अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाएं तो इससे कहीं बेहतर नतीजा निकले, और शाम को बकरी को साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। अचानक काछी एक तरफ से आ निकला,
4: आपके हाथ में ये लग्गा अच्छा नहीं लगता, लाइए मैं काट देता,
2: और देखते देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ली और बोला,
4: चलिए मैं रख देता हूं।
2: मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा ली, उसी पेड़ के नीचे उसकी चौगुनी पत्तियां पड़ी हुई थी। काछी ने उनका एक गट्ठा बनाया और सर पर लाद कर चला गया।
1: आइए सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
2: दूसरे दिन बकरी को बाग में ले जाना मेरे लिए कठिन हो गया। काछी फिर देखेगा और न जाने क्या क्या फिक्रें चुस्त करेगा। उसकी नजरों में गिर जाना मुंह से कालिख लगाने से कम शर्मनाक ना था। हमारे सम्मान और प्रतिष्ठा की जो कसौटी लोगों ने बना रखी है, हमको उसका आदर करना पड़ेगा। नक्कू बनकर रहे तो क्या रहे, लेकिन बकरी इतनी आसानी से अपनी निर्द्वंद्व आजाद चहलकदमी से हाथ न खींचना चाहती थी, जिसे उसने अपनी साधारण दिनचर्या समझना शुरू कर दिया था। शाम होते ही उसने जोर शोर से प्रतिवाद का स्वर उठाया कि घर में बैठना मुश्किल हो गया। गिटकिरीदार मैने का निरंतर स्वर आ आकर कान के पर्दे को क्षत विक्षत करने लगा। कहां भाग जाऊं, बीवी ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया। मैंने गुस्से में आकर कई डंडे रसीद किए, मगर उसे सत्याग्रह स्थगित न करना था न किया, बड़े संकट में जान थी। आखिर मजबूर हो गया, अपने किए का क्या इलाज। 8 बजे रात, जाड़ों के दिन, घर से बाहर मुंह निकालना मुश्किल, और मैं बकरी को बाग में टहला रहा था। और अपनी किस्मत को कोस रहा था। अंधेरे में पांव रखते मेरी रूह कांपती है। एक बार मेरे सामने से एक सांप निकल गया था, अगर उसके ऊपर पैर पड़ जाता तो जरूर काट लेता। तब से मैं अंधेरे में कभी ना निकलता था, मगर आज इस बकरी के कारण मुझे इस खतरे का भी सामना करना पड़ा। जरा भी हवा चलती और पत्ते खड़कते तो मेरी आंखें ठिठुर जाती और पिंडलियां कांपने लगती। शायद उस जन्म में मैं बकरी रहा होऊंगा और ये बकरी मेरी मालकिन रही होगी, उसी का प्रायश्चित इस जिंदगी में भोग रहा था। बुरा हो उस पंडित का जिसने ये बला मेरे सिर मढ़ी। गृहस्थी भी जंजाल है, बच्चा ना होता तो क्यों इस मूजी जानवर की इतनी खुशामत करनी पड़ती। और ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बात न सुनेगा, कहेगा आपने मेरे लिए क्या किया है, कौन सी जायदाद छोड़ी है। ये सजा भुगत कर 9 बजे रात को लौटा। अगर रात को बकरी मर जाती तो मुझे जरा भी दुख ना होता। दूसरे दिन सुबह से ही मुझे यह फिक्र सवार हुई कि किसी तरह रात की बेगार से छुट्टी मिले। आज दफ्तर में छुट्टी थी, मैंने एक लंबी रस्सी मंगवाई और शाम को बकरी के गले में रस्सी डाल एक पेड़ की जड़ से बांध कर सो गया। अब चरे जितना चाहे, अब चिराग जलते जलते खोल लाऊंगा। छुट्टी थी ही, शाम को सिनेमा देखने की ठहरी। एक अच्छा सा खेल आया हुआ था, नौकर को भी साथ लिया, वरना बच्चे को कौन संभालता। जब 9 बजे रात को घर लौटे और मैं लालटेन लेकर बकरी लेने गया तो क्या देखता हूं कि उसने रस्सी को 2-3 पेड़ों से लपेट कर ऐसा उलझा डाला है कि सुलझाना मुश्किल है। इतनी रस्सी भी न बची थी कि वो एक कदम भी चल सकती। लाहौल विलाकुवत, जी में आया कि कमबख्त को यही छोड़ दूं, मरती है तो मर जाए। अब इतनी रात को लालटेन की रोशनी में रस्सी सुलझाने बैठे, लेकिन दिल ना माना। पहले उसकी गर्दन से रस्सी खोली, फिर उसकी पेंच दर पेंच ऐठन उसे छुड़ाया। 1 घंटा लग गया, मारे सर्दी के हाथ ठिठुर जाते थे और जी जल रहा था। वो अलग ये तरकीब और भी तकलीफ देह साबित हुई। अब क्या करूं, अकल काम ना करती थी। दूध का ख्याल ना होता तो किसी को मुफ्त में दे देता। शाम होते ही चुड़ैल अपनी चीख पुकार शुरू कर देगी और घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। और आवाज भी कितनी कर्कश और मनहूस होती है। शास्त्रों में लिखा भी है, जितनी दूर उसकी आवाज जाती है उतनी दूर देवता नहीं आते। स्वर्ग की बसने वाली हस्तियां जो अप्सराओं के गाने सुनने की आदि है, उसकी कर्कश आवाज से नफरत करे तो क्या ताज्जुब। मुझ पर उसकी कर्ण कटु पुकारों का ऐसा आतंक सवार था कि दूसरे दिन दफ्तर से आते ही मैं घर से निकल भागा। लेकिन 1 मील निकल जाने पर भी ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज मेरा पीछा किए चली आती है। अपने इस चिड़चिड़ेपन पर शर्म भी आ रही थी। जिसे एक बकरी रखने की भी सामर्थ्य ना हो वो इतना नाजुक दिमाग क्यों बने। और फिर तुम सारी रात तो घर से बाहर रहोगे नहीं, 8 बजे पहुंचोगे तो क्या वो गीत तुम्हारा स्वागत न करेगा। सहसा एक नीची शाखों वाला पेड़ देखकर मुझे बरबस उस पर चढ़ने की इच्छा हुई। सपाट तनों पर चढ़ना मुश्किल होता है, यहां तो 6-7 फुट की ऊंचाई पर शाखें फूट गई थी। हरी हरी पत्तियों से पेड़ लदा खड़ा था और पेड़ भी था गूलर का, जिसकी पत्तियों से बकरियों को खास प्रेम है। मैं इधर 30 साल से किसी रुख पर नहीं चढ़ा, वो आदत जाती रही, इसलिए आसान चढ़ाई के बावजूद मेरे पांव कांप रहे थे। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और पत्तियां

0: करनी पड़ेगी।
1: झल्लाकर नीचे उतरने लगा। एक एक पल में पत्तियां गायब होती जाती थी। उतरकर एक एक की टांग तोड़ूंगा। यकायक पांव फिसला और मैं 10 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गिरा। कमर में ऐसी चोट आई कि 5 मिनट तक आंखों तले अंधेरा छा गया। खैरियत हुई कि और ऊपर से नहीं गिरा, नहीं तो यही शहीद हो जाता। बारे में मेरे गिरने के धमाके से बकरियां भागी और थोड़ी सी पत्तियां बच रही। जब जरा होश ठिकाने हुए तो मैंने उन पत्तियों को जमा करके एक गट्ठा बनाया और मजदूरों की तरह उसे कंधे पर रख कर शर्म की तरह छिपाए घर चला। रास्ते में कोई दुर्घटना नहीं हुई। जब मकान कोई 4 फल्लांग रह गया और मैंने कदम तेज किए कि कहीं कोई देख ना ले, तो वो काछी सामने से आता दिखाई दिया। कुछ ना पूछो उस वक्त मेरी क्या हालत हुई। रास्ते के दोनों तरफ खेतों की ऊंची मेड़े थी जिनके ऊपर नागफनी निकलेगा और भगवान जाने क्या सितम ढाए। कहीं मुड़ने का रास्ता नहीं। सिर झुकाकर इस तरह निकल जाना चाहता था कि कोई मजदूर है। तले की सांस तले थी, ऊपर की ऊपर, जैसे वो काछी कोई खूंखार शेर हो। बार बार ईश्वर को याद कर रहा था कि हे भगवान, तू ही आफत के मारे हुओं का मददगार है, इस मर्दूत की जबान बंद कर दे, एक क्षण के लिए उसकी आंखों की रोशनी गायब कर दे। हाँ, वो यंत्रणा का क्षण जब मैं उसके बराबर 1 गज के फासले से निकला, एक एक कदम तलवार की धार पर पड़ रहा था, शैतानी आवाज कानों में आई।
2: कौन कौन है, कौन है रे, कहां से पत्तियां तोड़े लाता है, कौन है?
1: मुझे मालूम हुआ नीचे से जमीन निकल गई और मैं उसके गहरे पेट में जा पहुंचा हूं। रोए बरछियां बने हुए थे, दिमाग में उबाल सा आ रहा था, शरीर को लकवा सा मार गया, जवाब देने का होश ना रहा। तेजी से 2-3 कदम आगे बढ़ गया, मगर वो ऐच्छिक क्रिया न थी, प्राण रक्षा की सहज क्रिया थी कि एक जालिम हाथ गट्ठे पर पड़ा और गट्ठा नीचे गिर पड़ा। फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ। मुझे जब होश आया तो मैं अपने दरवाजे पर पसीने से तर खड़ा था, जैसे गोया मिर्गी के दौरे के बाद उठा हूं। इस बीच मेरी आत्मा पर उपचेतना का आधिपत्य था और बकरी की वो घृणित आवाज, वो कर्कश आवाज, वो हिम्मत तोड़ने वाली आवाज, वो दुनिया की सारी मुसीबतों का खुलसा, वो दुनिया की सारी लानतों की रूह कानों में चली जा रही थी। बीवी ने पूछा,
3: आज कहाँ चले गए थे? इस चुड़ैल को जरा बाग भी ना ले गए? जीना मुहाल किए देती है ये, घर से निकलकर कहीं चली जाऊं ऐसा लगता है।
1: मैंने इत्मीनान दिलाया, भगवान आज चिल्ला लेने दो, कल सबसे पहला काम ये करूंगा कि इसे घर से निकालकर बाहर करूंगा, चाहे कसाई को क्यों ना देना पड़े। अरे और लोग ना जाने कैसे बकरियां पालते हैं।
3: बकरी पालने के लिए कुत्ते का दिमाग चाहिए।
1: सुबह को बिस्तर से उठकर इसी फिक्र में बैठा था कि इस काली बला से क्यों कर मुक्ति मिले, कि सहसा एक गडरिया बकरियों का एक गल्ला चराते हुए आ निकला। मैंने उसे पुकारा और उससे अपनी बकरी चराने की बात कही। गडरिया राजी हो गया, यही उसका काम था। मैंने पूछा, क्या लोगे?
4: हुजूर 8 आने बकरी मिलते हैं।
1: मैं 1 रुपया दूंगा, लेकिन बकरी कभी मेरे सामने ना आवे। गडरिया हैरत में पड़ गया।
4: मरका ही है क्या बाबूजी?
1: अरे नहीं नहीं, बहुत सीधी है, बहुत सीधी है, बकरी क्या मारेगी, लेकिन मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता।
4: अभी तो दूध देती है।
1: हाँ, शेर सवा शेर दूध देती है।
4: दूध आपके घर पहुंच जाया करेगा बाबूजी।
1: तुम्हारी मेहरबानी।

0: कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा बाबूजी।
1: जिस वक्त बकरी घर से निकली, मुझे ऐसा मालूम हुआ मेरे घर का पाप निकला जा रहा है। बकरी भी खुश थी, गोया कैद से छूटी है। गडरिये ने उसी वक्त दूध निकाला और घर में रखकर बकरी को लिए चला गया। ऐसा ग्राहक उसे जिंदगी में शायद पहली ही बार मिला होगा। एक हफ्ते तक दूध थोड़ा बहुत आता रहा, फिर उसकी मात्रा कम होने लगी। यहां तक कि एक महीना खत्म होते होते दूध बिल्कुल बंद हो गया। मालूम हुआ बकरी गाभिन हो गई है। मैंने जरा भी ऐतराज ना किया, काची के पास गाय थी, उससे दूध लेने लगा। मेरा नौकर खुद जाकर दूध लाता था। कई महीने गुजर गए। गडरिया महीने में एक बार आकर अपना रुपया ले जाता। मैंने कभी उससे फिर बकरी का जिक्र ना किया। उसके ख्याल से ही मेरी आत्मा कांप जाती थी। गडरिये को अगर चेहरे का भाव पढ़ने की कला आती तो वो बड़ी आसानी से अपनी सेवा का पुरस्कार दुगना कर सकता था। एक दिन दरवाजे पर बैठा हुआ था कि गडरिया अपनी बकरियों का गल्ला लिए आ निकला। मैं उसका रुपया लेने अंदर गया कि क्या देखता हूं कि मेरी बकरी दो बच्चों के साथ मकान में आ पहुंची। वो पहले सीधी उसी जगह गई जहां बंधा करती थी, फिर वहां से आंगन में आई और शायद परिचय दिलाने के लिए मेरी बीवी की तरफ ताकने लगी। उसने दौड़कर एक बच्चे को गोद में ले लिया और कोठरी में जाकर महीनों का जमा चोकर निकाल लाई और ऐसी मोहब्बत से बकरी को खिलाने लगी जैसे बहुत दिनों की बिछुड़ी हुई सहेली आ गई हो। न वो पुरानी कटुता थी, न वो मनमुटाव। कभी बच्चे को चुमकारती, कभी बकरी को सहलाती थी और बकरी डाक गाड़ी की रफ्तार से चोकर उड़ा रही थी। तब मुझसे बोली,
2: अरे वाह, अरे कितने खूबसूरत बच्चे हैं।
1: हाँ, बहुत खूबसूरत।
2: जी चाहता है इनमें से एक ले लूं, पाल लूं।
1: तबीयत नहीं भरी अभी तक।
2: तुम तो बड़े निर्मोही हो।
1: चोकर खत्म हो गया, बकरी इत्मीनान से विदा हो गई। दोनों बच्चे भी उसके पीछे पीछे फुदकते चले गए। देवी जी आंख में आंसू भरे ये तमाशा देखती रही। गडरिया ने चिलम भरी और घर से आग मांगने आया। चलते वक्त बोला,
0: कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा बाबूजी।
1: देवी जी ने कहा,
3: और दोनों बच्चे क्या पियेंगे?
1: और मुझे रात को वो मर्मांतक घटना याद आ गई। मैंने कहा, दूध लाओ या न लाओ तुम्हारी खुशी, लेकिन बकरी को इधर ना लाना। उस दिन से न वो गडरिया नजर आया, न वो बकरी, और न मैंने पता लगाने की कोशिश की। लेकिन देवी जी उसके बच्चों को याद करके कभी कभी आंसू बहाकर रोती है।
4: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का दूसरा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है, सूत्रधार जी श्याम, बीवी ममता सिंह, पंडित जी दीपक केसावलेकर, काची जयंत पात्रिकर, काची की बीवी चंचल वर्मा, नौकर दीपक केसावलेकर, गडरिया राजेश झा, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
5: मंजरी, देखिए एक हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बरसों पहले हमारे पास एक बकरी थी जिसे चरवाहे के घर तक छोड़ने के लिए मैं और मेरा कजन जाते थे, लेकिन आज इस बात को 50 साल बीत गया है, ना वतन में रहते हैं ना जगह है। सूरत शहर में तो फ्लैट की 9वीं मंजिल है। अब कोई दुख तो नहीं, केवल ये दुख है कि वो बचपन समय और दादाजी पिताजी काकाजी सब चले गए। कजन के साथ ही पुरानी यादें बांटूंगा।
6: क्या बात है, और वाकई में बहुत अच्छा लगा इनका किस्सा सुन करके। और इसी के साथ समय हो चला है अंतराल का, तो लेते हैं अंतराल।

0: तो राजुल जी, अंतराल के बाद सभी का एक बार स्वागत करते हुए हम
1: फिर से स्वागत है
0: जी। और हम बात करने वाले हैं विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, जो हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य एचआईवी एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना है और ऐसी प्रभावी वैक्सीन के विकास के लिए वैज्ञानिकों, डॉक्टर और संस्थाओं के प्रयास को सम्मान देना है।
1: और इसकी रोकथाम के लिए, जो एड्स है इसकी रोकथाम के लिए, एक सुरक्षित और प्रभावी टीका खोजने की दिशा में चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधानों को भी बढ़ावा मिले, ये भी इस दिन का उद्देश्य है
0: जी। और ये दिवस पहली बार वर्ष 1998 में मनाया गया था। इसकी प्रेरणा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के एक भाषण से मिली थी, जिसमें उन्होंने एड्स वैक्सीन विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था।
1: दरअसल ये एक वायरस है एचआईवी, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है, और यदि समय पर इसका इलाज ना हो तो ये एड्स का रूप ले सकता है। लोगों में एड्स के बारे में जानकारी बढ़े, सुरक्षित जीवन शैली के बारे में वो जाने, उसे अपनाएं, और वैक्सीन अनुसंधान हो ज्यादा से ज्यादा, संक्रमित लोगों के प्रति भेदभाव ना बरता जाए, क्योंकि कई बार एड्स से पीड़ित लोगों को घर में बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती
0: है। बिल्कुल। और जो इसके बचाव के लिए है कि आप संक्रमित सुई या ब्लेड का उपयोग ना करना है, और समय समय पर एचआईवी की जांच कराना है, अपने रिश्तों को भी अच्छे से बना के चलना है, जागरूकता और सही जानकारी इसके बारे में फैलाना जरूरी है। और संदेश ये देता है कि जागरूकता, शोध और सहयोग ही एचआईवी एड्स मुक्त भविष्य की कुंजी है।
1: और विश्व एड्स टीकाकरण दिवस 2026 का जो टॉपिक है, विषय है, वो है पुनर्विचार करें, पुनर्निर्माण करें, आगे बढ़ें। ये विषय एचआईवी वैक्सीन अनुसंधान की दिशा में जो सारे विश्व में प्रयास चल रहे हैं उनको मजबूत करता है, जन जागरूकता को बढ़ाता है, रोकथाम रणनीतियों में जो नई नई बातें आती हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले, इस बात की कोशिश करता है, और स्वास्थ्य सेवा को फिर से बहाल करके एचआईवी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का पर भी बल देता है
0: जी। और इसी के साथ हम लोग गीत सुन लें।
1: हाँ, वो तो बहुत जरूरी है।

0: नया दौर फिल्म का ये मस्ती भरा गाना हमने सुना, और अब अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बात करें।
1: बिल्कुल, मानव सभ्यता का इतिहास, संस्कृति, कला और परंपराएं किसी राष्ट्र की अमूल्य धरोहर होती हैं, और इन धरोहरों को सुरक्षित रखने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य संग्रहालय करते हैं। संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का भंडार नहीं होते, बल्कि वे ज्ञान, शिक्षा और प्रेरणा के महत्वपूर्ण केंद्र भी हैं। इन्हीं के महत्व को समझने के लिए हर वर्ष 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है।
0: और इस दिन की शुरुआत वर्ष 1977 में हुई थी, जब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने इस बात का निर्णय लिया था। और इसका उद्देश्य तो यही है कि लोगों को संग्रहालयों की भूमिका और उसके महत्व के प्रति जागरूक करना। दुनिया में अनेक देशों में ये दिवस बहुत उत्साह से मनाया जाता है, और बहुत सारे संग्रहालयों में प्रदर्शनी भी लगाई जाती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कार्यशालाएं होती हैं, और साथ ही साथ शैक्षिक गतिविधियां भी होती हैं।
1: बिल्कुल राजू जी, और संग्रहालय जो है वो हमारे इतिहास और संस्कृति के संरक्षक होते हैं। इनमें प्राचीन मूर्तियां, ऐतिहासिक दस्तावेज, कलाकृतियां, हथियार, वस्त्र और वैज्ञानिक खोजों से संबंधित वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती हैं। ये हमें हमारे अतीत से जोड़ने और ये समझने में सहायता करते हैं कि मानव सभ्यता ने किस प्रकार विकास किया है। संग्रहालय जब भी हम लोग जाते हैं तो सभी को लेके जाते हैं, पिकनिक पर भी आपने देखा होगा, स्कूल वाले भी बच्चों को लेके जाते हैं, तो संग्रहालय जाने से बच्चों को ज्ञान बढ़ता है और पुरानी चीजों को देखते हैं कि क्या चीजें थी जो हम नहीं जानते, जिनके बारे में बहुत सारी जानकारियां।
0: हाँ, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, कई संग्रहालयों में उस समय के वस्त्र, पुराने पुराने वस्त्र की, जैसे एक संग्रहालय में देखा गया कि उस समय कैसा बनारसी की या किमखाप कैसा चलता था, मलमल कैसा होता था, तो ये सब देखने को मिलता है। बड़ा अच्छा लगता है,
1: बहुत अच्छा लगता है। वजनदार चीजें जो दिखती हैं, ढाल, तलवार, ये सब वजन वाली, कैसे वो लेके चलते होंगे हथियार, घोड़े पर दौड़ना, लड़ाई करना, उस समय के जमाने के जो होते हैं, वो सब देख के तो एकदम अद्भुत लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और आजकल की बात करें तो डिजिटल युग में संग्रहालय आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं, और अब ऑनलाइन प्रदर्शनियां और वर्चुअल टूर के माध्यम से लोग घर बैठे भी संग्रहालयों का अनुभव करते हैं। इसमें नई पीढ़ी में इतिहास और संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ रही है।
0: तो ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि हम अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षित करें, उनको संरक्षित करने के उपाय करें, और जागरूक भी रहें, और हमें पता रहे कि ये संग्रहालय जो है वो हमारे गौरव और पहचान के प्रतीक हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को इनके महत्व से परिचित कराना चाहिए। वास्तव में संग्रहालय अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाली अमूल्य कड़ी है। देखो, देखिए, जैसे जब हम बात करते हैं ना कि ये इनको संरक्षित करना चाहिए, तो कई बार ये कहा जाता है कि इस पर कोई भी अगर शोकेस लगा है तो उसमें अंदर जो चीजें बंद हैं वो तो चलिए सुरक्षित हैं, फिर भी हम उस शीशे पर बार बार

0: हाथ लगाते हैं,
1: वो सब नहीं करना चाहिए।
0: और कई बार जो चीजें खुले में रखी हैं उनको भी हम उठाने की कोशिश करने लगते हैं, हालांकि वो थोड़ी सी दूर पर रहती हैं और बीच में एक
1: रिंग लगा रहती है,
0: डोरी लगी जिससे कि बाधा रहे ना पहुंचा जाए, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं। तो ये सब पुराने बहुत समय से संजो कर रखा गया है, इनको इसी तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं कि हम अपने हाथ वहां तक ना पहुंचाएं।
1: सही बात है, और इस तरह से हम संग्रहालय में जाके देख सकते हैं और सभी को दिखा सकते हैं, और वहां पर जो बुक्स मिलती हैं राजुल जी उनके बारे में, उनको भी आप खरीद करके ला सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, जानकारियां अपना उपलब्ध आपको मिल जाएगी उस बुक्स।
0: कई संग्रहालयों में शोज भी होते हैं
1: जी,
0: कि लाइट शोज होते हैं या कोई ड्रामा होता है या कोई नाटिका होती है, वो भी देखने का अगर मौका मिले तो जरूर देखिए, क्योंकि उससे और भी ज्यादा आपको पता लगेगा
1: उस करीब पहुंच जाते हैं, उस समय के करीब पहुंच जाते हैं, है ना।
0: तो चलिए हम करीब पहुंच रहे हैं
1: गीत के।
0: गीत के

0: तो राजुल जी, अब हम व्यंजन बता देते हैं। पहले स्ट्रीट स्टाइल बनारसी टमाटर चाट जो हमने वो बताएंगे।
1: मतलब आपने ये तय कर लिया है कि जो झगड़े वाली बात है ना मोबाइल को लेके, उसको आपने टाल दिया है सबसे आखिरी के लिए।
0: हाँ,
1: चलिए चलिए, पेट भर जाएगा तो झगड़े कम होते हैं, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए पहले व्यंजन बता देते हैं। बनारसी टमाटर चाट, इसकी सामग्री है कि 3 लाल पके टमाटर बारीक काट लें, 2 उबले आलू मैश कर लें, 2 बड़े चम्मच देशी घी या मक्खन, आधा 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, इतना ही आप चाट मसाला ले लीजिए, और आधा छोटा चम्मच काला नमक और सादा नमक अपने स्वाद के अनुसार लेना है, और 1 बड़े चम्मच इमली की मीठी चटनी, 1 छोटा चम्मच चीनी या गुड़, और सजाने के लिए आपको सेव बारीक कटा हरा धनिया, पापड़ी मछली, थोड़ा सा मक्खन लेना है। और इसकी बनाने की विधि क्या है कि तवा या कढ़ाई गर्म करें, उसमें देसी घी डालें और जीरा हींग डालकर तड़काएं, इसमें अदरक हरी मिर्च डालकर भूनें, कटे टमाटर डालें और चम्मच से दबाते हुए पकाएं, टमाटर जब गल जाएं तो इसमें मैश किए हुए आलू डाल दें, और इसमें सारे जो मसाले हमने बताए थे, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, काला नमक, चाट मसाला, इमली की चटनी और थोड़ा सा गुड़, चीनी डालें, और क्योंकि खट्टा मीठा इसका स्वाद आएगा तो इसको लगातार आप चलाते रहें, और ये गाढ़ा और चमकदार जब हो जाएगा तभी आप समझ लीजिए ये आपका तैयार है। और इसको गर्मा गर्म चाट या चाट को कुल्हड़ या कटोरी में निकाल लीजिए, ऊपर से मक्खन, सेव, पापड़ी और हरा धनिया डालकर तुरंत परोसे, और बनारसी स्वाद का आप इसको मजा ले सकते हैं। और आप देशी घी या मक्खन दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो हमारे एक श्रोता ने कहा है कि बनारस गया था लेकिन चाट नहीं खाई, अब की जाऊंगा तो जरूर खाऊंगा। तो मेरे ख्याल से अब तो उन्होंने पक्का इरादा कर लिया होगा कि जरूर खाएंगे। और एक श्रोता कह रहे हैं कि बनारसी व्यंजन की बात हो रही है तो ये तो लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, वहां जाकर ये चाट नहीं खाई तो क्या खाई, छेना दही बड़ा ये नहीं खाया है,
0: तो बस
1: ये मिठाई है नमकीन,
0: ये तो आप पढ़ेंगे सामग्री
1: पता लग जाएगा। तो भाई, छेना दही बड़ा बनाने के लिए 250 ग्राम ताजा छेना या पनीर ले लीजिए, 2 बड़े चम्मच अरारोट या कॉर्नफ्लोर, 1 बड़ा चम्मच मैदा, 1 चुटकी इलायची पाउडर और तेल तलने के लिए ले लीजिए। अब दही में मिलाने हैं क्या क्या, 2 कप ताजा दही हो, उसमें 2-3 बड़े चम्मच चीनी, थोड़ा सा काला नमक मतलब मीठा नमकीन दोनों, भुना जीरा पाउडर, और सजावट के लिए इमली की मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च पाउडर और भुना जीरा लेना है, और सेब या अनार के दाने ले सकते हैं। कैसे बनाएंगे कि छेने को हाथों से अच्छी तरह मसल लें ताकि वो बिल्कुल मुलायम हो जाए। अब इसमें अरारोट, मैदा और इलायची पाउडर मिलाएं और छोटे छोटे गोल बड़े बना लें। फिर कढ़ाई में तेल गरम करें, मध्यम आंच पर बड़े सुनहरे होने तक तलें, निकालकर टिश्यू पेपर पर रख दें। अब दही को तैयार करना है तो अच्छी तरह फेंट के उसमें चीनी, थोड़ा काला नमक और भुना जीरा मिला दें। अब बड़े को हल्के गुनगुने पानी में 2 मिनट डालकर निकाल लें, ज्यादा देर तक नहीं रखें नहीं तो वो फट जाएंगे। और अब उन्हें दही में डालें, ऊपर से इमली चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च और जीरा पाउडर डालें। छेना जितना मुलायम होगा उतना ही आपका बड़ा स्पंजी बनेगा, और इसको इसमें हल्का सा मीठा दही ऊपर से डाल सकते हैं, चाहे तो ऊपर से किशमिश और मेवे भी डाल सकते हैं। और खास बात तो यह है कि गर्मियों में बड़ा मजा देगा ये, और त्योहारों में भी आप इसे बना सकते हैं।
0: बिल्कुल, आप जब बता रही थी तो बिल्कुल स्वाद मेरे मन में आया जा रहा था, लेकिन उसके बाद तो अब स्वाद गीतों का आ रहा है।

0: दिल की ये बेचैनी दुल्हन एक रात की फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा था और मदन मोहन ने धुन बनाई थी। और देखिए मंजरी, हम लोग जो कोई दुख ना हो बकरी पाल लो कहानी सुन रहे थे, तो हमारे एक और श्रोता ने अपना अनुभव बांटा है, हमारे साथ साझा किया है कि बचपन के दिनों में हमारे गाँव के गरड़िया अपनी बकरियों का झुंड लेकर खेतों में और जंगल में जाते थे, तो हम छुप कर किसी बकरी को पकड़ते थे और उसका दूध पलाश के पत्तों को मोड़ कर उसमें निकालते थे और खूब पीते थे।
1: क्या बात बचपन की ऐसी शरारतें तो हम लोगों ने भी की हैं, लेकिन अभी हम आज बात करेंगे जो हमारे मोबाइल के कारण घर में पति पत्नी के बीच में
0: मोबाइल शरारतें
1: कर देता है। तो बस ये सुबह उठो तो लगता है भाई वो तो सबसे पहले उठकर पतिदेव मैसेज किए जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैसेज हो रही है और कुछ सुन नहीं रहे हैं, कुछ चाय वाय नहीं पीने के लिए आ रहे हैं, तो वो एक आपसी तनाव होता है, झुंझलाहट होती है कि अरे यार खाने के समय भी साइड में मोबाइल चल रहा है, मैसेज देखे जा रहे हैं, तो वो बड़ी समस्या होती है कि भाई खाने के समय खाना खाइए, मोबाइल चलाने के समय मोबाइल चलाइए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे एक श्रोता लिख भी रही हैं कि मोबाइल और इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग पति पत्नी के बीच तनाव और दूरियां बढ़ाने का एक प्रमुख कारण बन रहा है, इसे विशेषज्ञ टेक्नोफेरेंस नाम से कह रहे हैं। अब तो बातचीत के बीच में पति पत्नी और वो नाम से इसे संबोधित किया जा रहा है, यानी दाल भात में मुसर्जन।
1: और एक साथी लिखती है कि मोबाइल के कारण जीवन साथी से तनाव, इससे कोई नहीं बचा है, मेरे घर भी यही सब है, वो पास बैठे रील देखकर मुस्कुराते रहते हैं और हम चुप्पे से अपना काम करते रहते हैं। वाकई में आप चुपचाप काम कर रही थी, बड़ी अच्छी बात है। और एक साथी लिखते हैं कि मोबाइल ने दूर वालों को नजदीक और नजदीक वालों को दूर कर दिया है, साथ रहने वाले परिवार भी घंटों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। दूसरा अवगुण हैंड राइटिंग और स्पेलिंग याददाश्त का सत्यानाश कर दिया है।
0: एक श्रोता कह रही है कि आज के समय में मोबाइल हमारी जरूरत बन चुका है, लेकिन कई बार यही मोबाइल रिश्तों में दूरियां भी बढ़ा देता है। एक समय था जब परिवार और जीवन साथी के साथ बैठकर बातें होती थी, हंसी बांटी जाती थी, अब अक्सर एक ही कमरे में साथ होकर भी लोग अपने अपने मोबाइल में खोए रहते हैं, धीरे धीरे संवाद कम होने लगता है और वहीं से तनाव जन्म लेने लगता है। रिश्ते समय और अपनापन मांगते हैं, सिर्फ ऑनलाइन मौजूदगी नहीं। कभी कभी मोबाइल को थोड़ी देर के लिए दूर रखकर अपने जीवन साथी की बातें सुन लेना, उनके साथ कुछ पल मुस्कुरा लेना, फिर से रिश्तों को खूबसूरत बना देता है। तकनीक जीवन को आसान बनाए, रिश्तों को दूर नहीं, यही समझदारी है। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने,
1: बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि जहां तक मोबाइल के कारण जीवन साथी के साथ तनाव की बात है, उसमें पति पत्नी दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। मोबाइल से अधिक व्यस्त रहने के कारण एक दूसरे के बीच संवादहीनता, शक और अनदेखी की भावना पैदा होने लगती है, दूरियां बन जाती हैं। इसे हम नजरअंदाज कहना कह सकते हैं, जो आपस के रिश्तों में तनाव और दूरियां बढ़ाने का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। आजकल घर के हर सदस्य के पास मोबाइल होता है और समय की मांग के अनुसार ये जरूरी भी है, लेकिन इसके कारण के पास बैठे हुए भी मीलों की दूरी बन जाती है। सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। इस बिन डोर वाले मोबाइल से वो डोर वाला लैंडलाइन फोन अच्छा था, जो घर के सभी सदस्यों को जोड़कर रखता था,
0: एक डोर में बांधे रहता था।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लिखी। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ भी तो हमें कदम से कदम मिलाना भी उतना जरूरी है। वाकई में ये बहुत पॉइंट अच्छा दिया है कि वो तो वहां डोरी के साथ बंधा है, अगर फोन आएगा तो हम उठ के जाएंगे तभी रिसीव करेंगे, टाइम नहीं लगा रहेगा।
0: ये समस्या तो है, लेकिन बस यही है कि अति हर चीज की बुरी होती है। और देखिए ना, शिकायतें भी हो रही है और गीत भी चल रहा है, तो एक बैलेंस बना हुआ है ना, तो क्या करें, गीत सुन लेते हैं।

0: भाई साजन बिना सुहागन का ये गाना पूछ रहा है कि कैसे जीत लेते हैं, और हम वही बात कर रहे हैं कि कैसे जीता जाए। तो मोबाइल में की भूमिका को जरा हाँ थोड़ा कम किया जाए तो जीत लिया जाए दिल। एक श्रोता कह रहे हैं कि पहले तो मोबाइल नौकरी वालों के पास ही रहा करता था, लेकिन अब तो पुरुष तो पुरुष, बहुत सारी महिलाओं के हाथों तक ये मोबाइल पहुंच चुका है, और चलाते समय बिना किसी सहायता के भी आसानी से अपनी रुचियों के हिसाब से नेट प्लेटफॉर्म्स पर कार्यक्रम देखते रहना उनके शौक भी हो गए हैं। नतीजा साफ है कि एक ही बेड पर दोनों पति पत्नी लोग अक्सर ही आवाज धीमी करने की शिकायत करते हैं, और अगर अलग अलग बेड पर सोए तो इसमें फिर आश्चर्य की क्या बात है। हाँ, ये बात तो होती है ना कि हम सोते समय भी कोई देख रहा है, तो जबकि सोते समय थोड़ा मोबाइल से दूरी बरतना अच्छा रहता है।
1: हाँ, बेड से आप दूर ही रखिए, मोबाइल मेज पर रखिए, तब आप सोइए, उसको पास रखना भी नहीं चाहिए। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारी पत्नी तो रही नहीं, दोनों बहुओं और बेटों की तू तू मैं कभी न कभी महीने पर सुनता हूँ, क्या कर सकता हूँ। बस नाती नातिन से कह देते हैं मम्मी की मोबाइल पापा को चुपके से दे दो, और पापा के मोबाइल मम्मी को, फिर सब शांत हो जाता है। वाकई में पति पत्नी के साथ जब दोनों बैठे हों तो सबसे जरूरी है कि आप मोबाइल को दूरी रख दें, और जो समय मिला है आपको पास बैठने का, बातें करने का, तो आप उससे अच्छे से बात कर लें।
0: एक श्रोता ये भी लिख रहे हैं कि मोबाइल काफी चीजों को निगल गया है। आज समाज परिवार के बीच की दूरी का कारण मोबाइल है, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, रिश्ते में तनाव का कारण भी मोबाइल है, आज परिवार भी छोटा हो रहा, समाज के अर्थ को भूल गए हैं। आज कोई व्यक्ति कष्ट में है तो मदद नहीं कर वीडियो बनाते हैं, आज हम अपने असली रिश्ते को भूल कर डिजिटल रिश्ते खोज रहे हैं। तो वाकई बहुत जो ज्वलंत समस्या है वो आज हमने उठाई है, और हमारे श्रोताओं ने उस समस्या को कितनी बुरी तरह से हावी हो चुकी है इस बारे में भी बताया है, लेकिन वक्त की कमी है।
1: बिल्कुल, और चलते चलते यही कहेंगे कि जिन्होंने भी ये प्रोग्राम सुना है वो इस समय जब अपने पति पत्नी साथ में हो तो मोबाइल हटा दें। और हम लोग लेते हैं फिलहाल इस कार्यक्रम से विदा, तो सभी को मंत्री वर्मा और
0: राजुल का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। जेटेट भाषा विवाद सुलझाने के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी की आज रांची में पहली बैठक हुई। मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के बाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद और दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग से नई नियमावली में सुधार

0: सुधार के लिए विस्तृत रिपोर्ट तलब किए गए हैं। रांची के प्रोजेक्ट भवन में आज आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 316 सहायक आचार्यों और 17 महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नवनियुक्त शिक्षक सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि राज्य के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। रांची की बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में महिला कैदी की कथित यौन शोषण मामले पर भाजपा ने राज्य सरकार को घेरा है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने आरोप लगाया कि जेल अधिकारियों की मिलीभगत से मामले को दबाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जांच उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से करने की मांग की है। रांची जेल यौन शोषण मामले में कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने साफ किया कि महिला कैदी की मेडिकल जांच में गर्भावस्था की रिपोर्ट नकारात्मक आई है। श्री सिन्हा ने विपक्ष पर मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया है। पलामू जिले के छतरपुर में NH 98 पर आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सलदा गांव के पास चलती बस किससे गिरकर एक युवक की मौके पर मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे और चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। राज्य में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आज रांची खूंटी और गुमला सहित दक्षिणी तथा मध्य भागों में 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने बारिश और वज्रपात की आशंका है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: जो प्रोटीन होता है वो आपके शरीर के लिए इतना जरूरी है कि अगर वो हम ठीक से ना ले तो हम कमजोर पड़ सकते हैं, हम बीमार पड़ते हैं क्योंकि हमारा प्रोटीन इंटेक अच्छे से नहीं होता है। ये चीज अगर खाने से निकल जाती है तो हम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं और जिसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। हम अपना रोज का जो एक्टिविटीज है, जो रूटीन है, हम वो नहीं फॉलो कर पाते हैं। एंड अगर जोर दे इस चीज पे तो ये बहुत सिंपली अचीव किया जा सकता है, सिर्फ खाने पे थोड़ा ध्यान देने पे। और रही बात विटामिन्स की, विटामिन्स को हम एक्चुअली बोलते हैं वाइटल न्यूट्रिएंट्स। ये चीज ऐसी है जो बहुत छोटे प्रमाण में खाने में जरूरी होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है इनको। लेकिन अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाने में कम हो या ना हो तो हमारे बाकी के खाने का असर ही कम हो जाता है। इनकी मात्रा भले छोटी हो पर इनका जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो इतना ज़्यादा है कि इनकी एब्सेंस में हमारा खाना या हमारा शरीर अपना काम नहीं कर पाता है।
2: बड़ी अच्छी जानकारी बहुत ही सरल शब्दों में आपने सुनने वालों को बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, क्यों ना हम प्रोटीन और विटामिन को अलग अलग डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि प्रोटीन के स्रोत या सोर्सेज जो हैं वो क्या क्या हैं।
1: जी, प्रोटीन्स जो है वो खाने में बहुत सारी अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। सोर्सेज में उसी हिसाब से बताऊंगी। प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन होता है, यानी जो हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा है, जो पूरा है, इनकम्प्लीट नहीं है, वो प्रोटीन्स अलग है। और दूसरे एक टाइप के प्रोटीन जो होते हैं, एक प्रकार का प्रोटीन है, वो थोड़ा इनकम्प्लीट होता है।
2: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, हमारा जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स एक बहुत छोटे ये विटामिन से उससे बनता है, तो उसमें कुछ अमाइनो एसिड्स मिसिंग होते हैं। तो पहले कंप्लीट प्रोटीन पे फोकस करते, मैं इनकम्प्लीट प्रोटीन पे वापस आऊंगी। कंप्लीट प्रोटीन्स ये है जो शरीर जब हम खाते हैं तब शरीर उसका पूरा फायदा उठा सकता है, उसमें कोई चीज छूटी नहीं है, तो ये हमें सबसे ज्यादा फायदा करता है। कंप्लीट प्रोटीन्स खाने में पहला सोर्स है दूध और दूध के पदार्थ
2: जी।
1: तो दूध हो गया, दही है, छाछ है, पनीर है, ये सारा फर्स्ट क्लास प्रोटीन यानी कंप्लीट प्रोटीन होता है,
2: जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं।
1: यस, जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। और ये सारी चीजें ऐसी है जो हम बहुत आसानी से और रोज खा सकते हैं और इसका शरीर पूरा फायदा उठा सकता है। तो इसमें कुछ छूटेगा नहीं। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स मैं बता रही थी, ये वो चीजें हैं जिसमें कुछ मिसिंग है, कोई ऐसी चीज है जो इसमें नहीं है, और इसके लिए हमें ये कॉम्बिनेशन में खानी पड़ती है, दो चीजें साथ में खानी पड़ती है। दाल, मूंग, मटकी, चना, कड़धान्य जो बेसिकली हमारे हैं, वो है हमारा सेकेंड बेस्ट प्रोटीन यानी इनकम्प्लीट प्रोटीन,
2: जिसमें आम भाषा में या गांव में कहीं इसको कठोर कहा जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कठोर या कड़धान्य जैसे हम बताते हैं। ये जो प्रोटीन है, ये बहुत जरूरी प्रोटीन है, बट इसमें कुछ चीजें इनकम्प्लीट है, कुछ चीजें हैं जो पूरा नहीं है वो प्रोटीन, इसके लिए हमें उसके फायदे ज्यादा नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर ये चीज हम कॉम्बिनेशन में, जैसे मैं बताए

0: वो चीज़ें साथ में ले ले तो ये कंप्लीट हो जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारी खिचड़ी।
1: अच्छा,
0: जब हम दाल और चावल कंबाइन करते हैं, जब हम दाल चावल साथ में बनाते हैं या जब हम नॉर्मल दाल चावल साथ में खाते हैं, तब वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है क्योंकि अनाज और कड़धान्य दोनों साथ में आए हैं।
1: वाह।
0: तो जो हम बेसिकली अब तक खाते आए हैं पुराने जमाने से, वो एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ है और हमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो फॉलो करती रहनी चाहिए। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन है, जो मैंने बताया प्रोटीन सोर्सेस, इसमें आपका सोयाबीन भी आ जाता है।
1: अच्छा,
0: तो पहला अगर मैं देखूँ तो दूध और दूध के पदार्थ है, यानी मेरे डेयरी प्रोडक्ट्स है। दूसरा मेरा सोयाबीन आ जाता है जो करीब करीब कंप्लीट है। और तीसरा है जो मेरे कड़धान्य है, जो अगर मैं कॉम्बिनेशन में खाऊं तो वो उतने ही अच्छे है जितना मेरा दूध अच्छा है
1: अनाज के साथ।
0: बिल्कुल
1: जी जी
0: और इन सब के अलावा ये सारे मेरे शाकाहारी ऑप्शंस हो गए थे। जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए भी प्रोटीन सोर्सेज है, जो हमारा अंडा, चिकन, मच्छी, ये सारा आ जाता है। ये भी अच्छे प्रोटीन्स है, ये भी कंप्लीट प्रोटीन्स है, ये दूध के बराबर आ जाते हैं। भले दूध और इसकी जो
1: सिमिलरिटी है,
0: हाँ, जो प्रॉपर्टीज है ये थोड़ी डिफर करती है न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन अगर देखा जाए तो, लेकिन ये कंप्लीट प्रोटीन है तो इसे भी शरीर पूरी तरह से यूज कर सकता है, इसका भी शरीर पूरा फायदा ले सकता है,
1: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है,
0: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है।
1: जी, आपने प्रोटीन के बारे में जो क्लासिफाइड या वर्गीकृत ढंग से समझाया, बहुत ही अच्छा लगा। हम आगे बढ़ेंगे इसी विषय पर, फिलहाल हम एक संगीत की बात करेंगे और चाहेंगे आपकी पसंद का कोई गाना बजाया जाए। कौन सा गीत आपको पसंद है?
0: हम नहीं बदलेंगे, गोलमाल अगेन से
1: हम सुनवा रहे हैं दोस्तों, डॉक्टर मीनल की पसंद का ये गाना।

0: डॉक्टर मीनल, जैसे कि बात चल रही थी कि प्रोटीन के जो सोर्स हैं वो क्या-क्या हैं, आपने वर्गीकृत करके बताया था गीत बजने से पहले। हम ये जानना चाहेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स की, जहाँ तक बात होती है, और बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, और एक एज के बाद, 40 के बाद या 35 के बाद या आफ्टर 40, वो ये समझते हैं कि भाई ब्लॉकेज का ज़माना है और ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। तो आखिरकार जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं, क्या जो हृदय रोगी होते हैं या इस तरह के मरीज होते हैं उनको भी ये सोर्स काम करते हैं?
1: डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो नुकसान नहीं करते हैं, वो नुकसान तब करते हैं जब हम उसे फैट वाला ले या चर्बी वाला दूध ले। तो जरूरी नहीं है डेयरी नुकसान करेगा, डेयरी तब नुकसान करेगा जब हम वो फुल क्रीम मिल्क या भैंस का पूरा मलाई वाला दूध, वैसे दूध वाली चीजें ले तो वो नुकसान डेफिनेटली करेगा। लेकिन हमें लेना है या तो गाय का दूध या तो टोन्ड मिल्क। एक बहुत सिंपल चीज हम कर सकते हैं, जब हम दूध खरीदे मार्केट से तब सिर्फ पैकेट, आजकल पैकेट का जमाना है, पैकेट में ही दूध रहता है, तो पैकेट पे सिर्फ फैट परसेंटेज पढ़ ले, वो 3.2 या 3.5 से नीचे होना चाहिए।
0: अच्छा।
1: अगर वैसे है तो वो फैट परसेंटेज जो है दूध का वो कंट्रोल में है। तो हम जब घर पे उसे गर्म करेंगे, जब वो गर्म करके ऊपर मलाई आती है, वो हल्की सी मलाई भी निकाल लेते हैं तो वो लो फैट दूध हो जाता है। तो उसके लिए हमें बाजार से स्किम मिल्क या लो फैट खरीदने की जरूरत नहीं है, हम वो चीज घर पे ही बना सकते हैं। और वो जो दूध है उसमें कैल्शियम है, उसमें अच्छा वाला प्रोटीन है, तो वो नुकसान कभी नहीं करेगा। अगर वो फुल क्रीम मिल्क है या मलाई वाला दूध है तो वो नुकसान कर सकता है।
0: अच्छा, कुछ लोग जो हैं, आपने जैसे कड़धान्य और अनाज का कॉम्बिनेशन बताया था, एक मिश्रण बताया था, जैसे खिचड़ी का जो उदाहरण है वो बड़ा बेहतरीन रहा है, लेकिन कुछ लोग स्प्राउट खाते हैं, अंकुरित भोजन खाते हैं सुबह के टाइम, या तो वो कितना काम करता है?
1: वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम स्प्राउट करते हैं तब उस जो अनाज है वो ज्यादा बेहतर बन जाता है। उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो स्प्राउट करने में और अवेलेबल हो जाते हैं, यानी शरीर उसका पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन कर पाता है। तो वो स्प्राउट्स बहुत अच्छे हैं। सिर्फ एक चीज गलत हो जाती है कि वो स्प्राउट्स हम कच्चे लेने की कोशिश करते हैं।
0: अच्छा।
1: तो कच्चे है तो शरीर, हमारा शरीर ये नहीं कर पाता है कि कच्ची चीज़ है वो एब्जॉर्ब कर पाए, वो हम पूरी तरह से उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते, फायदा नहीं उठा पाते। तो जब हम उसको थोड़ा सा भी बॉईल कर लेंगे, उबाल लेंगे या स्टीम कर लेंगे, भाफ देते हैं हम जैसे, अगर थोड़ा सा भी वैसा कर लेते हैं तो वो शरीर के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, वो एब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है और वो हम पूरी तरह से उसका फायदा उठा सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई। अच्छा, ये बताइए कि फायदे तो होते हैं, प्रोटीन जरूरी होता है, नहीं तो जैसे आपने शुरू में ही बताया कि बीमारियां घर में घुस जाती हैं शरीर में, तो शरीर का जो एक घर है इसमें बीमारियां ना घुसें, उसके लिए सुना ये भी जाता है कई बार, ये मिथ है या सच है, कि प्रोटीन नुकसान भी कर देता है, वो किस अवस्था में करता है और कैसे करता है?
1: प्रोटीन नुकसान कर सकता है, ये बात सच है। लेकिन ये बात सच है जब हम जरूरत से ज्यादा प्रोटीन खाते हैं। अगर हम आज का खाने का तरीका देखें, जिस तरह से हम खाना खाते हैं, जिस तरह से हमारा रूटीन या लाइफस्टाइल हो गया है, हम जनरली प्रोटीन मिस कर देते हैं, या फिर हम ऐसे टाइप का प्रोटीन खाने की कोशिश करते हैं जो नुकसान करेगा। तो प्रोटीन फिलहाल नुकसान नहीं कर रहा है, वो फिलहाल खाने में बहुत कम है और उसे बढ़ाने पे जोर देना है। हाँ, कुछ शारीरिक कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे प्रोटीन नुकसान करता है,
0: वो कौन सी हैं?
1: जैसे किडनी की डिसीजेस होते हैं, उन केसेस में, उन पेशेंट्स के लिए, उन रोगियों के लिए प्रोटीन बहुत ही कंट्रोल या नियमित होना चाहिए। उनके लिए हम एग्जैक्टली उनके हिसाब से वो प्रोटीन कैलकुलेट करते हैं और फिर उनको बताते हैं कि कितना खाना है। बट जब तक ये तकलीफ नहीं है हमारे लिए, जो नॉर्मल पेशेंट्स नॉर्मल है, जिनका नॉर्मल रूटीन चल रहा है, उन सब के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है और वो नुकसान नहीं कर सकता है।
0: बतौर एक आहार विशेषज्ञ आप क्या प्रोवाइड करेंगी एक मरीज को जिनकी एक किडनी में यदि पथरी है, तो कितना प्रोटीन उन्हें लेना चाहिए?
1: ये वापस से एक मिथ है, ये नहीं है सच, क्योंकि पथरी जब होती है तब प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब नहीं बनता है। जब हम किडनी डिसीजेस बोलते हैं तब वैसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे उनकी किडनियाँ काम नहीं कर रही है, जब वो फेलियर में जा रही है तब ये प्रॉब्लम आता है। पथरी के लिए एक ही ट्रीटमेंट है जो नई रिसर्चेस बताती है, जो नए पेपर्स आए हैं वो बताते हैं कि सिर्फ पानी पीना है उनको. जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे हैं उनको खाने में कोई चीज परहेज नहीं करनी है.
0: प्रोटीन ले सकते हैं,
1: बिल्कुल ले सकते हैं, और जरूरी है वो ले ताकि वो भी बीमार है, भले वो पथरी की वजह से है लेकिन उन्हें भी रिकवर करना है, तो उनको इंश्योर करना है कि जितना जरूरी है वो उतना प्रोटीन खाए. जरूरत से ज्यादा नहीं खाना है लेकिन कम भी नहीं खाना है, कम खाने की वजह से ज्यादा नुकसान होगा. उनको सिर्फ पानी पीना है अच्छे से, जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे. इनफैक्ट सीड्स वाला भी कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है. जो हम बोलते हैं कि
0: बीज वाले बंद कर दीजिए, टमाटर बंद कर दीजिए,
1: बीज वाली चीजें बंद कर दो, पर वो कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाता है. तो इन पेशेंट्स के लिए हम बोलते हैं कि आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दो, डायटिशियन से मिल लो, वो आपकी कंडीशन पहले चेक करेंगे फिर बताएंगे कि क्या रिस्ट्रिक्ट करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये चीजें बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होती है, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे वो चेंज हो जाती है.
0: जी जी, व्यक्तिगत क्षमताओं पर भी निर्भर करता है.
1: हाँ, और स्टोन के प्रकार पे भी डिपेंड करता है.
0: जी, बहुत ही अच्छी बात बताई. तो यहाँ गाने की कोई ऐसी गुंजाइश बनती है, आपकी पसंद का कोई गाना हो जाए?
1: ये वादा रहा, इस मूवी से ये वादा रहा
0: टाइटल सॉन्ग सुनना है आपको.
1: जी बिल्कुल,
0: ऋषि कपूर ने इसमें काम किया था. हम सुनवा रहे हैं.

0: डॉक्टर साहब, गीत तो आपने बहुत अच्छा सुना दिया, ये वादा रहा, लेकिन श्रोताओं से एक वादा तो हम लेंगे कि भाई प्रोटीन की कमी मत होने दीजिए अपने शरीर में। डॉक्टर मीनल, ये बताइए कि प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए?
1: प्रोटीन हमें पूरे दिन चाहिए, उसे लेने का आइडियली कोई समय नहीं होता है, वो हमें पूरे दिन चाहिए। हम ये बोलते हैं कि प्रोटीन आप पूरे दिन में एक साथ नहीं ले सकते हो,
0: अच्छा।
1: वो डिफिकल्ट हो जाता है, वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इतना सारा एक साथ खा नहीं सकते, और खाएंगे भी तो इतना सारा शरीर एक साथ वो लोड हो जाता है एक टाइम पे, कि
0: पचा
1: इतना
0: नहीं
1: सारा
0: पाएगा।
1: पचा नहीं पाएगा, और इतना सारा पचा के एब्जॉर्ब भी हो गया तो वो बहुत सारा प्रोटीन एक टाइम पे आ जाता है, और फिर पूरे दिन हमारे पास कुछ नहीं होता है। तो हमेशा प्रोटीन डिवाइडेड डोसेज, मतलब पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके लेना है, एक साथ नहीं लेना है। अगर हम उसे पूरे दिन में हर एक खाने में थोड़ा थोड़ा करके बांट दे तो वो शरीर के लिए भी ज्यादा अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, कि हम उतना वो खा पाएंगे आसानी से। अगर हम एक छोटा सा उदाहरण ले, अगर मैं किसी को बोलूं कि एक ही टाइम पे आप आधा लीटर दूध और दो कटोरी दाल और साथ में दो अंडे खा लो, तो वो कितना मुश्किल हो
0: ओ
1: जाएगा।
0: हो, हैवी हो जाएगा।
1: बिल्कुल वो नहीं खा पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है चीज। तो उसकी जगह पे अगर हम पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके ले, जैसे सुबह और शाम हमने एक एक गिलास दूध ले लिया, दोपहर को और रात को खाने के साथ दाल ले ली, बीच में कभी या सुबह नाश्ते में अंडे ले लिए, तो वो पूरे दिन में तोड़ के प्रोटीन खाते हैं, तो वो शक पॉसिबल भी है, और वो तब शरीर ज्यादा आसानी से यूज कर पाएगा। शरीर को पचाने के लिए समय मिल जाता है, और उसे वो स्टोरेज में नहीं डालेगा, वो यूज करेगा, जिससे आप चुस्ती फुर्ती महसूस करेंगे। वरना होगा ये कि खा सब रहे हैं सही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा एक साथ खा रहे हैं और शरीर वो सारी चीजें स्टोरेज में डाल देता है, क्योंकि हमें उतनी सारी चीजों की एक साथ जरूरत नहीं होती, पूरे दिन में थोड़े थोड़े करके होती है।
0: जी। तो इसका मतलब ये है, प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए तो थोड़ा थोड़ा करके, विभाजित करके लिया जाना चाहिए।
1: और एक सिर्फ छोटी सी चीज ये की जा सकती है कि जब भी हम खाना खाएं, वो सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है, शाम का खाना है, या रात का खाना है, हर एक मेजर मील है जो खाने वाला टाइम है, वहां पे

0: भी प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कुछ कम करना चाहूँ रात के खाने से तो वो मेरा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता है। मतलब अगर हम चावल खा रहे हैं तो चावल ना खाइए, पर अगर मैं स्प्राउट्स शाम को खाती हूँ तो वो अच्छी चीज़ है खाने के लिए, या फिर एक रोटी और थोड़ी सी दाल खा ली। तो प्रोटीन हमेशा रहना चाहिए। आपको कम करना है तो उसे सिंपल कार्ब्स जो बोलते हैं हम, यानी चावल हो गया, या अगर मैं चार रोटी खा रही हूँ तो मैं दो रोटी खाऊंगी, अगर मैं भाकरी खा रही हूँ तो मैं एक या आधी खा लूंगी, वो हम कम करेंगे चलेगा। कुछ मीठा खा रहे हो तो वो अवॉइड कर लो शाम को, चलेगा, लेकिन प्रोटीन कभी नहीं कम करना है।
1: डॉक्टर साहब, प्रोटीन बीमारी में लेना चाहिए या नहीं, या किस तरह की बीमारी में, इसका डिटेल बताइए आप।
0: ज्यादातर देखा जाए तो जब हम बीमार होते हैं हमें प्रोटीन लेना चाहिए। अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमें ठीक होने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, दवाई अपना असर नहीं कर पाएगी, और हम जो तंदुरुस्त बनना है वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। तो प्रोटीन तो बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि कुछ ही कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे प्रोटीन हमें कम करना पड़ता है, और वो टाइम पे जब स्पेशलिस्ट होते हैं वो इंटरवीन करते हैं, वो बताते हैं कि भाई अब प्रोटीन कम कर देना है। पर 90% केसेस देखा जाए तो प्रोटीन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, और ये डेफिनेटली इंश्योर करना है कि अगर हम प्रोटीन अच्छे से खाएं और जितनी ज़रूरत है उतनी खाएं, तो आपका रिकवरी, आपका जो ठीक होने का समय है वो जल्द से जल्द होगा, टाइम कम लगेगा आपको ठीक होने में।
1: लेकिन उन बीमारियों के बारे में भी तो बताइए कि ये पर्टिकुलर बीमारी है तो फिलहाल प्रोटीन कम कर दें और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं।
0: जी, बीमारियां अगर देखी जाए तो दो मेजर कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे प्रोटीन कम करने की ज़रूरत पड़ती है। एक है जब लिवर इन्वॉल्व है। अब इसमें हमेशा प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करना ऐसा नहीं है, सिर्फ एक समय आएगा जब शरीर, क्योंकि वो जो टॉक्सिन्स है वो बाहर नहीं थ्रो कर पाता है, तो अमोनिया लेवल जो है शरीर में बढ़ जाता है। अमोनिया एक ऐसा टॉक्सिक प्रोडक्ट है जो बॉडी फेंक देता है बाहर, और उसमें लिवर की मदद लगती है। तो जब लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तब वो शरीर में जमा होने लगता है। जब ये अमोनिया लेवल्स बढ़ जाते हैं तब वो एक ही कंडीशन है जहाँ पे हमें प्रोटीन कम करना पड़ता है। ये जितना वो प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे उतना अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटीन बाहर फेंकने का जो फॉर्म है वो एक तरह से अमोनिया के थ्रू होता है, अमोनिया और यूरिया। तो ये जब बढ़ जाता है शरीर में तब प्रोटीन कम करना पड़ता है, तब इनफैक्ट हम बहुत कम प्रोटीन देते हैं। और दूसरा है, जैसे मैंने बताया, किडनी कंडीशंस, मतलब अक्यूट किडनी डिसीज या क्रॉनिक किडनी डिसीजेज जो होती है। अब इसमें जो क्रॉनिक किडनी डिसीज होती है उसमें एक स्टेज ऐसा होता है जब क्रिएटिन करके एक लेवल होता है शरीर में, वो बढ़ता है।
1: सीरम क्रिएटिनिन।
0: करेक्ट। तो जब ये बढ़ता है तब एक टाइम ऐसा होता है जब वो बढ़ रहा है पर पेशेंट डायलिसिस पे नहीं है, ये एक टाइम पीरियड है जहाँ पे प्रोटीन बहुत रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। पर अगेन, बहुत कम नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं, वो बंदे के शरीर के हिसाब से होता है, उनके वेट के हिसाब से होता है, तो वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे प्रोटीन कम रखना पड़ता है या मॉडरेट रखना पड़ता है, और उस पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो ना बढ़े ना कम हो।
1: अच्छा, प्रोटीन के फॉर्म चेंज कर सकते हैं, जैसे सॉलिडिटी से लेकर उसको लिक्विफाइड ढंग से ले लिया जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। प्रोटीन का बेस्ट बेनिफिट ये है कि हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आपकी ऐसी कोई कंडीशन है, अगर हम ऐसे बीमार है कि हम खाना ज्यादा नहीं खा पाते, तो उसको लिक्विड्स के फॉर्म में भी लिया जा सकता है।
1: जैसे दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से।
0: बिल्कुल, दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से। आप सूप में पनीर क्रश करके डाल सकते हो। आप दूध मिल्क शेक्स लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है। आप छाछ या लस्सी लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है। आप उसमें थोड़े और ड्राई फ्रूट्स मिला दीजिए तो वो और डेंस हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं जिससे प्रोटीन और डेंस बनाया जा सकता है।
1: जी, भैया बहुत सारे तरीके आपने बताए, लेकिन क्या होता है कि जब कार्यक्रम में बातचीत चलती है तो तरीकों में थोड़ा सा तालमेल होना चाहिए, थोड़ी बातचीत उसके बाद फिर संगीत। तो यहाँ मेरा इशारा समझ गई हैं डॉक्टर मीनल, और आप कौन सा गाना सुनवा रही हैं?
0: अब हम सुनते हैं जूली मूवी का दिल क्या करे गाना,
1: जब किसी को किसी से प्यार हो जाए।
0: यस।
1: बहुत ही अच्छी फिल्म थी, और गाना आपको सुनवाते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गीत आपने बहुत ही रोमांटिक सुनवाया और अपने दौर की बहुत ही रोमानी फिल्म रही थी जूली। आज के कार्यक्रम का जो विषय है, सब्जेक्ट है दोस्तों, वो है प्रोटीन और विटामिन का महत्व। और इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर मीनल शाह के साथ, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ। तो हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर मीनल कि विटामिन की बात अब की जाए, प्रोटीन की बात बहुत हो गई है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं?
1: विटामिन अगर हम देखे जाए तो दो मेजर प्रकार है, दो बड़े क्लासिफिकेशंस है। एक विटामिन वो जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स होता है,
0: मतलब जो

सुन रहे थे मुंबई केंद्र से प्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर।

0: का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
0: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
1: श्रोताओ, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
0: जी।
1: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
0: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
1: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
0: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
1: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
0: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
1: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
0: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
0: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
1: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव, अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
0: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी। आपको साधुवाद।
1: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
0: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है
1: जी। और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं।
0: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं
1: जी।
0: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
0: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
1: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
0: तो साथियों इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
1: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न, हमारा प्रश्न था, बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं।
0: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं लेकिन हम कहेंगे, विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
1: जी विमरेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओं अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है।
1: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू।
3: वी आर फाइन सर।
4: आई एम फाइन।
5: आई एम गुड सर।
2: फाइन।

0: Did you like the song?
1: Yes, sir, it was lovely.
0: So, children, here is something to do for you, okay?
1: Okay, sir.
0: Sit outside your home or go to any park and see the clouds go by. And tell your friends what you have observed.
1: Okay, sir, it will be so lovely.
2: It will be good.
0: Yes, and one thing more. Notice the colors of the clouds and you will find that the clouds also have different colors from time to time.
1: Yes, sir.
3: I have seen rainbow.
4: It has 7 colors.
0: So, children, whenever you see the clouds, they have different
1: shapes.
0: Yes, shapes. And they have different
1: colors.
0: Very nice.
5: Show of Clouds. You were just listening to this program. Program Coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical Coordinator, Buti Langlingdo. Child Singer, Angel. Child Artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound Recordist, Mayank Kumar. Assistance in Production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIET-NCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम. अगले कार्यक्रम का शीर्षक है तुलसी गौड़ा.
6: ये कार्यक्रम जंगल की एनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली महान आदिवासी पर्यावरण विशेषज्ञ तुलसी गौड़ा के जीवन, उनके पर्यावरण पर शोधों और वृक्षों को बचाने के उनके प्रेरणादायक अभियान की जानकारी देता है. विशेष रूप से मातृ वृक्षों पर उनकी खोज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है.
7: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहनी
8: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका.
9: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती.
10: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा.
7: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
11: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है.
12: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार. आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
13: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण.
12: यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है. देश भर में प्रसन्नता की लहर.
14: आज नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है. राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा.

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती है।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों में करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है। क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
3: अच्छा,
2: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
3: अरे ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
2: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
3: बिल्कुल होता है।
2: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए यदि

0: कि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से पढ़ते हैं।
1: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
0: है ना
1: जी।
0: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
1: तुलसी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
0: हाँ बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ देश बचाओ।
2: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
0: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
2: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
3: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
2: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
4: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
0: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
4: अच्छा।
0: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
4: अच्छा।
0: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
4: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
0: बिल्कुल सही सुना है आपने। मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
4: अच्छा।
0: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
4: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
0: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हों तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं, समझे
4: जी। ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
5: देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसान

0: पानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है, ठीक है ना?
1: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत धन्यवाद।
2: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
3: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुलसी गौड़ा और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नक्सलवाद का अंत होने के बाद भी हमें चैन से नहीं बैठना है। छत्तीसगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह का हवाला देते हुए कहा कि अगले 5 वर्षों के भीतर सभी प्रभावित गांवों को जीवंत आदिवासी समुदाय में बदला जाएगा, ताकि नक्सलवाद के कारण हुए नुकसान की पूरी भरपाई की जा सके। सरायकेला खरसावां में आज किसानों की समस्याओं और सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ भाजपा ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3200 रूपए प्रति क्विंटल करने और बकाया भुगतान की मांग को लेकर वीडियो के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। हजारीबाग के युवाओं की संस्था अर्थ एक प्रयास ने सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में चुप्पी तोड़ो अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत चूरचू प्रखंड के नगड़ी बिरहोर टोला में किशोरियों और महिलाओं

0: लोगों को मासिक धर्म और व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना में पुलिस ने सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अनुदीप सिंह ने बताया कि 5 बालिग आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि और 2 नाबालिगों को निरुद्ध किया गया है। देवघर में आज उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक हुई। उपायुक्त ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन और स्वास्थ्य सहायता योजना का लाभ 100% पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। पलामू के जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में आज उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने अवैध खनन पर सख्त निर्देश जारी किए हैं। अप्रैल माह में संयुक्त कार्रवाई के दौरान अवैध परिवहन में संलिप्त 50 से अधिक वाहन जब्त किए गए हैं और 32 लाख रूपये से अधिक का जुर्माना सुला गया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की खड़ी में शाम के 5:02।

तारे जमीन पर इस फिल्म से लिया हुआ गाना आपने सुना और अब सुनवा रहे हैं आपको प्रोग्राम का अगला गाना आस्था गिल, सचिन संघवी और जिगर की आवाजों में। फिल्म का नाम है स्त्री।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: चल रहा है कार्यक्रम फिल्म संगीत, और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। सुनवा रहे हैं प्रोग्राम का अगला गाना, अभिजीत और साथियों की आवाजें हैं फिल्म कृष्णा।

चलते चलते फिल्म से लिया हुआ ये गाना आपने सुना अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में। और अब सुनवा रहे हैं आपको प्रोग्राम का ये अगला गाना। फिल्म का नाम है बीवी नंबर 1।

बीवी नंबर वन फिल्म से लिया हुआ ये गाना आपने सुना अभिजीत भट्टाचार्य और अनुराधा श्रीराम की आवाजों में। और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: कार्यक्रम खेती बारी सुन रहे सभी ग्रामीण श्रोताओं को ममता की तरफ से प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमें उम्मीद है श्रोताओं की सभी हमारे कार्यक्रम से जुड़ गए होंगे अपने अपने सारे कामों को निपटाकर। तो बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे होंगे और अपने कामों को अच्छे से कर रहे होंगे, चाहे वो खेती बाड़ी के काम हो, उद्योग धंधा हो, चाहे किसी भी तरह के घर के कार्य भी हो। तो कार्यक्रम में आज हम लेके आए हैं पशुपालकों के लिए सरकार की लाभकारी योजना क्या क्या है, डेयरी व्यवसाय कैसे शुरू करें और साथ ही साथ फल बाग के लिए कैसे देखभाल करें ताकि वो अच्छी तरह और सुरक्षित रहे। साथ में जरूरी संदेश और गीत संगीत भी है। तो कार्यक्रम की शुरुआत में हम बातें करेंगे कि सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार और विशेषकर झारखंड जैसे क्षेत्रों में पशुपालक की आय बढ़ाने और पशुओं की संरक्षण के लिए कई लाभकारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इसमें पशु किसान क्रेडिट कार्ड, राष्ट्रीय गोकुल मिशन नस्ल सुधार के लिए, पशुधन बीमा योजना और मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना प्रमुख हैं। इसके साथ साथ पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण भी है, और जिससे कि सभी किसान भाई बहन जो भी पशु से संबंधित कार्य कर रहे हैं, चाहे वो खेतीबाड़ी के काम में लगाए हों या दूध उत्पादन के उद्योग धंधे में, इन सभी के लिए सरकार द्वारा बहुत सारी अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई जा रही हैं श्रोताओं, ताकि उन्हें किसी भी तरह की नुकसान नहीं हो, साथ में उससे फ़ायदा ही फ़ायदा हो। तो हम आगे भी बात करेंगे श्रोताओं। तो क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत में सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत, साथ में जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: तो पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो अभी हम लोगों ने सुना इतना प्यारा सा गीत और साथ में जरूरी संदेश भी, और हम बात कर रहे थे कि किस तरह से सरकार द्वारा पशुओं के संरक्षण के लिए और ग्रामीण श्रोताओं के लिए किस तरह से वो लाभ दिला रहे हैं। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि भाई डेयरी व्यवसाय अगर हमें शुरू करना है तो कैसे करें। तो डेयरी फार्म शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें ठोस प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है श्रोताओं। और शुरुआत में इससे हम दुधारू दो से पांच दुधारू पशुओं, जैसे उन्नत नस्ल का हो, गाय या भैंस कोई भी, और इसके बाद पशुओं के लिए हमें शेड, चारे की व्यवस्था और सरकारी लोन सब्सिडी के लिए आवेदन पत्र, ये सब देना बहुत ज़रूरी है ताकि हम किसी भी उद्योग धंधे को शुरुआत करें। तो ये सब मुख्य बिंदु है जिसमें हम लोग फोकस करें। और साथ में डेयरी फार्म खोलने के लिए पहले चरण में हमें ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है, और साथ में रिसर्च करना कि भाई और भी जो लोग कर रहे हैं डेयरी फार्म की तैयारी, तो वो किस तरह से कर रहे हैं। और उसके बाद हमें बजट भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि बजट अगर रहेगा सही ढंग से तभी हम लोग आगे कुछ और आगे बढ़ा सकते हैं काम। क्योंकि देखिए श्रोताओं, दुधारू पशु है, अगर हम लोग एक दो भी खरीदते हैं ये बहुत ही महंगा आता है, तो हमें बजट को ध्यान में हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि अगर सही बजट नहीं रहेगा तो हम लोग कार्य को शुरू नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ ही हमें स्थान, जिस जगह में हमें डेयरी फार्म का कार्य शुरू करना है वो जगह को भी देखना जरूरी है कि हमें कितना जगह में हमें रखना है डेयरी फार्म के लिए। और साथ में शेड का भी चयन करना है, क्योंकि अगर शेड अगर आप अच्छा नहीं दीजिएगा तो उसे जो भी पशु वहाँ रहेंगे उन्हें

0: गर्मी हो, बरसात हो, चाहे ठंड हो, उसमें परेशानी आ सकती है। और साथ में हमें चारा भी सही ढंग का देखना होगा, क्योंकि अगर चारा और पोषण ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा तो फिर वो डेयरी फार्म आगे नहीं चल सकता है, क्योंकि अगर पोषण अगर अच्छा से हम नहीं देंगे तो वो दूध उत्पादन भी कम करेगी। तो ये सारी चीज को हमें ध्यान में रखते हुए डेयरी फार्म की शुरुआत करनी चाहिए। और साथ ही साथ दूध उत्पादन जैसे पनीर है, दही है, इसे सीधे बाजार में बेचना हो या ब्रांड के लिए, हमें उस तरह का लाइसेंस भी प्राप्त करना होगा ताकि उसे हम मार्केट में, बाजार में बेच सकें। तो हम लोग आगे भी बात करेंगे श्रोताओं, तो आइए सुनते हैं एक जानकारी भरी भेंटवार्ता लेके आए हैं। केचुआ खाद के फायदे एवं बनाने की विधि, इसके बारे में बता रहे हैं बिरजू साहब, और इनसे बात कर रही हैं ममता कुमारी। श्रोताओं, हम एक सफल किसान जो केचुआ खाद को तैयार करते हैं, जिनका नाम है बिरजू साहब, तो आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। साथ ही नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो आप सबसे पहले बताइए कि ये जो केचुआ खाद की तैयारी आप कितने दिनों से कर रहे हैं?
1: केचुआ खाद की तैयारी लगभग वही एक वर्ष से कर रहे हैं, और केचुआ खाद रासायनिक खाद की अपेक्षा बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, जो स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है।
0: हाँ।
1: इसलिए हम चाहते हैं कि केचुआ खाद से हम लोग सब्जी का खेती करें, ताकि जो है सो सेहत सभी का अच्छा रहे।
0: बिल्कुल।
1: चूंकि जमीन जो है रासायनिक खाद से जमीन का जो उर्वरा है, जो जमीन का ये है, धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो अब जो है सो हम लोग चाहते हैं कि आने वाले पीढ़ी को कि अच्छा स्वस्थ मिले और जमीन बरकरार रहे, जमीन का उर्वरा शक्ति। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि केचुआ खाद पर विशेष रूप से किसानों को, खुद हम केचुआ खाद से खेती कर किसानों को भी सलाह देते हैं कि आप भी केचुआ खाद का यूज कीजिए, और काफी किसान धीरे धीरे केचुआ खाद
0: की ओर बढ़ रहे हैं
1: और उसके द्वारा खेती कर रहे हैं।
0: बिल्कुल। तो सबसे पहले बताइए कि जो केचुआ खाद की जो तैयारी आप करते हैं, तो शुरू में बताइए कि आप किस तरह से इसकी तैयारी करते हैं?
1: देखिए, ये पिंजरापुल गौशाला है, यहाँ पर लगभग 550-600 गाय हैं, जो यहाँ गोबर अवेलेबल मात्रा में आसानी तरीका से मिल जाता है। और इसके लिए जो है सो सबसे पहले हम इसका बेड बनाएं, जिसमें जो है आपका 2.5 फीट बाय 3.5 फीट का, और उसमें जो है सो गोबर जो है वो लगभग 20-25-30 दिन का पुराना गोबर होना चाहिए। और गोबर को जो है सो फिर पुराना 30 दिन पुराना करके बेड पर उसको लगाते हैं। और
0: ये जो बेड है वो कितना बड़ा होता है?
1: बेड आप जो है सो 3.5 फीट बाय 2.5 फीट का बेड ही आप लंबा जो भी कर सकते हैं।
0: हाँ।
1: लेकिन इसमें सुविधा होता है, केचुआ मतलब जब तैयार हो जाता है बेड, खाद तैयार हो जाता है, तो उसमें होता है कि निकालने में,
0: हाँ,
1: केचुआ को साइड करने में काफी सुविधा मिल जाता है, इसलिए इसको हम 3.5 फीट का ही रखे हैं। और लंबाई तो आपके ऊपर निर्भर करता है, जितना आपका है वैसे आप लंबाई कर सकते हैं, लेकिन इसको जो है सो उतना ही हम लोग करते हैं ताकि आसानी से खाद निकल जाए।
0: और फिर वो गोबर खाद को आप किस तरह से तैयार करते हैं केचुआ खाद बनाने के लिए?
1: वही पुराना गोबर हो गया 30 दिन का, तो उसको जो है सो बेड पर डालते हैं। एक सबसे पहले एक लेयर में, फर्स्ट लेयर जो रहता है, फर्स्ट लेयर में जो है सो मेरा बगान में जो वेस्टेज जो हो गया, जो फसल तैयार हो गया और उसको इधर उधर फेंक करके ना, वो बेड पर ही हम लोग डाल देते हैं। हाँ, पत्ता हो गया, सभी फसल का पत्ता जो वेस्टेज हो जा रहा है, उसके बाद फिर उस दूसरा लेयर में गोबर डाल देते हैं, वो 30 दिन जो पुराना गोबर है, उसके बाद फिर वेस्टेज जो है उसको डालते हैं, फिर गोबर डालते हैं तो वो 2.5 फीट का हो जाता है। और उसी में जो है सो एसिना पोटेट केचुआ होता है, प्रजाति केचुआ का, वो प्रजाति केचुआ को हम छोड़ते हैं उसमें।
0: तो एक बेड में कितना केचुआ डालते हैं?
1: वो बेड के अनुसार निर्भर करता है। जैसे मान लिया जाए कि मेरा 3.5 फीट by 2.5 फीट का बेड है और ये जो है सो 20 फीट चौड़ी है, तो उस स्थिति में लगभग 3 kg 4 kg केचुआ
0: एक बेड
1: में डालते हैं। फिर तब जो है सो केचुआ जो है वो धीरे धीरे धीरे धीरे इसमें जो है सो फिर हम लोग जो है सो जब बेड तैयार कर दिए उसके बाद ऊपर से जाली डाल देते हैं, और जाली नहीं रहा तो फिर बिचाली हो गया या तो फिर पुआल हो गया, पुआल डाल देते हैं। और उसमें जो है सो अभी ठंडा का मौसम है, तो ठंडा का मौसम में दो दिन तीन दिन पर झरना से पानी का स्प्रे करते हैं ताकि केचुआ को जो है सो मरे नहीं, सूख ना जाए, तो उसको झरना से स्प्रे करते हैं। और ये प्रोसेस जो है सो आपका एक बेड तैयार होने में, एक केचुआ खाद तैयार होने में लगभग 70 से 80 दिन लग जाता है
0: एक बेड तैयार होने में। तो अभी आप कितने बेड की तैयारी किए हुए हैं?
1: अभी हमारे पास लगभग 10 बेड है।
0: 10 बेड
1: है, 10 बेड में हम चालू किए हैं, जिसमें लगभग वही 20-22 टोली ट्रैक्टर की टोली से
0: गोबर डाले हुए हैं।
1: और जब 70, 80 या 75 दिन में केचुआ देखते हैं कि पूरा तैयार हो जाता है,
0: उसके बाद तो क्या करते हैं?
1: उसके बाद केचुआ ताजा गोबर रहता है तो ताजा गोबर केचुआ को बहुत पसंद होता है, तो वो जो है गोबर को रख देते हैं तो केचुआ जो है उसी की ओर जाता है, और धीरे धीरे धीरे केचुआ को बचाते हुए जो तैयार खाद हुआ है उसको निकालते हैं और छलनी से उसको छानते हैं, चाल देते हैं। चाल के उसके बाद जो दानेदार टाइप के हो जाता है
0: वो अलग हो जाता है
1: और तैयार कर रहे हैं तो इसमें तो
0: सिंचाई की जरूरत पड़ती है।
1: तो जब फिर केचुआ निकल, ये मेरा खाद तैयार होकर निकल गया, तो उसमें जो है सो पहले से हम लोग तैयारी करते हैं, आपका नीम का पत्ता हो गया, करंज का पत्ता हो गया, और खैनी का डांट हो गया, और गौमूत्र हो गया, ये 4 ड्रम रहता है। और यहाँ गौशाला है, गौशाला में भी काफी गाय हैं, तो गौमूत्र आसानी से मिल जाता है। नीम का भी पौधा है, करंज का भी पौधा है, और खैनी का डांट अलग अलग ड्रम में इसको स्टॉक करते हैं, इसमें पानी डालते हैं, इसको पूरा गला के जो है सो फिर इसको छनाई करते हैं, जो तैयार जो मेरा केचुआ हुआ छानने के बाद उसको उस पर स्प्रे कर देते हैं।
0: मतलब इसी को स्प्रे करते हैं सिंचाई के रूप में?
1: सिंचाई के नहीं, इसको स्प्रे उसमें नहीं करते हैं, बाद में करते हैं जो मेरा तैयार हो जाता है
0: तैयार खाद में।
1: और उससे ये होता है कि मेरा केचुआ खाद तैयार हुआ और ये एक तरह से मेडिसिन हो गया। और ये जब पौधा जब हम रोपाई करते हैं, उस समय पौधा रोपते समय केचुआ खाद डाल दिए और ये पौधा को रोपाई कर दिए, तो इससे होता है कि पौधा का ग्रोथ बहुत तेजी से हो जाता है
0: जी।
1: और ये मेडिसिन एक तरह से हो गया जो मेरा अपना तैयार किया हुआ है, तो इससे जो सो कीड़ा का भी प्रकोप नहीं लगता है, दीमक का भी प्रकोप नहीं लगता है। ये अलग से भी हम लोग तैयार करते हैं और किसानों को सलाह भी देते हैं कि इसको आप पौधा के ऊपर स्प्रे कीजिए, उससे जो होता है पौधा में किस तरह के कीड़ा मकोड़ा का प्रकोप नहीं लगता है और पौधा सुरक्षित रहता है। और अदर खाद जो रासायनिक खाद यूज करते हैं और ये खाद से तैयार फसल या फल को आप जब इसको पका खाइएगा तो एकदम डिफरेंस नजर आएगा,
0: उसमें अलग स्वाद ही
1: अलग स्वाद रहेगा।
0: और जैसा आप बताएं कि जब केचुआ खाद तैयार होता है तो एक बेड कितना केचुआ खाद तैयार हो जाता है?
1: एक बेड पर

0: लगभग वही लगभग 10 क्विंटल के लगभग में केचुआ खाद तैयार होता है
1: एक बेड से।
0: एक बेड से 10 क्विंटल
1: तो वो जैसे एक बेड से जब आप केचुआ खाद छान के निकाल लेते हैं तो फिर उसी को फिर से उसमें और भी खाद बना सकते हैं।
0: वो बेड पर बनाते हैं खाद लेकिन फिर जो है सो उसमें फिर जो है
1: अलग से केचुआ डालना पड़ता है।
0: वही केचुआ मेरा काम ये होता है। ये केचुआ जो है सो समझिए कि जमीन में जाने वाला केचुआ नहीं है, ये ऊपर ही रहता है केचुआ। और इस सिर्फ जो है सो सबसे बेस्ट केचुआ ये इसको माना गया है। और ये आपका गोबर में ही खाता है और इसका जो हम लोग इसको भी एक सुविधा बनाए हैं ताकि इसका जो पसीना है केचुआ खाद का जो है या इससे जो मल त्याग कर रहा है या जो भी हो वो जो वेस्टेज जो इसका निकलता है इसको एक हम लोग बाल्टी में छान देते हैं और ये भी जो है सो एक मेडिसिन का काम करता
1: जी
0: है।
1: जी जी वो ये किस तरह से मेडिसिन का काम करता है पौधा के लिए?
0: देखिए ये केचुआ जो एसिना पोटेट केचुआ है इसका पसीना में भी एक विटामिन है
1: जी
0: जो इसको भी जो है सो हम जो मल त्याग करता है इसका पसीना जो निकलता है वो जी वो पौधा के ऊपर जाने पर पौधे के ऊपर स्प्रे करते हैं तो काफी लाभदायक होता है पौधों के लिए
1: जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब कोई भी खाद के साथ जो भी आप तैयार कर रहे हैं वो कोई भी चीज बेकार नहीं जा रहा है।
0: बेकार नहीं जा रहा है जो जैसे मान लीजिए कि मेरा वेस्टेज है अभी जो फसल लगा हुआ है ये फसल जो हम उगा रहे हैं इसको जो उगाने के बाद इसका जो पत्ता वेस्टेज हो जाता है वो पत्ता मेरा इस्तेमाल में हो जाता है केचुआ खाद में केचुआ खाने ये में इस्तेमाल हो जाता है और इधर उधर गंदगी भी नहीं होता
1: जी, जी। जो केचुआ खाद एक बार में आप कितने बार उसमें खाद तैयार कर लेते हैं एक बार के केचुआ में?
0: वो तो वो अपना जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ाता है
1: जी।
0: तो हम लोग तो यहाँ पर केचुआ भी हम लोग कोई किसान अगर मांगता है कि हमको दीजिए हम खुद तैयार करेंगे तो हम लोग सलाह भी देते हैं कि आप ऐसे इस टाइप के हम लोग बताते भी हैं कि आप जैसे हम तैयार कर रहे हैं वो सारा विधि को बताते हैं कि आप ऐसे कीजिए और तैयार कीजिए और आप इसी के आधार पर खेती कीजिए ताकि रासायनिक खाद धीरे धीरे कम कर दूरी बना के रखिए और इसका जो स्वाद आपका रहेगा फल का वो स्वाद बहुत सुंदर रहेगा अच्छा रहेगा
1: जी। तो आप केचुआ खाद खुद से तैयार भी केचुआ खुद तैयार भी करते हैं?
0: हाँ केचुआ तैयार यानी कि वो उसी में केचुआ का जनसंख्या इतना तेजी से इसका बढ़ता है कि वो खुद ब खुद तैयार होता है
1: जी। ये जो खाद तैयार होता है तो खाद को आप किसान लेके भी जाते हैं या आप मतलब यहीं से बिकता है?
0: नहीं किसान यहाँ खुद आते हैं और किसान हाँ किसान यहाँ से लेके भी जाते हैं
1: खाद का पैकेट।
0: खाद का पैकेट जो 50 केजी 25 केजी और 5 केजी और 1 केजी में पैकिंग हम लोग कर रहे हैं वो फिर एक बार किसान लेके जाता है फिर दोबारा डिमांड करता है
1: जी।
0: कि हमको हमको ये इतना चाहिए खाद
1: जी।
0: वो डिमांड करके रखता है तो कभी कभी बरसात में थोड़ा दिक्कत हो जाता है उस स्थिति में हम लोग अभी के समय में तैयार करके रखते हैं और बरसात में धीरे धीरे कम हो जाता है क्योंकि बारिश की वजह से
1: वो खराब
0: हो जाता है स्टॉकिंग के अनुसार जो है सो तैयार कर देते हैं ताकि बरसात में भी किसान अपना यूज कर ले
1: जी।
0: पैकेट 50 केजी का 350 रुपया
1: जी
0: हम लोग ये करते हैं।
1: और ये पैकिंग वगैरह सब यही होता है?
0: सब पैकिंग यही होता है सब तैयारी यही होता है
1: जी।
0: किसान ले जाते हैं खुद अपने से या अगर ऑर्डर कर दिए तो परिवहन के भिजवा भी देते हैं।
1: और ये सबसे अच्छी बात है कि आप यहाँ गौशाला नजदीक होने के कारण आपको गोबर जो केचुआ खाद के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो आपको आसानी से मिल जाता है
0: और साथ में गौमूत्र भी मिल जाती है। गौमूत्र बहुत अच्छी चीज है जो फसल के लिए लाभदायक चीज है।
1: तो इसका स्प्रे भी आप
0: स्प्रे भी छन्नी से छान के उसको जो है सो तैयार केचुआ खाद में हम लोग डालते हैं जो मेडिसिन का काम करता है
1: जी, जी।
0: कुछ किसान अगर अलग
1: कीटनाशक के रूप में

0: में काम करता है। कुछ किसान अगर अलग से हमको हम लोग को मांगती है मांगते हैं तो वो भी अवेलेबल करके दे देते, ठीक है लीजिए इसको यूज कीजिए।
1: जी जी, तो ये तो आप बहुत ही अच्छी तरह से केचुआ खाद की तैयारी करके तरह से खेती करके और भी किसान सब बढ़िया एकदम स्वास्थ्य वर्धक फसल और साग सब्जी का की उपज कर रहे हैं। तो बिरजू जी, आपने इतनी अच्छी तरह से बातें बताई और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो अभी आप लोगों ने सुना केचुआ खाद के फायदे और इसे बनाने की विधि, और ये बता रहे थे बिरजू साहब और इनसे बातचीत कर रही थी ममता कुमारी। तो इसी जानकारी के साथ खेतीबाड़ी कार्यक्रम समाप्त होने को आया है। तो खेतीबाड़ी कार्यक्रम से ममता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बारी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और बकाया वेतनमान का लाभ नहीं मिलने पर राज्य सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने निर्देश दिया है कि आगामी 22 जून तक पेंशन और पांचवें से सातवें वेतनमान का बकाया भुगतान सुनिश्चित किया जाए। ऐसा न होने पर उच्च शिक्षा निदेशक का वेतन रोक दिया जाएगा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत आज बाबा नगरी देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा वैद्यनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। देवघर आगमन पर जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे ने उनका स्वागत किया। भाजपा नेत्री सीता सोरेन ने आज दुमका के फूलोझानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल परिसर में पसरी गंदगी और कुव्यवस्था को देखकर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को तुरंत बदलने की मांग की है। गढ़वा में जिला प्रशासन की ओर से आज से सप्ताह भर चलने वाले जनजातीय गरिमा उत्सव और जनभागीदारी अभियान की शुरुआत हो गई है। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने समाहरणालय में कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि सबसे दूर सबसे पहले नीति के तहत समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। खूंटी के बरसा कॉलेज में आज टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा जिला टॉपरों को सम्मानित किया गया। फाउंडेशन ने सीएसआर के तहत कॉलेज को करीब 60 लाख रुपए के डेस्क बेंच भी उपलब्ध कराए। कार्यक्रम में सांसद कालीचरण मुंडा और टाटा स्टील के उपाध्यक्ष डीबी सुंदरम मौजूद रहे। हजारीबाग के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त हेमंत सत्ती ने आज कोलघट्टी स्थित ईवीएम वेयरहाउस का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी और रखरखाव की व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम अंगना।

नमस्कार बहनों, आकाशवाणी के प्रिय कार्यक्रम अंगना में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त अनामिका। उम्मीद है हमारी सभी सखियां स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी। बहनों, आज हम बात करेंगे विश्व एड्स जागरूकता और टीकाकरण के महत्व की। स्वस्थ जीवन हर व्यक्ति का अधिकार है और एक स्वस्थ समाज की शुरुआत होती है सही जानकारी और जागरूकता से। मैंने आज विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि कई गंभीर बीमारियों से बचाव संभव हो चुका है। टीकाकरण इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जन्म से लेकर बचपन तक बच्चों को दिए जाने वाले टीके पोलियो, खसरा, टीबी, टेटनस और कई अन्य खतरनाक बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। समय समय पर लगाया गया टीका न केवल बच्चे को स्वस्थ रखता है बल्कि पूरे परिवार और समाज को भी सुरक्षित बनाता है। कई बार जानकारी की कमी या लापरवाही के कारण लोग टीकाकरण को महत्व नहीं देते, लेकिन हमें यह समझना होगा कि बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान का लाभ हर परिवार को उठाना चाहिए। अब बात करते हैं एचआईवी और एड्स की। एचआईवी एक ऐसा संक्रमण है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि एचआईवी छूने, साथ बैठने, खाना खाने या बातचीत करने से नहीं फैलता है। ये केवल संक्रमित रक्त, असुरक्षित सुई या असुरक्षित शारीरिक संबंधों के कारण फैल सकता है। आज भी समाज में एचआईवी को लेकर कई भ्रांतियां मौजूद हैं, जिनके कारण संक्रमित लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। हमें समझना होगा कि ऐसे लोगों को तिरस्कार नहीं बल्कि सहयोग और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। सही समय पर जांच और इलाज से एचआईवी संक्रमित व्यक्ति भी सामान्य जीवन जी सकता है। मैनो विश्व एड्स टीकाकरण दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है। ये दिन मुख्य रूप से एचआईवी की रोकथाम के लिए एक प्रभावी टीका विकसित करने के महत्व को उजागर करने और वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य कर्मियों और स्वयं सेवकों के प्रयासों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। ये दिन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा 18 मई 1997 को मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में दिए गए एक भाषण से प्रेरित है। उन्होंने वैज्ञानिक समुदाय को एक प्रभावी निवारक एचआईवी टीका खोजने की चुनौती दी थी। इन प्रयासों और भाषण की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए पहला विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई 1998 को मनाया गया था। वैसे तो एचआईवी संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए एंटी वेट्रोवायरल जैसी चिकित्सा उपलब्ध है, फिर भी एक सुरक्षित और प्रभावी टीका खोजना इस महामारी को पूरी तरह समाप्त करने के लिए आवश्यक है। मैंने जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है। यदि हम सही जानकारी अपनाएं, समय पर टीकाकरण करवाएं और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों का पालन करें, तो हम अपने परिवार और समाज को सुरक्षित बना सकते हैं। तो आइए आज हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनेंगे, टीकाकरण को अपनाएंगे और एचआईवी से जुड़ी भ्रांतियों को दूर भगाएंगे। इसी सकारात्मक संदेश के साथ अब समय हो चला है प्रोग्राम में एक मधुर गीत का। आप सुनते रहिए अंगना।

0: पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: मनु, आज हमने कार्यक्रम में बात किया है स्वास्थ्य और टीकाकरण पर, तो और आगे बढ़ते हुए एक पुनर्प्रसारित ये बातचीत आपको सुना रहे हैं महिलाओं का स्वास्थ्य और उनके खान पान विषय पर। राधा मिश्रा से बातचीत कर रही हैं अंजलि सिन्हा।
6: बहनों, आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं आहार विशेषज्ञ राधा मिश्रा जी, जो महिलाओं के संतुलित आहार के बारे में विस्तार से बताएंगी। तो राधा जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार।
7: नमस्कार।
6: तो सबसे पहले आप बताइए कि संतुलित आहार किसे कहते हैं?
7: संतुलित आहार, जैसे आजकल के टाइम पे लोग समझते हैं कि जैसे हम लोगों ने खाना खा लिया या फिर सिर्फ एक टाइम का खाना अच्छे से खाया उसके बाद छोड़ दिया, सिर्फ दाल चावल में समझते हैं कि हमारा वो संतुलित आहार है। बट आजकल के टाइम पे संतुलित आहार में आपको अगर सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या सुबह का नाश्ता जो ले रहे उसमें आपको हर सोर्सेस शामिल होने चाहिए। जैसे दाल हो गए आपका, कार्बोहाइड्रेट से चावल, या फिर जैसे सुबह के नाश्ते में रोटी, पोहा ऐसा करके ऐड कर सकते, फल होने चाहिए, दूध होने चाहिए। ये सारे स्रोत अगर आप एक खाने में, एक टाइम के खाने पे ऐड करते तो इसको हम संतुलित आहार कहेंगे।
6: अच्छा, एक चीज और पूछना चाहेंगे कि ये जो संतुलित आहार है वो महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग होती है?
7: नहीं, वैसे तो ये संतुलित आहार महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग नहीं होते, सबके लिए सेम ही होता है। बट जैसे महिलाओं के हर स्टेजेस में या हर स्तर पे कहेंगे हम काफी बदलाव आते हैं, तो वहां जाके थोड़ा महिलाओं का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए उनको अपने खान पान पे पुरुषों के मुताबिक। ऐसे तो जनरली सबको, या फिर हम कहेंगे कि सामान्य तौर पे सबके लिए एक ही होते हैं। जैसे लोगों को अच्छी मात्रा में सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन या डेयरी के स्रोत अपने दैनिक आहार में शामिल करना चाहिए। संतृप्त वसा या ट्रांस वसा, अत्यधिक सोडियम या अत्यधिक चीनी के उपयोग से बचना चाहिए हमें।
6: और जैसे होता क्या है कि महिलाओं के जीवन में कुछ बदलाव भी आते हैं समय समय पे, तो उस समय खान पान पर क्या ध्यान देना चाहिए?
7: समय समय पे बदलाव आते हैं, जैसे मासिक धर्म हो गया, गर्भ अवस्था हो गई, या फिर मासिक धर्म की समाप्ति पे। अगर हम मासिक धर्म की बात करें तो वहां पे क्या होता है कि आयरन का बहुत ज्यादा लॉस होता है, तो उस टाइम उनको आयरन के स्रोत पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब जब गर्भ अवस्था की बात आती है तो बच्चे को पोषण माँ के खान पान से ही मिलता है, तो माँ को ऐसा करना चाहिए कि वो अपना खाना जो है एकदम संतुलित आहार, जैसे हर तरह के फल, सब्जियां, साबुत अनाज उनको अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। बच्चों को कैल्शियम चाहिए, उनके दांतों और हड्डियों के लिए जरूरी है। विटामिन डी चाहिए होता है जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, या फिर बच्चों को जब वो माँ के गर्भ में रहते हैं तो उस समय उनको एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नाम की डेफिशिएंसी हो सकती है, उससे भी वो बचाव करता है।
6: तो अभी जैसे आपने कहा कि मासिक धर्म शुरू होने पर किशोरियों को अपने खान पान पे ध्यान देना चाहिए, आयरन लेनी चाहिए, तो आयरन के क्या क्या स्रोत हैं वो हमारी बहनों को बताइए।
7: आयरन के स्रोत में आप हरी सब्जियां जैसे अमरंथ वगैरह, पालक हो गए या खजूर हो गया, या फिर जैसे आप तिल के जो बीज होते हैं उनको अपने खान पान में शामिल कर सकते, गुड़ ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, और अंडे, खजूर, आजकल तो ब्रेड वगैरह भी काफी आयरन से फोर्टिफाइड होकर हमको मिलते हैं।
6: और ये जो हम लोग खान पान लेते हैं इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत फायदेमंद है, बहुत अच्छा है, तो उसे भी हम उचित मात्रा में लेंगे तो ही फायदा होगा, तो उसकी मात्रा के बारे में आप बताइए।
7: मात्रा की अगर बात करें तो अगर हम अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, अलग अलग पोषक तत्वों की अलग अलग मात्राएं होती हैं, तो अगर हम जैसे कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम हमारे बॉडी में बहुत हाई कंसंट्रेशन बहुत अधिक तौर पे पाया जाता है और उनका काम भी बहुत ज्यादा ही होता है हमारे बॉडी में। जैसे कैल्शियम जो है वो मस्कुलर फंक्शन मेंटेन करता है, दांतों एवं हड्डियों को मजबूत बनाता है और उनके फॉर्मेशन पे भी मदद करता है। और साथ ही साथ जब महिलाओं का जब मासिक धर्म की समाप्ति होती है उसके 50% जो है कैल्शियम लॉस शुरू हो जाता है, तो हमको क्या चाहिए होता है कि वो महिलाएं अपने 30 वर्ष की आयु से ही कैल्शियम इंटेक को बढ़ा लेना चाहिए। कैल्शियम इंटेक आपका जो रहना चाहिए वो अगर आप नॉर्मल हैं तो आपको 850 mg कैल्शियम पर डे लेना चाहिए। अगर कोई महिला अगर गर्भावस्था में है या बच्चे को फीड करवा रही है तो उनको 1000 से 1200 mg कैल्शियम हर दिन लेना चाहिए। अच्छा। अगर उनके स्रोतों की अगर हम बात करेंगे तो ये हमें दूध, चीज, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे हो गई भिंडी, पालक और ड्रमस्टिक जो हमें सहजन कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, आमंड्स वगैरह से मिलता है। फिर अगर हम विटामिन डी की बात करेंगे तो ये क्या करता है कि हमारे वैसे ही सेम कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, बोन के फॉर्मेशन में मदद करता है, क्योंकि एक टाइम के आते आते बोन जो होते हैं वो काफी सॉफ्ट हो जाते हैं, काफी टेंडर हो जाते हैं। तो इस वजह से विटामिन डी भी हमको लेना चाहिए, अपने डाइट में ऐड करना चाहिए। वैसे तो विटामिन डी हमको सूरज से मिल जाता है, सूरज की किरणों से मिल जाता है, बट उतना और आजकल तो काफी पॉल्यूशन वगैरह है जिसकी वजह से हम हमेशा नहीं रह सकते, या फिर तो इसी के लिए हमको अपने खाने में कम से कम 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे विटामिन डी लेना चाहिए, जिसके स्रोत है जो ऑयली फिश हो गए और अंडा और फोर्टिफाइड मिल्क, फिश लिवर ऑयल और मछलियों में जैसे ट्यूना, सार्डिन्स, ये सब मछलियां हम अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है महिलाओं के लिए आयरन, क्योंकि महिलाएं ना अपने खाने पे ध्यान नहीं देती और ऐसे कुछ भी खा लेती हैं खाना, तो हमको चाहिए कि महिलाएं का आयरन देख भी नहीं पाती, उनको पता भी नहीं चलता उनके खाने से आयरन कब चला जाता है। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है हमको कि आयरन अच्छी मात्रा मिले, और आयरन को अच्छी मात्रा मिले और साथ ही हमको विटामिन सी के सोर्सेज भी अपने डाइट में ऐड करने चाहिए ताकि आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाए, जिसके लिए हम लोग तिल के सीड्स, जागरी, हरी पत्तेदार सब्जियां, मीट, खजूर, अंडा, और पहले मैंने बताया आजकल सब कुछ फोर्टिफाइड होके भी मिलता है तो बाजार से हम वो भी ले सकते हैं।
6: बिल्कुल
7: हाँ। फिर हम बात कर सकते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी आजकल जैसे तो कोरोना टाइम है तो विटामिन सी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए इसको हमको डाइट में ऐड करना ही चाहिए ताकि ये जो इन्फेक्शंस हमको बीमार करते हैं उनसे मदद करने में ये हेल्प करता है। साथ ही एक प्रोटीन होता है कॉलेजन होता है, उसको भी विटामिन सी बनाने में मदद करता है। नॉर्मली लोगों को अगर कोई नॉर्मल है तो उनको 57 mg पर डे का विटामिन सी लेना चाहिए, अगर कोई महिला गर्भावस्था में है या फिर कोई नर्सिंग मदर है तो उसको 60-80 mg विटामिन सी हर दिन अपने डाइट में लेना चाहिए। उसके सोर्सेज होते हैं जैसे आंवला हो गया, अमरूद हो गया, संतरा हो गया, टमाटर हो गया। और जैसे अगर हम प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन का फिर बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, वो हमारे स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, सेल्स के निर्माण में मदद करता है, क्योंकि हमारे बॉडी में हर सेल्स बनते हैं और उनका रिपेयर होता है और वो स्क्रीप भी हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें जरूरी है कि हम अच्छे से अच्छे मात्रा में प्रोटीन का अपने डाइट में शामिल करें।
6: बिल्कुल।
7: तो हमको 55 mg प्रोटीन हर दिन लेना चाहिए और 55 g प्रोटीन अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको 50-80 mg हर दिन लेना चाहिए।
6: बिल्कुल सही है। और उसके बाद है कभी कभी होता क्या है कि कुपोषित हो जाते हैं महिलाएं, है ना, तो उस कुपोषण से बचने के लिए हाँ। वो क्या करें कि वो अच्छे रहे, स्वस्थ रहे।
7: अगर महिला जैसे कुपोषित हो जाती है क्योंकि वो जस्ट बिकॉज खाना पे ध्यान नहीं दे पाती है तो उनको चाहिए कि पहले तो जो मैंने न्यूट्रिएंट्स के जितना बताया उनको उनके डाइट में शामिल करना चाहिए, और उनको कम से कम अपना अगर अगर पूरे दिनचर्या की बात करेंगे हम उनकी तो उनको कम से कम

0: मदद करता है। तो इसके लिए हम हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां, ड्राई बीन्स, साबुत अनाज या फिर जैसे ब्रोकली हो गया, इन सबको अपने खान पान में ऐड कर सकते हैं। और इसका नॉर्मल मात्रा में लेना चाहिए। अगर कोई नॉर्मल महिला है तो इनको 300 लेना चाहिए, और अगर प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर है तो इनको 500 mg पर डे लेना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो आप तो सभी के बारे में बता दें कि कैसे शारीरिक बदलाव आते हैं, उस समय क्या खाना चाहिए, गर्भावस्था में क्या खाना चाहिए, मासिक धर्म जब समाप्त होती है उस समय क्या खाना चाहिए। शुरू के बारे में तो बताएं, लेकिन जब मासिक धर्म समाप्त होने लगता है तो उस समय माने महिलाओं को क्या ध्यान देना चाहिए?
0: महिलाओं को देखना चाहिए, क्योंकि वहां पे बोन डेंसिटी भी घटने लगती है और ऑस्टियोपोरोसिस के भी चांसेस घट जाते हैं। तो महिलाओं को चाहिए कि फोलिक एसिड, कैल्शियम और प्रोटीन वगैरह, बेसिकली कैल्शियम का रिसाव होने लग जाता है हड्डियों से, तो उनको चाहिए कि कैल्शियम के स्रोत अच्छे से अच्छे मात्रा में अपने डाइट में शामिल करें।
1: बिल्कुल, तो आप तो सभी चीज बता दी, लेकिन इसके बाद भी आप हमारी महिलाओं को क्या बताना चाहेंगी?
0: मैं ये बताना चाहूंगी कि महिलाएं घर की धरोहर होती है, उनके स्वास्थ्य पे जो है पूरे घर का स्वास्थ्य निर्भर करता है। फिर अगर वो खुद ही बीमार रहेंगी तो पूरे घर को फिर वो कैसे देखभाल करेंगी। तो इस वजह से चाहिए कि वो अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखे और पूरे घर के स्वास्थ्य का ध्यान रखे।
1: तो राधा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और संतुलित आहार को लेकर कि महिलाएं संतुलित आहार कैसे लें और हर स्थिति में, हर स्टेज में वो स्वस्थ रहें, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

लावारिस फिल्म का ये गाना आपने सुना अलका याग्निक की आवाज में। और अब कार्यक्रम फिल्म संगीत में अगला गाना सुनिए। अलीशा चिनाय, शंकर महादेवन, जावेद अली और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है बंटी और बबली।

0: कारे कारे नैना।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

अभिजीत भट्टाचार्य, अनु मलिक और साथियों की आवाज़ों में ये गाना आपने सुना इश्क फिल्म से, और एक और गाना आपको सुनवा रहे हैं राजा फिल्म का। ये गाना है आवाज़ अलका याग्निक की।

और इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:55 और 48 सेकेंड्स। थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल प्रसारण होगा हमारे रांची केंद्र से।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो।
3: क्या हाल है? क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन।
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
3: वो कहाँ है?
4: मिठाई।
5: आरबीआई कहता है
6: तरों से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्री,
8: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
9: दिमाग चार्ज कर रखना।
10: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
9: देखा
8: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
10: अब क्या करोगे?
8: तेरी वाइफाई है ना?
9: बुद्धू सुधर जा।
10: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
8: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
10: आरबीआई कहता है
6: तरों से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में 316 नव नियुक्त सहायक आचार्यों और 17 महिला पर्यवेक्षिकाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, दो चार महीनों में होंगी हजारों बहालियां। जेटेट भाषा विवाद पर गठित उच्च स्तरीय कमेटी की रांची में पहली बैठक संपन्न। शिक्षा विभाग से मांगा गया क्षेत्रीय भाषाओं का विस्तृत डेटा। उच्च शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज। सेवानिवृत्त कर्मियों को 22 जून तक बकाया भुगतान न होने पर निदेशक का वेतन रोकने का आदेश। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में दोपहर बाद हुई तेज बारिश। मौसम विभाग ने आगामी 21 मई तक जारी किया येलो और ऑरेंज अलर्ट। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमकी रांची की राशि सिन्हा। कोलंबो में आयोजित एशिया केक ऑस्कर 2026 में जीता प्रतिष्ठित पुरस्कार। और अब समाचार विस्तार से। रांची के प्रोजेक्ट भवन में आज आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 316 सहायक आचार्यों और 17 महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नवनियुक्त शिक्षक सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि राज्य के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समारोह में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और श्रम मंत्री संजय यादव भी मौजूद रहे।
1: अभी और भी तैयारी हो रही है, लगता है कि 2-3-4 महीने में और भी हजारों लोगों की नियुक्तियां होंगी। ये नियुक्तियां सिर्फ हम तनख्वाह पाए इसके लिए नहीं है, हम नियुक्त इसके लिए भी कर रहे हैं, इस अपेक्षा के साथ भी कर रहे हैं कि राज्य का समग्र विकास हो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द

0: रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। ओस्लो में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाला 32वां अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक सम्मान है, जो विश्व मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नक्सलवाद का अंत होने के बाद भी हमें चैन से नहीं बैठना है। छत्तीसगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह का हवाला देते हुए कहा कि अगले 5 वर्षों के भीतर सभी प्रभावित गांवों को जीवंत आदिवासी समुदायों में बदला जाएगा, ताकि नक्सलवाद के कारण हुए नुकसान की पूरी भरपाई की जा सके।
1: सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आग्रह रखा है कि नक्सलवाद समाप्त हो गया ऐसा मानकर चैन की नींद नहीं सोना। नक्सलवाद तभी समाप्त माना जाएगा जब नक्सलवाद ने जो नुकसान किया है वो हम 5 साल के अंदर भरपाई कर इस सभी गांवों को हमारे ऊर्जावान आदिवासी गांवों में बदले।
0: जेटेट भाषा विवाद सुलझाने के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी की आज रांची में पहली बैठक संपन्न हुई। मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के बाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद और दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग से नई नियमावली में सुधार के लिए विस्तृत रिपोर्ट तथा तथ्य तलब किए गए हैं।
2: कई तथ्यों कई साक्ष्यों के आधार पर आगे निर्णय लेना है। अभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि तथ्यों और साक्ष्यों को जुटान करें, तत्पश्चात उस पर निर्णय किया जाएगा। समिति अधिकृत किया है आदरणीय चेयरमैन साहब को। इसके जल्द ही हमको लगता है कि फिर फ्राइडे या सैटरडे को बैठक होगा, उसका फिर आगे की रिपोर्ट।
0: भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को बाहर किए जाने से उपजे इस विवाद पर अगली बैठक अब 22 मई को होगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कल भुवनेश्वर में पूर्वी क्षेत्रीय भाषा कृषि सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय मजबूत करना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन के दौरान विभिन्न योजनाओं की समीक्षा और कृषि क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। झारखंड हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और बकाया वेतनमान का लाभ नहीं मिलने पर राज्य सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने निर्देश दिया है कि आगामी 22 जून तक पेंशन और 5वें से 7वें वेतनमान का बकाया भुगतान सुनिश्चित किया जाए। ऐसा न होने पर उच्च शिक्षा निदेशक का वेतन रोक दिया जाएगा। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत आगामी 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि राज्य में अब तक 73% मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि शेष मतदाताओं की सूची 23 मई से सभी मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित की जाएगी, जहां लोग बीएलओ से संपर्क कर मैपिंग करा सकेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के बीच देश में कच्चे तेल और एलपीजी के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश की रिफाइनरियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं और ईंधन की कोई कमी नहीं है।
3: हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज हैं, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है, लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है।
0: गुड्डा जिले को आज स्वच्छ ईंधन की बड़ी सौगात मिली है। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने गोड्डा भागलपुर मुख्य मार्ग पर सीएनजी पीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का लाइव संदेश भी सुनाया गया। सांसद ने कहा कि सीएनजी से प्रदूषण घटेगा और स्थानीय वाहन चालकों को किफायती ईंधन का विकल्प मिलेगा। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में महिला कैदी के साथ यौन शोषण मामले पर भाजपा ने राज्य सरकार को घेरा है। रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज प्रवक्ता अजय शाह ने प्रेस वार्ता कर दावा किया है कि जेल में बंद एक महिला कैदी का कथित यौन शोषण के बाद गुप्त रूप से गर्भपात कराया गया और सबूत मिटाने की कोशिश की गई।
4: रांची के बिरसा मुंडा जेल में एक महिला कैदी, उसके साथ कई महीनों में पहले यौन शोषण हुआ। यौन शोषण के बाद जब वो प्रेग्नेंट हो गई, केवल जेल सुपरिटेंडेंट कुमार चंद्रशेखर जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि जेल आईजी सुदर्शन मंडल, जिनकी जानकारी में आने के बाद कार्रवाई करने की बजाय उन्होंने इस पूरे मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया, फाइलों को रफा दफा किया, सबूत को मिटाया।
0: रांची जेल यौन शोषण मामले में कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा इस मामले में मुख्यमंत्री को पत्र लिखने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि महिला कैदी की मेडिकल जांच में गर्भावस्था की रिपोर्ट नकारात्मक आई है।
5: बिना कोई जानकारी बाबूलाल जी पत्र लिख देते हैं, पोस्ट कर देते हैं एक्स पे। जानकारी रखा कीजिए, आप इस राज्य के प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप जो बोलते हैं वो राज्य की जनता सुनती है। इस मामले में निगेटिव रिपोर्ट आई है और जब मामले में निगेटिव रिपोर्ट आई है तो उसके बाद आप हाथी पीट रहे हैं।
0: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने पलमा गुमला खंड के अंजनधाम टोल प्लाजा परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। क्षेत्रीय अधिकारी एमटी अतरदे ने कल्पतरु का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास का संदेश दिया। एनएचएआई ने कहा कि ग्रीन हाईवे अवधारणा के तहत राजमार्गों के किनारे हरित आवरण बढ़ाने के लिए निरंतर वृक्षारोपण किया जा रहा है। और अब मौसम का हाल। राज्य में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आज रांची, खूंटी और गुमला सहित दक्षिणी व मध्य भागों में 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बारिश और वज्रपात की आशंका है। मौसम विभाग ने आगामी 21 मई तक राज्य के अधिकांश हिस्सों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। रांची की राशि सिन्हा ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित चौथे एशिया केक ऑस्कर वर्ल्ड एडिशन 2026 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर देश का मान बढ़ाया है। उन्हें व्हिप्ड क्रीम वेडिंग केक श्रेणी में उत्कृष्ट कला और क्रिएटिविटी के लिए ट्रॉफी और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के चेहरे वाली कस्टमाइज केक बनाने के बाद वे देश विदेश में सुर्खियों में आई थीं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में 316 नवनियुक्त सहायक आचार्यों और 17 महिला पर्यवेक्षिकाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा दो चार महीनों में होंगी हजारों बहालियां। जेटेट भाषा विवाद पर गठित उच्च स्तरीय कमेटी की रांची में पहली बैठक संपन्न। शिक्षा विभाग से मांगा गया क्षेत्रीय भाषाओं का विस्तृत डेटा। उच्च शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज, सेवानिवृत्त कर्मियों को 22 जून तक बकाया भुगतान न होने पर निदेशक का वेतन रोकने का आदेश। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में दोपहर बाद हुई तेज बारिश। मौसम विभाग ने आगामी 21 मई तक जारी किया येलो और ऑरेंज अलर्ट। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमकी रांची की राशि सिन्हा, कोलंबो में आयोजित एशिया केक ऑस्कर 2026 में जीता प्रतिष्ठित पुरस्कार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे जामताड़ा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे जामताड़ा संवाददाता।
1: जामताड़ा जिले में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का सशक्त अनुसरण, स्थल निरीक्षण एवं जांच वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में किया जा रहा है। इस दौरान जमीनी स्तर पर योजनाओं की स्थिति, प्रगति, खामियां, समन्वय का अभाव आदि बिंदुओं का आकलन कर रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। यह अभियान 16 मई से 24 अक्टूबर तक प्रत्येक शनिवार को चलाया जाएगा। इस संबंध में उपायुक्त आलोक कुमार ने निरीक्षण के दौरान कहा कि
2: बेसिकली निरीक्षण का जो मेन पर्पस यही है कि हम लोग ग्राउंड लेवल पे जाके देखें क्या क्या पब्लिक को समस्याएं फेस हो रही हैं, उसको निराकरण कैसे करना है, और एक एविडेंस बेस्ड हम लोग प्लानिंग और एविडेंस बेस्ड जो एग्जीक्यूशन है किसी भी योजना का वो कैसे किया जा सकता है, उसी के लिए हम लोगों ने बाकायदा शेड्यूल निकाला हुआ है। हर शनिवार हमारे वरीय पदाधिकारी हमारे सहायक पदाधिकारी के साथ हर एक पंचायत का निरीक्षण करेंगे और उस क्रम में जो जो इश्यूज आ रहे हैं उसको हम लोग कैसे टेकअप करने वाले हैं, इसी के लिए हम लोगों ने पूरा प्लान अगले 3-4 महीने चलेगा।
1: जामताड़ा जिले के सभी प्रखंडों में जिला प्रशासन एवं बैंकों की पहल पर चरणबद्ध कृषि ऋण सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान सरकार की किसान हितैषी योजनाओं एवं बैंकों से वित्तीय सहायता का लाभ लेने के लिए किसानों को जागरूक एवं प्रेरित किया जा रहा है। इस संबंध में अग्रणी बैंक प्रबंधक बालादित्य कुमार ने बताया कि
3: किसान इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और वो कैंपेन के माध्यम से उनको जो भी केसीसी रिलेटेड लोन है उसके बारे में विस्तार से बताया जा रहा है, उनको ऋण प्रदान किया जा रहा है जिससे वो लाभान्वित हो रहे हैं। सभी किसान बंधु जो भी कैंप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आ रहे हैं तो कृषि से संबंधित सारी जानकारी उनको प्रदान की जा रही है हमारे बैंक मित्रों द्वारा और सरकारी कृषि अधिकारी द्वारा।
1: बिजली, पानी सहित अन्य जन सुविधाओं की मांग को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 12 मई को समाहरणालय के समक्ष धरना एवं जोरदार प्रदर्शन किया। इस क्रम में भाजपा विधायक राज सिन्हा ने कहा कि जन सुविधाओं एवं समस्याओं को लेकर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से उदासीन बनी हुई है। उन्होंने कहा कि
4: मेन मूल हमारा डिमांड है पानी दो, बिजली दो। उसी क्रम में आज जामताड़ा उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना एवं प्रदर्शन, आक्रोश प्रदर्शन किया गया, जिसमें आपने देखा कि जब वहां गई महिलाएं मिलने के लिए तो गेट बंद कर दिया गया और आक्रोशित महिलाओं ने वहीं पे खाली घड़े को उनके गेट के पास छोड़ दिया, तोड़ दिया।
1: जामताड़ा जिले में साइबर अपराध पर विराम लगाने को लेकर जामताड़ा पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान पुलिस को सफलता भी मिल रही है। इस क्रम में पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने कहा कि
5: मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया था, इस टीम के द्वारा कल छापेमारी की गई नारायणपुर थाना अंतर्गत दखनी डीह के पास, जहां से 3 संदिग्धों को पाया गया। कुल 8 मोबाइल जब्त हुआ है, जब उसका सत्यापन किया गया तो ये पाया गया कि उसमें ये लोग इनके द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में फोन करके साइबर ठगी की कार्रवाई की जा रही है।
1: जनगणना 2027 को लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संगठनों के द्वारा भी आवश्यक पहल की जा रही है। लोगों को जनगणना के महत्व के प्रति जागरूक एवं पंजीकृत कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा।
0: अभी आप सुन रहे थे जामताड़ा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

विश्व फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। अगर ने कुदित नारायण और अमित कुमार की आवाजों में यह प्रोग्राम का पहला गाना, फिल्म का नाम बड़े मियां छोटे मियां।

आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र FM 102.1 MHz पर। लीजिए अब सुनिए सदाबहार फिल्म संगीत का प्रोग्राम ऑल टाइम हिट्स। आपकी आवाज है फिल्म का नाम साजन।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर रात के 8 बजे हैं। अगला प्रोग्राम बस थोड़ी देर में।

0: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम आपकी चाहत।
1: It's 8:03.

अनुराधा पौडवाल की आवाज थी फिल्म नगीना। आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत, और ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। इस गीत को सुनना चाहा था आप सभी ने गांधीबाग अकोला से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा, सालिया, शोएब खान और इनके ढेर सारे साथी। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर। और अब सुनवा रहे हैं आपको अलका याग्निक, सोनू निगम और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम दुल्हन हम ले जाएंगे और सुनना चाहा है आप सभी ने झुमरी तिलैया से जगन्नाथ प्रसाद साहू, और दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, और मेन रोड बड़कागांव से आप है दिनेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, रंजना मालाकार, गुड़िया, गोलू, भोला, इनके मम्मी पापा और ढेर सारे साथी।

दोस्तों आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम आपकी चाहत, और इस प्रोग्राम में अगला गाना आपको हम सुनवाएंगे अमित कुमार की आवाज में, और सुनना चाहा है आप सभी ने चिप्पाकला बड़का गांव से आप हैं बाबूलाल ठाकुर, सबिया ठाकुर, तिलेश्वरी, भरत ठाकुर, मंजू संतोष ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर, प्रभात कुमार ठाकुर, जितेश, आदर्श, अनुराधा, रुक्मिणी, प्रियंका, दीपिका, और ये खत है रिंगनी छत्तीसगढ़ से आप है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा।

और लक्ष्मी श्रीवास्तव और महेश राम, सरिता देवी, फुलवासी देवी, पिंटू कुमार, कुमारी वर्षा, आप सभी हैं ग्राम पोचरा से। और अब सुनवा रहे हैं आपको प्रोग्राम का अगला गाना।

काशी की फिल्म का ये गाना है सुनना चाहा है आप सभी ने। बेमित्रा नया पारा से आप हैं ईश्वरी प्रसाद साहू, भावना साहू, नीलेश साहू और श्रद्धा साहू। साथ ही दत्रेंगी से आप हैं भागवत वर्मा। मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, वंश बत्ता और कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, दिल्ली शहर मोरी गेट से सुनवा रहे हैं आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आशिकी फिल्म से ये गाना अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में।

सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात के 8:44 और 28 सेकेंड्स। थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात 9 बजे अंग्रेजी समाचार न्यूज @9, 9:15 पर स्पॉटलाइट प्रसारण होगा हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गार स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गार स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास

0: और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्व भर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
2: प्रधानमंत्री भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, एआई साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमरीका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के

0: बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
1: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
0: इस बीच सरकार ने यूट्यूब के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। इनमें छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate bilateral ties in green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. West Bengal government sets up 2 inquiry commissions to probe corruption and atrocities against women. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi's first ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership. In a joint statement today, after delegation-level talks with counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo, Prime Minister Modi highlighted that this partnership will ensure increased collaboration in sectors ranging from clean energy to climate resilience, blue economy to green shipping.
4: भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
3: Prime Minister Modi said the India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement serves as a blueprint for shared progress and prosperity.
4: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
3: The Prime Minister hoped that using the scale, speed and talent of India, in collaboration with the technology and the capital of Norway, Indian companies would develop global solutions. Norway will also be joining the Indo-Pacific initiative. Both the leaders reiterated their common belief in rules-based world order and commitment to dialogue and diplomacy. Prime Minister Modi thanked Norway for standing firmly with India against terrorism during that difficult period and described it as a reflection of true friendship.
4: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
3: Multiple MOUs were signed in this bilateral meeting in the sectors of high-tech health solutions, digital health and digital public infrastructure. An MOU between India's ISRO and Norway's space agency will ensure deepening of ties in the space sector. A triangular cooperation agreement was also signed today. In this, India and Norway will jointly provide human development solutions to the countries of Global South using India's digital public infrastructure. In a gesture towards closer relations, Prime Minister Modi was awarded the Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by His Majesty King Harald V of Norway. Meanwhile, the Norway-India Business and Research Summit began a short while ago in Oslo. The summit has brought together representatives from government, industry, academia and research institutions of both countries. Mr. Modi reached Norway this afternoon after concluding his visit to Sweden. He said in a social media post that his visit to Sweden was marked by several important outcomes that will add new momentum to bilateral relations. He said the discussions were highly productive, from elevating bilateral ties to a strategic partnership, launching of Joint Innovation Partnership 2.0. Our correspondent covering the Prime Minister's visit reports that a defining moment of the visit was the conferment of the Royal Order of the Polar Star upon the Prime Minister, Sweden's highest honour for foreign heads of government. On the last leg of his five-nation visit, Prime Minister Narendra Modi will arrive in the Italian capital, Rome, on a two-day state visit tomorrow. He will hold bilateral talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni. More from our correspondent.
5: Mr. Modi will hold delegation-level talks with the Prime Minister of Italy with a focus on maritime security and strong connectivity. Italy gives India access not just to Europe, but also to the entire Mediterranean region. It is significant in view of the supply chain partnership and the defense partnership. This five-nation visit has been far more than diplomacy. It is about securing India's future energy routes, AI partnership, semiconductor access, defense manufacturing and global interests. This is Suparna Bhatia for Akashwani from Rome, Italy.
3: Back home, a high-level U.S. industry delegation held discussions with Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh in New Delhi today. The deliberations were held on emerging opportunities for private investment and industry collaboration in India's nuclear sector. The delegation includes senior representatives from the U.S. nuclear industry, business stakeholders and officials associated with India-U.S. cooperation in civil nuclear energy and advanced technologies. Speaking on the occasion, Dr. Singh said that India and the United States share a strong and future-oriented partnership in science, technology, clean energy and emerging sectors, referring to India's long-term clean energy goals under the vision of Viksit Bharat 2047. Dr. Singh said India aims to increase its nuclear power capacity from the present 8.8 gigawatt to 100 gigawatt by 2047. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that India has set a target of achieving exports worth $1 trillion this year and $2 trillion over the next 5 years. He asserted that this will be the true hallmark of an Atmanirbhar Bharat. The Commerce Minister was addressing the website launch ceremony of Bharatiya Vyapar Mahotsav in New Delhi. Mr. Goyal said exports this year have reached $863 billion, nearly 5% higher than the previous year, despite global challenges.
6: India-made products and services should expand even more rapidly across the world. We should not be satisfied merely because we are the world's fastest growing economy. We must never become complacent and should always think about bigger leaps forward. We need to continuously reflect on what more can be done, keep working tirelessly, and keep bringing new ideas and innovations forward.

0: expert Professor Gulshan Sachdeva. Welcome to the show, sir. In the fourth leg of his five-nation tour, Prime Minister Narendra Modi reached Norway today for the third India-Nordic summit and other bilateral engagements. The visit marks the first prime ministerial visit from India to Norway in 43 years. The Prime Minister was awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by His Majesty King Harald V of Norway. Professor Sachdeva, Prime Minister Narendra Modi, while addressing the joint presser, he stressed upon the India-Norway Green Strategic Partnership. He, in fact, also talked about the green shipping to blue economy. And while winding up his address, he also talked about the Green Strategic Partnership developing into a trusted, futuristic and long-term partnership. Let us listen to what Prime Minister Narendra Modi had to say.
1: आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है. यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं. पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया. यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है. इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है. आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं. इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी.
0: हाउ डू यू सी दिस?
2: To all these statements which Prime Minister has made, this also shows a very clear strategy of India towards Europe. For long, we have understood Europe and India-Europe relation purely in the context of trade and economics. But now I think what has really happened is in the last few years, we have clearly identified Europe as a very important partner for our ambitions to become a developed economy by 2047. And what we really need is that, we need trade, we need investment, we need technology, and we also have our own ambitious program of green transition and many other things which we need basically for this. And for

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: तुमको मुझसे प्यार है। बागों में बहार है।
1: वो जो बहुत खूबसूरत हैं, चुलबुली हैं, भोली हैं, भोले भोले चेहरे से बड़ी सहजता से संवाद बोल देती हैं, जो कभी सहनायिका थी अभिनेता राजेश खन्ना की। प्यारी भोली मासूम आवाज में बोलने वाली फनकार, आज उन्हीं पर केंद्रित है हमारा ये कार्यक्रम। इनका नाम है फरीदा जलाल।

0: सोमवार है,
1: है,
0: आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है,
1: है।
2: अगर आपने फिल्म आराधना देखी होगी तो इस दृश्य को जरूर देखा होगा। इनके साथ अभिनेता थे राजेश खन्ना। इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था। फरीदा जलाल का फिल्मी कैरियर सन 1967 से फिल्म तकदीर से शुरू हुआ।

1949 में फरीदा जलाल का जन्म हुआ था नई दिल्ली में। शुरू की युवा आयु में जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो इन्होंने कई फिल्मों में अलग अलग भूमिकाएं की, सखी के रूप में, बहन के रूप में, और ये भूमिकाएं सराही गईं। फिल्म तकदीर में गोपाल की छोटी लड़की की भूमिका निभाई।

1973 में एक फिल्म आई थी लोफर। इस फिल्म में अभिनेत्री फरीदा जलाल ने रूपा की भूमिका निभाई थी, जो कि गोपीनाथ की बेटी है। इसी फिल्म का गाना सुनिए।

0: चर्चित फिल्में बहारों की मंजिल 1968 में, महल 1969 में, आराधना पुरस्कार, नया रास्ता 1970 में, गोपी देवी, पारस में बेला देवी नाम से भूमिका को जीवंत किया और इस फिल्म पारस के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का इन्हें अवार्ड दिया गया। एक और पुरस्कार इन्हें दिया गया BFJA अवार्ड। इस फिल्म में अभिनेता संजीव कुमार की बहन की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाई थी। आइए सुनते हैं पारस फिल्म का गाना।
1: अरे या या या या या या या।

0: करना खाते ना जीते रहो जुगनी कहती है बात पति की जुगनी कहती है बात पति की।
1: सन 1971 में अमर प्रेम प्यार की कहानी जिंदगी जिंदगी रिवाज बुनियाद हीरा बॉबी जिसमें इन्होंने चरित्र अभिनेत्री के रूप में काम किया जिसे फरीदा जलाल ने बहुत ही सहजता से निभाया। बॉबी फिल्म में एक ऐसी धनी लड़की की भूमिका निभाई जो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। उस अमीर लड़की को हीरो पसंद इसलिए करता है क्योंकि उसके पिताजी चाहते हैं कि इस अमीर लड़की से उनका बेटा शादी कर ले। फिल्म पारस के बाद इन्हें एक और पुरस्कार दिया गया फिल्म मजबूर के लिए, यानी कि मजबूर फिल्म की कहानी सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था। अभिनेता अमिताभ बच्चन इसमें हीरो थे। इस फिल्म में फरीदा जलाल ने उनकी बहन की भूमिका निभाई थी। बहुत ही बेबसी और मजबूरी का अभिनय किया था फरीदा जलाल ने जो बहुत लाजवाब था।

फरीदा जलाल ने 40 वर्ष की उम्र तक सिने जगत में अभिनय किया। 1983 और 1990 के बीच में फिल्मों से ब्रेक लिया और बेंगलोर जाकर शिफ्ट हो गईं। 1990 वर्ष के दौरान फरीदा जलाल ने अपना फिल्मी करियर फिर से शुरू किया और कई मेजर हिट फिल्म में चरित्र अभिनेत्री का किरदार निभाया। 1991 में हिना फिल्म में बीबी गुल की भूमिका निभाई और इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया। 1991 के बाद भी कई फिल्में आईं जिसमें इन्होंने तरह तरह की चरित्र अभिनेत्री की भूमिका निभाई। फिल्म पायल, बेखुदी, कल की आवाज, दिल आशना है। 1993 में गर्दिश। सन 1994 में फिल्म आई थी मम्मो, जिसमें फरीदा जलाल ने महमूदा बेगम अनवर अली उर्फ मम्मो का किरदार निभाया था। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, बहुत ही दमदार अभिनय था। इस फिल्म के लिए फरीदा जलाल को 2 अवार्ड मिले, एक तो फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए और दूसरा अवार्ड बंगाल की जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया। सन 1995 में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म रिलीज हुई, जिसमें लाजवंती यानी लाजों की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाया और इन्हें अवार्ड दिया गया फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का।

सन 2000 में हे राम फिल्म में कस्तूरबा गांधी की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाई। इस भूमिका को बहुत सराहा गया। यही फिल्म हिंदी और तमिल में साथ साथ बनाई गई। ये फिल्म थी हे राम। सहनायिका बहन, पत्नी, माँ, धाई माँ, दादी माँ, इस तरह की भूमिकाएं आगे चलकर फरीदा जलाल को मिली और सभी भूमिकाओं में इन्होंने अपने खास अंदाज में जान फूंक दी। सन 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर, 2015 तक अनेक चरित्रों को पर्दे पर इन्होंने साकार किया। सन 2012 में फरीदा जलाल को ए ग्रैंड प्लान फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया हार्लेम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल।

1990 के बाद की कई फिल्में बहुत चर्चित रहीं। फिल्म राजा हिंदुस्तानी, कहो ना प्यार है, कभी खुशी कभी गम, फरीदा जलाल ने कई टेलीविजन सीरियल में भी काम किया जिसमें देख भाई देख हिट सीरियल था। फरीदा जलाल ने कॉमेडी रोल भी अदा किए। थोड़ा जादू थोड़ी नजाकत, इसमें आपने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया, यूं कह सकते हैं कि लीडिंग रोल था। सन 2005 में मुंबई में 50वें फिल्म फेयर अवार्ड के स्टेज पर इन्होंने एंकरिंग की। साथ में थे सैफ अली खान और सोनाली बेंद्रे। पंजाबी फिल्म यारिया में एक विशेष भूमिका में फरीदा जलाल नजर आईं। सन 1978 में इनका विवाह एक्टर तब्रेज बर्मावर के साथ हुआ जो कि भटकल के थे। इन दोनों की मुलाकात फिल्म जीवन रेखा की शूटिंग के दौरान हुई थी और दोनों में प्यार हो गया और फिर इन्होंने शादी कर ली। फिल्म आराधना के बाद जीवन रेखा इनकी दूसरी फिल्म थी जिसमें इन्होंने हीरोइन की भूमिका निभाई थी और साथ में थे उनके पति तब्रेज। इस फिल्म का एक गाना बहुत ही मकबूल हुआ।

फरीदा जलाल का एक बेटा है यासीन। अभिनेत्री फरीदा जलाल के अभिनय को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। फरीदा जलाल हमेशा उन्नति करें। हम सब विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।

के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेत्री फरीदा जलाल पर। शोध, आलेख और स्वर शहनाज अख्तरी का। कार्यक्रम का संपादन किया आकांक्षा सिंह ने। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। आज के फनकार।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप 50% तो

ये है आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात के 10 बजे हैं।

लीजिए आप सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कटी पतंग फिल्म का ये गाना आपको सुनवा रहे हैं आवाज किशोर कुमार की।

लता फिल्म से लिया हुआ ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, और एक बार फिर लता मंगेशकर की आवाज में अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है मेरे महबूब।

किशोर कुमार की आवाज को आपने सुना, फिल्म था याराना। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। सुना रहे हैं अगला गाना मोहम्मद रफी की आवाज में।

0: लग जा गले दिल जुबा।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में वो कौन थी फिल्म से लिया हुआ ये गाना आपने सुना। और अब सुनवा रहे हैं प्रोग्राम में अगला गाना, लता मंगेशकर की आवाज है, फिल्म का नाम दो आंखें बारह हाथ।

म्यूजिकल और रोमांटिक फिल्म हिना, ये फिल्म आई थी साल 1991 में। रणधीर कपूर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे ऋषि कपूर, जेबा अख्तियार और अश्विनी भावे। संगीत दिया था रविंद्र जैन ने। इसी फिल्म के गीतों को आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं। सुनिए अगला गाना।

0: निशानी चूम के बोलो वशमल्ले
1: वशमल्ले
0: आए
1: वशमल्ले
0: ओ
1: वशमल्ले।

गीता कार्यक्रम एक फिल्म से हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। रात के 11 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले पांच वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए दो जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक

0: 181 runs. Sunrisers Hyderabad were 137 for the loss of 3 wickets in 15 overs against host Chennai Super Kings when reports last came in. Put into bat first, Chennai Super Kings posted 180 for 7 in 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर. स्टूडियो की घड़ी में रात के 11:10 हो रहे हैं. आज का प्रसारण यहीं तक. कल प्रातः 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे. तब तक के लिए दीजिए अनुमति. शुभरात्रि. जय हिंद.